0: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
1: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा में कन्हैया जी का दिव्य महाअभिषेक, बांके बिहारी मंदिर की विश्व प्रसिद्ध मंगला आरती और द्वारकाधीश इस्कॉन तथा प्रेम मंदिर की अलौकिक झांकियां देखने देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं।
2: ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार, परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और यमुना घाटों के सौंदर्यीकरण से लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा को नई पहचान दी है।
1: तो आप भी इस जन्माष्टमी 4 सितंबर को ब्रज तीर्थ आइए और कृष्ण भक्ति में रम जाइए।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है।
1: इसी का सुखद परिणाम है उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जापान यात्रा से ये संबंध और सुदृढ़ हुए।
0: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा और पर्यटन के क्षेत्र में खुलेंगे निवेश के नए द्वार। साथ ही हजारों रोजगार का मिलेगा सशक्त आधार। ईड़ा में 500 एकड़ की जापानी सिटी से यूपी जापान औद्योगिक साझेदारी को मिलेगी नई ऊंचाई।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन के उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
1: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। 2019 में रक्षा मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई थी। भारत और उज्बेकिस्तान नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तलिक में हिस्सा लेते हैं और इसका 7वां संस्करण अप्रैल 2026 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। इन सभी क्षेत्रों के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक और व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत करने की नींव रखी जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
0: भारत ने अमेरिका के साथ जेवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत में इसके संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारतीय सेना ने जेवलिन की खरीद के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि यह समझौता भारतीय सेना के लिए अमेरिकी समर्थन दर्शाता है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 1924 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में उपचार चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा।
3: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि सहायता सामग्री में पोर्टेबल जनरेटर, खाद्य सामग्री और जल शोधन की गोलियां शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बचाव अभियान के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और रेकी टीम सहित 11 सदस्यीय दल भी मौके पर मौजूद है। उन्होंने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए भारत का समर्थन दोहराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल बाढ़ के बाद से 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगभग 100 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। नई दिल्ली में कल श्री जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में लगे 63 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक काठमांडू से कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में कल इन 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। उन्होंने बचाव प्रयासों के लिए नेपाल सरकार और सेना को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने बताया कि चीन की ओर लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 2400 घंटे कार्यरत एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि काठमांडू और पेचिंग में भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे कार्यरत हेल्पलाइन शुरू की है। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: विदेश मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर हैं 0112308871, 0112308871। आप व्हाट्सएप नंबर 9968291988 और ईमेल situationroom@mea.gov.in के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन संपर्क नंबर 9779851316807 पर संपर्क कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेश मंत्रालय से नेपाल में आई बाढ़ में लापता राज्य के लोगों की तलाश के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अनुमति मिलते ही एक प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेजा जाएगा। इसमें राज्य के एक मंत्री, एक विधायक, महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। नेपाल बाढ़ से सुरक्षित बचे 21 पर्यटक कल रात चेन्नई पहुंच गए। पर्यटकों ने सुरक्षित चेन्नई वापसी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का आभार व्यक्त किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी।
5: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी और इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी के उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि नए सीजन का उत्पादन शीघ्र घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में CNG के मूल्य में 3.89 रूपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में CNG की कीमत 86.98 रूपए प्रति किलोग्राम हो गई है। संशोधित CNG कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं, जहां वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे और निवेश के अवसरों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगे। श्रीमती सीतारामन बृहस्पतिवार को कनाडा के 3 दिन के दौरे के बाद शिकागो पहुंची, जहां उन्होंने भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय संवाद किया था।
6: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा किनारे वाले क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कई जिलों के लिए तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। भारत के विल्वन सेंथिल कुमार ने पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालाज फारकश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालाज फारकश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने विश्व में 18वीं वरीयता प्राप्त और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता एन योव एनजी को 3-0 से हराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
7: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@airnewshindi को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
8: धन्यवाद फरहत। विनाशकारी जल प्रलय से जूझ रहे नेपाल की त्रासदी की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। राजस्थान पत्रिका लिखता है, पल पर प्रलय का खौफ, झील टूटी तो घर छोड़कर पहाड़ों पर भागे लोग। जनसत्ता ने त्रिशूली में नेपाली सेना द्वारा लोगों को बचाए जाने की तस्वीरें दी हैं। पत्र लिखता है, अब भी 320 भारतीय लापता। चीन में फंसे 400 लोग सुरक्षित। नवभारत टाइम्स ने नेपाल में सैलाब शीर्षक से बचाव अभियान पर लिखा है, चुनौतियों के बीच अब जिंदगी बचाने की जंग। अमेरिका से 100 जेवलिन मिसाइलें खरीदेगा भारत, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने दी जानकारी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हिंदुस्तान ने रक्षाबंधन के अवसर पर बच्चों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधने की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, पीएम मोदी की कलाई पर सजा बच्चों के प्यार का धागा। नशे के खिलाफ एकजुट हो रही देहरादून के थानी गांव की महिलाएं, नशे के कारोबार से गांव को बचाना है लक्ष्य, जनसत्ता की सुर्खी है। सोना 26 साल बाद सबसे बड़े मासिक उछाल की तरफ, अगस्त में दाम 14% बढ़ चुके, दैनिक भास्कर की खबर है। अमर उजाला ने अपने कारोबारी पन्ने पर शेयर बाजार से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, आईटी शेयरों ने दिया बाजार को सहारा, सेंसेक्स निफ्टी में 2 दिन की गिरावट थमी। शिक्षा की दीवार से आसान हो रही पढ़ाई, सरकारी स्कूल में नवाचार, निजी स्कूलों से हटा सरकारी में कराया प्रवेश। मध्य प्रदेश के सीहोर में इस योजना के माध्यम से अंग्रेजी सीखने के सरल तरीके को अपनाया जा रहा है, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
0: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1 सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के विल्वन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालाज फारकश को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic beginning today to enhance economic and defense cooperation. India signs deal with United States to procure Javelin anti-tank guided missile systems. Death toll in Nepal flash floods rises to 579, while 1,924 people still missing. India steps up humanitarian assistance to the neighboring country. Government to introduce fortnightly sugar allocation system from next month to ensure availability of sugar in market on time. And India's Vilavan Senthil Kumar wins PSA Budapest Swash Open title, beating Balázs Farkas of Hungary. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic beginning today. On the first leg of his 2-day visit, he will reach Uzbekistan.

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
5: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
6: क्या मेरी कसम,
5: मिस कर दिया तो रीलोड।
7: चाय चाय चाय,
8: बिंदास मॉर्निंग
5: सुनिए। बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

दोस्तों कहते हैं कि मन की हारे हार है मन के जीते जीत है। अगर आप अपने मन में संकल्प बना लें कि आपको कुछ हासिल करना है और कुछ अपनी ज़िंदगी में बड़ा करना है, और अगर आपने वो सोच लिया है, आपने उस लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा दिया है, तो यकीन मानिए उस चीज़ को आप ज़रूर प्राप्त कर लेंगे। बस पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ और पूरी 100% अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहिए, उस दिशा में प्रयत्न करते रहिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और अपने मन को मजबूत बनाइए, अपने मन को और भी ज़्यादा बलशाली बनाइए। इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, वो है आपका मन। कहते हैं ना, अगर अपने मन में आपने किसी भी चीज़ को लेके कोई भी अच्छी धारणा बना ली है, तो यकीन मानिए वो चीज़ आपकी जीवन को ज़रूर चेंज करेगी, है ना। अगर आपने मन में ही हार लिया, आपने मन में खुद को आपने बोल दिया कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, मैंने तो हार मान ली है, तो यकीन मानिए इतनी जो मेहनत आपने करी है ना, जो आप यहाँ तक आने में आपने इतने एफर्ट्स लगाए हैं, वो भी वेस्ट हो जाएंगे। सुप्रभात, हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को, ये है एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो आप सुन रहे हैं। सुबह के 8:22 हो रहे हैं, आज 29 अगस्त हो गई, 29 तारीख है आज, शनिवार का दिन है, यानी कि कर्मों के देवता का दिन, शनिदेव का दिन है, भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने का दिन। बाकी आप जिस भी धर्म से हैं, अपने धर्म को उसकी रक्षा करना, उसकी इबादत करना हमारा फ़र्ज है ना। चलिए सुबह का प्यार भरा सलाम, हमारा जो सलाम है वो कबूल कीजिए, और आज का सिलसिला हम शुरू करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन गीत के साथ। आप कहीं नहीं जाएंगे, रेडियो की सुई बिल्कुल नहीं घुमाएंगे। अगर आप भी हमारे साथ सुबह सुबह जुड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत अभिनंदन है। 9837896896 के ज़रिए आप मेरे साथ आज की सुबह मुखातिब हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं आज की मॉर्निंग। ट्यूनिंग रही है, लता मंगेशकर जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ आपके रेडियो सेट पे निकल गई है। आज की सुबह एक बहुत ही स्पेशल ट्रैक निकाल दिया है मैंने आपकी मॉर्निंग को सुपर डुपर अमेजिंग बनाने के लिए। एक बहुत ही धांसू गाना सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, बहुत ही प्यारा ट्रैक, कुछ सिखा देने वाला गीत, जिंदगी प्यार का गीत है, इसी को सुनते हुए अब करते हैं अपने दिन की शुरुआत। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप कहीं मत जाइए, आई विल बी राइट बैक, वेरी गुड मॉर्निंग।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: Koi mil gaya.
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: आवश्यक सूचना 400 केबी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केबी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।

0: बिल्कुल जी बिल्कुल, एक रास्ता है जिंदगी, एक रास्ता तो है ही भाई, लेकिन गाना बहुत प्यारा था ये, और ऐसे अच्छे अच्छे गाने सुन के ना सुबह सुबह मजा आ जाता है। हेलो हाय सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। 8:34 हो रहे हैं स्टेशन क्लॉक में, और भाई साहब हर चीज़ महंगी होती जा रही है, समझ नहीं आ रहा है कि भैया चाय पीने में भी ना सोचना पड़ रहा है, मतलब चीनी भी महंगी, ये भी महंगा, वो भी महंगा, चल के रहा है यार ये। लेकिन आप फिलहाल मेरे साथ जुड़ सकते हो, सुबह सुबह मैं आपका स्ट्रेस कम करने आया हूँ, बढ़ाने नहीं आया हूँ, कुछ ऐसी बातें जो आपको बताने आया हूँ आपके रेडियो पर। बिकॉज देखिए, हम चाहे कितना भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लें, न्यूज़पेपर पढ़ लें, लेकिन हर एक चीज़ की ना अपनी खास एक पहचान होती है, राइट? हर चीज़ में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, तो मे बी हो सकता है रेडियो आपके लिए कुछ डिफरेंट चीज़ हो सकती है उसमें, क्योंकि रेडियो आज भी वो जेन्युइन चीज़ें ही आपको बताती है जो कहीं ना कहीं आपको कहीं और मिले ना मिले, बट यहाँ पर आपको हर चीज एकदम सच और रियल वाली मिलती है। आज का मौसम बहुत ही औसम है, सूर्य देवता निकल रहे हैं, छुप रहे हैं बादलों में, मतलब लुका छुपी खेल रहे हैं सूरज चाचू। तो मैं डेफिनेटली सूरज चाचू की बात करना चाहूंगा, आई मीन टू से कि आज के वेदर की बात करना चाहूंगा। तो वेदर आज क्या कह रहा है इस पर मैं इमिडिएटली आपको बता देता हूँ। तो अभी जो है 30 डिग्री सेल्सियस है, जो मिनिमम टेम्परेचर है वो अभी 30 डिग्री है, और जो मैक्सिमम जाएगा वो 34 जाएगा, एंड ये हाइस्ट की बात कर रहा हूँ मैं 34, एंड लोएस्ट की बात करूँ तो 27, एंड करंटली है 30 डिग्री सेल्सियस। एंड बात करूँ हवा की, तो 2 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, ह्यूमिडिटी थोड़ी ठीक ठाक है, गर्मी आपको लगेगी ऐसी बात नहीं है। और आपने क्या करना है पाजी, पानी पीते रहना, ठीक है? और दोपहर के बाद हो सकती है हल्की फुल्की बारिश भी हो जाए। मुरादाबाद के मौसम तो भाई साहब अलग अलग क्षेत्र में तुरंत बदल जाते हैं, 1-2 किलोमीटर जाओगे वेदर चेंज। वही मेरे साथ ढेर सारे लिसनर्स जुड़ चुके हैं। हेलो आनंद, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आप कैसे हो? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, जय माता दी जी। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम शिखा है, सुबह सुबह रेडियो सुन के सच में बहुत ही आनंद आ जाता है, आनंद के साथ, थैंक यू सो मच। गाने बहुत ही अच्छे प्ले करते हो, अरे वाह क्या बात है, मुझे भी अच्छा लगता है कि कभी कभी ना कुछ ऐसे गाने सुनने का भी मन करता है जो थोड़े से अलग होते हैं ना, उनको सुन के फुल फील आती है, एकदम वाइब आती है नॉस्टैल्जिया वाली, और कभी कभी तो एकदम वो पुरानी वाली वाइब में हम चले जाते हैं, राइट? मुझे भी अच्छा लगता है। मनीष जी मेरे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं, सुप्रभात आनंद जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ जी, ये गुरहट्टी से मुझे मैसेज पहुंचा है आज की सुबह, एंड इन्होंने मेरे साथ मूंग की दाल का पत्ता शेयर किया है, वेरी बैड। हाँ सुबह सुबह आप मूंग की दाल खा रहे हो, मतलब चलो बहुत अच्छी बात है यार। एसपी बाला सुपरमंडलम की आवाज, साथ में लता मंगेशकर जी देंगी साथ, एक बेहद ही खूबसूरत ट्रैक।
1: चलिया लगता है कभी दीवाना लगता है,
0: ओए
1: कभी अनाड़ी लगता है,
0: क्या बात है,
1: कभी आवारा लगता है,
0: ललन ललन ललन ललन, मतलब अलग ही फील इन गानों में।
1: चलिया लगता है कभी दीवाना लगता है कभी अनाड़ी लगता।
0: सुबह सुबह क्या कुछ स्पेशल है आज की तारीख में, हमारे आसपास में क्या स्पेशल चल रहा है, मुरादाबाद में क्या कुछ खास हो रहा है, ये सारी जानकारियां अभी आपको दूंगा मैं इसी स्टेशन पर, आप जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर आप भी कोई संदेश पहुंचाना चाहते हैं सुबह सुबह, तो डेफिनेटली आप जुड़ सकते हैं ना हमारे साथ 9837896896 पर।

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाहे चाहे चाहे
3: बिंदास मॉर्निंग
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

0: खूबसूरत ट्रैक और ये गाने सुन के सच में थोड़ा सा तो एक फ्रेश फीलिंग आ रही है सुबह सुबह, यू नो एक अलग वाइब मेरे को सुनने को मिल रही है यहाँ पे गानों के साथ ही साथ। आप लोग भी मैसेज भी कर रहे हैं इतने प्यारे प्यारे, थैंक यू सो मच आनंद, आज गाने अच्छे लग रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों ने कल रक्षाबंधन का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया और अब सीधा जन्माष्टमी की ओर रुख करने वाले हैं, है ना। और अब जन्माष्टमी भी आने वाली है, उसकी तैयारियां भी चल रही हैं बहुत जोरों शोरों से। और अभी फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे इसी बात के साथ और कुछ एड ब्रेक का समय है, उसके बाद वापस आता हूँ, बताता हूँ आज क्यों है 29 की तारीख बहुत खास, इस पे हम अभी बात करेंगे।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना, पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 7055070552।
4: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
0: मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, एब्सोल्युटली बिंदास मॉर्निंग सुन रहे हैं आप। 8:48 होने स्टेशन क्लॉक में, अभी हम बात करेंगे आज के दिन के बारे में। देखिए हर दिन की तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण होती है श्रोताओं, हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, कुछ ना कुछ खास होता है, महत्वपूर्ण होता है हर दिन। जैसे हम हर दिन सेम चीज़ नहीं खाते ना अपने खाने में, वैसे हर दिन कुछ ना कुछ नया हमें भी चाहिए होता है ना अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करने के लिए। तो वैसे ही कुछ ना कुछ इतिहास में भी नया हुआ होता है, हर इंसान कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करता है अपनी ओर से, और जो अच्छा कर जाते हैं उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। 29 अगस्त का इतिहास भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में और कई अन्य ऐतिहासिक घटनाओं के लिए भी जाना जाता है। तो एक नज़र हम इस पे ज़रूर डालेंगे कि आज के दिन क्या स्पेशल है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन जन्मे उस खास इंसान के बारे में जिनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, आपको बता दें भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का जन्म आज ही के दिन हुआ था, सन 1905 को 29 अगस्त को। हाँ जी, एंड उनकी जयंती पर ही भारत में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो आज जो खेलों की दुनिया में अपना कुछ बड़ा नाम हासिल कर रहे हैं या खेलों की दुनिया में जो अपना कहीं ना कहीं 100% देना चाहते हैं या जो लोग जा रहे हैं उस ओर अपनी रुचि दिखा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का। उन सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हमारे पूरे FM परिवार की ओर से। जो लोग खिलाड़ी बनना चाहते हैं, जो लोग एक सपना बुन रहे हैं आंखों में, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की नींव रखी थी 1947 में आज के दिन 29 अगस्त को। हाँ जी, और चौथा बात करते हुए आगे बढ़ेंगे, और भी तमाम सारे ऐसे महान लोग हैं जिनका जन्मदिन हम आज सेलिब्रेट करते हैं, और भी तमाम सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आज के दिन को थोड़ा स्पेशल बना देती हैं। जी हाँ श्रोताओं, आपको बताते चले ग्रेट ब्रिटेन और चीन के नॉन किंग की संधि पर जो थे वो हस्ताक्षर हुए थे सन 1842 में आज ही के दिन। और आज ही के दिन जो है एक और खास चीज़ रही जिसने इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा अलग कर दिया। हाँ जी श्रोताओं, ये क्या चीज़ है इस पे हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से जो है उनको सम्मानित किया गया था 1998 में, आज ही के दिन। जी हाँ श्रोताओं, एंड न्यूयॉर्क में चार दिवस विश्व शांति शिखर सम्मेलन शुरू हुआ था सन 2000 में, आज ही के दिन। तो ये थी आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, मैं आपके साथ साझा कर रहा था आज की सुबह। और बात कर लेते हैं आज के दिन जन्मे कुछ और खास नामों में से, एक नाम है जिनके बारे में बात करना बनता है और उनका नाम है पीवी, जी हाँ पीवी मधुन रेड्डी जी। इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन सन 1977 को, आंध्र प्रदेश से YSR जो है, ये काफ़ी जानी मानी लेडी हैं। इनके बारे में डेफिनेटली मैं थोड़ी देर में चर्चा करूंगा, अभी हमने मेजर ध्यानचंद जी के बारे में भी बात करी। इसके अलावा और भी तमाम ऐसे नाम हैं जो आज के दिन को बहुत ही स्पेशल बना देते हैं। धीरे धीरे आपको बताऊंगा ना इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप ऐसे ही कनेक्टेड रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। आपके ढेर सारे संदेश लगातार मुझे मिल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, कुछ चीज़ों में ना बड़ा भेदभाव होता है, बड़ा जिसे कहते हैं ना नेपोटिज्म, सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, हमारे आसपास में भी हमें देखने को मिलता है। कैसे, ज़रूर इस पर चर्चा करेंगे और आप अपने ओपिनियंस डेफिनेटली शेयर करिएगा। आज की सुबह आप जहाँ भी जा रहे हैं, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि आज की सुबह जितने भी लेडीज़ अपने घर गए हुए हैं, तो उनके लिए आज भी फ्री बस सेवा रहने वाली है। शाम को 6 बजे तक ये सेवा फ्री

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाहे चाहे चाहे
3: बिंदास मॉर्निंग
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
5: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
6: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
7: स्किन एलर्जी मस से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
8: कोई मिल गया
9: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
10: हाँ जी भैया, बिंदास मॉर्निंग सुन रहे हैं आप। वेरी गुड मॉर्निंग। 9:04 हो गए स्टेशन की घड़ी में और इस वक्त आप आनंद के साथ जुड़े हुए हैं आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग है सैटरडे की सुबह। अभी जो फेस्टिविटी वाली वाइब है ना, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऑफकोर्स यार, फेस्टिवल्स ऑलमोस्ट शुरू हो ही चुके हैं। अभी जन्माष्टमी, गणपति एंड ऐसे बैक टू बैक फेस्टिवल्स अब आते रहेंगे, तो शुरुआत हो गई है फेस्टिवल्स की। बाकी आप लोग डेफिनेटली सेलिब्रेट करने में कम नहीं हो पाजी, आप भी पूरी तैयारी के साथ जो है रेडी हो चुके हो। वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैं नेपोटिज्म की बात कर रहा था कि कभी कभी ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोई एक बहुत ही फेमस व्यक्ति है, बहुत पॉपुलर व्यक्ति है, अगर उसके घर से कोई चीज़ गुम हो जाए तो उसे ढूंढने में ना 24 घंटे नहीं लगते, वो चीज़ उसके सामने हाजिर हो जाती है। और एक अगर कोई नॉर्मल इंसान होता है, कोई एक एवरेज पर्सन है, उसकी कोई चीज़ खो जाती है।

ये गुम हो जाती है तो उसे ढूंढने के लिए उसे बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, उसके बावजूद भी उसे कोई अपडेट नहीं आती है। वो डेली बेचारा चक्कर काटता रहता है लेकिन उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है ना। तो इस चीज़ के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सच में हमारी आसपास की चीज़ों में, मतलब हमें सिर्फ ऐसा लगता है ना कि बॉलीवुड में ही नेपोटिज्म है, वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमारे आसपास में भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर कोई चीज़ आपके घर से गायब हो जाए, गुम हो जाए या कुछ भी ऐसी मिसहैपनिंग चीज़ हो जाए, खुदा ना खास्ता, तो बहुत आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन जो बड़े चीज़ें बड़े पद पे लोग होते हैं उनके लिए बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ती। आई नो आप जानते हैं क्योंकि वो एक ऐसे पद पे बैठे हैं जहाँ उनके लिए हर चीज़ बहुत इजी है, सारी फैसिलिटीज़ उनके पास है, सारी अपडेट उनके पास है, सब कुछ उनके पास है। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान अगर ऊपर पहुंचता है, मतलब एक अच्छे पद पे, तो उसमें जो मिडल लोग होते हैं, जो हम जैसे लोग होते हैं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट होता है, राइट। जब उनकी बारी आती है तो फिर कुछ नहीं होता है। आप इस पे क्या कहना चाहोगे, प्लीज़ टेल अस 9837896896, डेफिनेटली बताइएगा अपनी थॉट्स। आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा से गाना सुनते हुए करेंगे आज की सुबह की बेहतरीन शुरुआत। 9:06 हो गए। अपना भी एक इंसिडेंट शेयर करूंगा, पिछले कुछ दिनों से मैं क्यों नहीं था रेडियो पे, क्या सिचुएशन मेरे साथ हो रही है। अगर आप मेरे इंस्टा हैंडल पे हैं तो डेफिनेटली आप जानते हैं, अगर नहीं पता आपको तो मैं अभी आपको बताने वाला हूं एक ऐसी बात जो शायद आपको थोड़ी सी ऐसी भी लग सकती है कि सुबह सुबह ये क्या हो रहा है, लेकिन शायद आप मुझे कुछ आइडिया भी दे सकते हैं। तो अभी लौट कर आते हैं, डोंट गो एनीवेयर, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 विद मी।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: यार, सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे, सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
4: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
5: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
6: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
5: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: की फीलिंग्स।
1: ब्रेकअप सिर्फ चीनी से नहीं करना है, ब्रेकअप सिर्फ इंसानों से नहीं करना है, ब्रेकअप मुझे लग रहा है भैया प्याज से भी करना पड़ सकता है, क्योंकि प्याज भी महंगे हो गए यार। हाँ जी, ये टमाटर प्याज और ये चीनी शीनी, मतलब पता नहीं और क्या क्या भी महंगा होगा, आई डोंट नो यार। हाँ जी, प्याज के रेट भी बढ़ गए हैं भाई साहब, और टमाटर भी महंगे होने को जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जिन लोगों के घर में प्याज पकौड़े खाने का बड़ा क्रेज होता है, चलो भाई वीकेंड है प्याज पकौड़े बना लेते हैं जी, मतलब उनके लिए थोड़ी सी ऐसे ना प्रॉब्लम होने वाली कि भैया क्यों ला रहे हो प्याज, इतना महंगा हो गया आपको पता है। लेकिन देखो यार, जिनको खाना पीना है ना वो तो खा पियेंगे ही, चाहे कितना ही महंगा हो जाए, है ना। मतलब अगर मुझे चाय पसंद है तो चीनी चाय 60 हो जाए 70 हो जाए, डजंट मैटर, मुझे पीना है तो भाई पीना है, राइट। लेकिन इस पर फनी फनी लोग कंटेंट बना रहे हैं, वो मेरे को बड़ा वाहियात लग रहा है, मैं क्या ही बताऊं। एनीवेज, वो उनके पर्सनल है, आगे बढ़ते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि अभी सिर्फ चीनी नहीं, टमाटर और प्याज भी महंगे हो, प्याज तो ऑफकोर्स महंगे हो ही गए, टमाटर के रेट भी अभी बढ़ सकते हैं, साथ ही साथ और ज्यादा महंगे हो सकते हैं। आई मीन, अगर आपके आसपास महंगे मिल रहे हैं तो ठीक है, और अगर और ज्यादा महंगे अभी हो जाएंगे तो दिक्कतें और होंगी। इनफैक्ट अभी आपको पता है कि और भी चीज़ें जो है महंगी होने वाली फेस्टिवल टाइम में, तो ऐसे में जरा अपना बजट संभाल के रखिए बॉस, कहीं ऐसा ना हो बाद में फिर आपको आपका बजट गड़बड़ आ जाए, या आपको फिर मतलब यू नो प्रॉब्लम हो कि यार ये सब चीज़ ऐसे नहीं ऐसे, कभी कभी हो जाता है बड़े पैनिक हो जाते हैं एकदम से यार, है ना, वो वाली चीज़ हो जाती है। आज 29 अगस्त है, आपको बता दें मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि आज शाम तक बसें फ्री रहेंगी, तो अभी इसमें एक चेंज ये है कि भैया आज जो है 29 अगस्त को, आपको बताया रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों के लिए खुशखबरी थी, एंड उन्हें मुफ्त बसों में यात्रा की सुविधा कराई गई अपने उत्तर प्रदेश में। और आपको बता दें एक बार फिर से, आज भी ये जो है मतलब फ्री रहने वाली है बस की फैसिलिटी, ये सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक रहने वाली है। एग्जैक्टली, ये सुबह अभी 6 बजे से स्टार्ट होगी और रात 12 बजे तक ये फैसिलिटी जो है आपको मिलेगी। अगर आप अपने भाई के घर जा चुकी हैं और अपने घर आना चाहती हैं तो बिल्कुल आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हेल्प ले सकती हैं, और इन बसों के माध्यम से फ्री में आप अपने घर पहुँच सकती हैं, एंड अगर आप कहीं और जाना चाहती हैं तो भी आप जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, तो अभी मैं आपको बता रहा था कि चीनी वगैरह के रेट तो बढ़ ही गए हैं, और टमाटर भी महंगे हो ही गए हैं, प्याज भी महंगा हो ही गया है, और इनके बिना तो यार देखिए सब्जी खाने का मन भी नहीं करता, ऐसा मेरा नहीं कुछ लोगों का मानना है। फेसबुक इंस्टाग्राम की फटाफट बात कर लेता हूँ, आपको पता है सोशल मीडिया के ज़माने में आजकल जो है फेसबुक इंस्टाग्राम लोगों की ज़रूरत बन चुका है, बहुत बड़ी वाली, हर कोई इसके बिना रह नहीं पाता है भाई, सुबह हो या शाम, बच्चे हो या बड़े, हर किसी को चाहिए आराम के वक्त अपना स्क्रोलिंग वाला टाइम, राइट।

तो भैया देखिए, मीटा यानी फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है, उन्होंने जो छोटे वाले बच्चे होते हैं, जो टीन एजर्स होते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज हो रही हैं, ताकि उनकी चीज़ों को, उनका टाइम जो होता है ना, स्क्रीन टाइम, उसे कंट्रोल किया जा सके। पेरेंट्स को थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, मतलब 2-2.5 घंटे डेली लिमिट टाइम होगा फेसबुक और इंस्टाग्राम मिलाकर, रोज आप 2 घंटे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा भी एक नया रूल कड़क वाला आने वाला है, और मुझे लगता है अगर ये रूल इंडिया में इधर भी आ जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा यार, बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्योंकि यार आजकल ना हर कोई इस एडिक्शन का शिकार हो गया है, और ना चाहते हुए भी बंदा खुद को इससे बचा नहीं सकता, बिकॉज हर किसी के पास टेक्नोलॉजी है, हर किसी के पास स्मार्टफोन है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए गूगल बाबा का सहारा लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम हेल्प ले लेने लगते हैं फटाफट से। तो इसीलिए थोड़ा सा सतर्क एंड सावधान रहिए, एंड आप इमिडिएटली जो है, अगर इस चीज़ पे एक्शन नहीं ले रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें ना बड़ी आफत बन जाती हैं आगे चल के, है ना। इसीलिए बाकी अभी मुरादाबाद की बात कर लूँगा, मैं लौट कर आऊँगा तो क्या चल रहा है उस पर अभी चर्चा करेंगे। सो आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए आरजे आनंद के साथ, कुछ कहना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका। 9837896896 पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं आज की सुबह। आप मुझे व्हाट्सएप करके बताइएगा व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। अगर आप मुझे इसका जवाब देंगे तो मुझे बेहद ही खुशी होगी। आई वांट टू आस्क यू दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। आज वीकेंड है, सैटरडे है, थोड़ा हल्का सा सवाल पूछता हूँ। सो दिस इज माई क्वेश्चन, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। मेरे पास ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, लेकिन आप इतने समझदार हैं कि आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे यकीन है, है ना। तो आप इस यकीन को जरा पूरी तरीके से सच कर दीजिए, फटाफट मुझे मैसेज कीजिए 9837896896 पर, और बता दीजिए मुझे वो कौन सा फूल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी, व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। अगर आपको पता है तो आप मुझे इमीडिएटली मैसेज करोगे अभी के अभी 9837896896 पे। 9837896896 जनता आनंद के साथ हैं, आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, यह है मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
5: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

वेलकम बैक है वंस अगेन, गुड मॉर्निंग है जी। 9:34 हो गए हैं और अभी आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो। लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइम एक बार बता देता हूँ, स्टेशन क्लॉक में 9:34 हो गए हैं और ढेर सारे मैसेज मेरे पास आपके आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे प्यारे मैसेज करने के लिए, दिल से शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। इतने प्यारे व्हाट्सएप आप पहुंचा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन भी किया था जिसका आंसर मुझे बहुत सारे लोगों ने दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये जो मैसेज किए उसके लिए शुक्रिया। भाई साहब देखो, आपको बता दें 118 रुपए में बनेगा स्मार्ट कार्ड एंड 5 साल तक ये वैध रहेगा, मतलब इसकी वैलिडिटी रहेगी। यूपी की बसों में ऐसे फ्री में सफर का आनंद ले सकेंगे। हाँ जी, आपको बता दें रोडवेज बसों में 60 साल के ऊपर की जो महिला है उनको फ्री में सफर करने के लिए एक स्मार्ट कार्ड बनवाना होगा और ये कार्ड किसी भी बस अड्डे पर बन जाएगा बहुत ही आराम से। इसके लिए 118 रुपए आपको देने होंगे और ये पूरे 5 साल के लिए मान्य होगा। इस संबंध में परिवहन निगम जल्द ही पूरी कार्य योजना इसकी जो है वो जारी करेगा। ने बताया है कि 2011 की जनगणना और मार्च 2022 में कराए गए बस यात्री सर्वे के आधार पर आंकड़ों के अनुसार रोडवेज बसों में प्रतिदिन 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग जो है वो स्पेशली महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा सफर करती हैं। तो ऐसे में जो है ये एक बहुत ही खूबसूरत कार्ड की जो है फैसिलिटी शुरू की जा रही है। हाँ जी, इस कार्ड की व्यवस्था जो है लाई जा रही है। लाभार्थी किसी भी बस अड्डे पर अपना आधार कार्ड लेकर जाए और ये कार्ड बनवा सकते हैं। बहुत आसान है इस कार्ड को बनवाना। एक बहुत ही अच्छी चीज है कि जो महिलाएं, जो बुजुर्ग महिलाएं 60 वर्ष से जिनकी एज प्लस हो गई है ऊपर की है उनके लिए अब ये कार्ड बनवाया जाएगा और इस कार्ड के माध्यम से वो फ्री में ट्रैवल कर सकेंगी। ये तो एक बहुत ही बढ़िया चीज हो गई है। देखो यार, एंड ऐसी अच्छी अच्छी हैपनिंग बातें मैं आपको बताते रहता हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। अब आपके लिए आपकी ट्रिप की टेंशन खत्म हो गई है। हाँ जी, अगर आप फ्लाइट से जूम करके कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं नेशनल इंटरनेशनल, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान कर दिया है गूगल AI ने। हाँ जी लेडीज एंड जेंटलमैन, काम की बात जरा ध्यान से सुनो। अब ट्रिप प्लानिंग की टेंशन खत्म, गूगल AI बताएगी सस्ते फ्लाइट, ट्रैक करेगी किराया और खोजेगी आपके लिए बढ़िया होटल्स। एग्जैक्टली, मतलब अभी जो गूगल AI है ना वो आपको काफी हेल्प करने वाली। गूगल लगातार अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए नए नए फीचर लेकर आता रहता है एंड कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट करते हैं गूगल बाबा। और इसी क्रम में गूगल ने अपना AI सर्च एक्सपीरियंस को अब जो है और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया। सिर्फ सवालों के जवाब देने तक ही सीमित नहीं होगा ये, एक्चुअली आपके पर्सनल ट्रैवल एजेंसी की भूमिका निभाने को भी तैयार है। गूगल ने अपने AI मोड में कई नए फीचर्स ऐड किए हैं जिससे आपकी ट्रिप प्लानिंग हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, जो भी आपको पता करना है व्हाटएवर, उसके लिए अब आपको ये काफी हेल्प करेगा। तो गूगल AI फीचर के थ्रू आप जो है आप कहीं ट्रैवल चाहते हैं या कोई सस्ते ऑफर्स जानना चाहते हैं या कहीं पे बाहर आप इंटरनेशनल जाना चाह रहे हैं वहां के होटल रेस्टोरेंट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो गूगल AI आपको इमीडिएटली बता देगा। तो ये भी एक अच्छी चीज हो गई यार। चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हुए आपको कुछ और फटाफट से इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए, बिना टिकट के अगर ट्रेन में ट्रैवल करते हुए तो ये आपको बहुत सारी मुसीबतों में डाल सकता है। हमेशा से कहा जाता है कि बिना टिकट के यात्रा करना गलत है, बिना टिकट के अगर आप यात्रा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत संकटों में आपको डाल सकता है। तो और मैं तो आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ जब भी आप कहीं बाहर जाएं अपना टिकट डेफिनेटली कराएं। कोई चेक करे ना करे, आपके पास अपनी खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए टिकट होनी बहुत जरूरी है। जब भी आप

ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो अपनी यात्रा को सुखद और कंफर्टेबल बनाने के लिए प्लीज टिकट जरूर लें। अगर आप नहीं लेंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 9:38 हो गए हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ रहा था आज की सुबह। बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ गए हैं, थैंक यू सो मच आपके व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए। और अभी मैं एक छोटी सी बात आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा अपने फादर से रिलेटेड। आई एम श्योर आप उसमें मेरा डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प तो जरूर करोगे, बिकॉज आई नीड टू योर हेल्प यार लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत ज़रूरी है आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन के इस टाइम पे। अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट नहीं भी कर सकते हो तो एटलीस्ट कोई सजेशन आइडिया तो आप डेफिनेटली दे सकते हैं, राइट। अभी फिलहाल क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, बैक टू पॉइंट। आई वांट टू आस्क यू दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था और अभी मैंने पूछ भी लिया है आपसे, थोड़ी देर पहले भी पूछा था कि व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। अगर आपको पता है तो आप मुझे बता सकते हैं। बहुत सारे लोगों की मैसेज आ गए हैं मेरे पास, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, बट आप मुझे अभी भी व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। जी हाँ जी, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ पाजी, आप भी मुझे मैसेज कर सकते हैं 9837896896 पे, बता सकते हैं आज के मेरे सवाल का जवाब। अगर आपने जवाब दे दिया तो मेरे को भी अच्छा लगेगा यार। तो बिना किसी देरी के अब आप मुझे मैसेज कर दो, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके मैसेजेस का। आने वाला गाना, इसको एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रेम की नैया, बहुत ही प्यारा सा गाना, रंग के भरोसे। अब आनंद की नैया है आपके भरोसे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अजब प्रेम की गजब कहानी का ट्रैक, नीरज श्रीधर की आवाज। चलिए सुनते हैं साथ में, गुड मॉर्निंग।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: अब क्या तोड़ दिया नालायक, सॉरी
2: नलायक बेटा।
3: हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, क्या हाल चाल?
4: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग।
5: आप सुन रहे हैं आनंद को, गुड मॉर्निंग। ये सैटरडे की सुबह है और बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। बहुत प्यारे प्यारे व्हाट्सएप आपने किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बताता हूँ, लौट कर आता हूँ और एक दो चीजें और हैं जो आपको फटाफट बतानी है। उससे पहले एक गाना सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ कहना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ऑफिशियल आईडी है FM मुरादाबाद 89.6। मेरे को अगर आप ढूंढना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रेडियो वाला आनंद के नाम से आपको मिलता हूँ। सो प्लीज यू हैव टू गो एंड चेक आउट। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम हैंडल मेरा ऑफिशियल आईडी मिलेगा FM रेडियो का FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से। और अगर आप बात करें आरजे आनंद की तो हमारा ऑफिशियल इंस्टा हैंडल है रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से। सो प्लीज जाओ चेक आउट करो।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस मैं यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
3: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
4: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 20% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें सिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
5: अगर

0: विजिट करो।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
2: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

सैटरडे की सुबह आनंद के साथ सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद, यह है बिंदास मॉर्निंग। मुरादाबादीज, ढेर सारे व्हाट्सएप करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आते हैं आपके राइट मैसेज पे, पढ़ेंगे ना डेफिनेटली, और मैं छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूंगा, सो डोंट गो एनीवेयर। आई विल बी राइट बैक। आने वाला है अमेजिंग डोज, एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं।

0: का तुझ पे आ गया जो
1: आए हाय
0: होगी बड़ी मुश्किल।
1: क्या बात है,
0: मंचले का तुझ पे आहा सरफिरे का तुझ पे आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल।
1: पति पत्नी और वो दो कौन है पता नहीं बॉस, बनी गाना बहुत जबरदस्त है, क्या रिक्रेशन है गाने का। आहा, अरे वाजी वाह।

0: मैं कह रहा हूँ गुरु रंधावा बाजी की आवाज में ऐसे गाने अच्छे लगते हैं। गुरु बाजी ऐसे गाने गाया करो यार। आई ब्यूटीफुल ट्रैक आयुष्मान खुराना ने क्या परफॉर्मेंस दी है, गाना एब्सोल्युटली अमेजिंग था और ऐसे अच्छे गाने सुन के बढ़िया वाली फीलिंग आ जाती है, नो डाउट। 9:53 हो रहे हैं, ये सैटरडे की सुबह है, अभी आप आनंद को सुन रहे हैं। और देखो, आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए अच्छे गाने तो होते ही हैं, लेकिन मुरादाबाद में अच्छे कॉन्सर्ट भी होते हैं। एग्जैक्टली अब ये काम की बात बताता हूँ। देखिए भैया, आप सभी को पता है आजकल की लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बिजी है, भागती दौड़ती जिंदगी है, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा ब्रेक लेना भी ज़रूरी है और खुलकर हंसना भी ज़रूरी है। और इसी हंसी को और इसी यू नो मोमेंट को और भी स्पेशल बनाने के लिए, आपकी शाम को और भी अमेजिंग बनाने के लिए, मुरादाबाद की शाम को और भी ज़्यादा यू नो माइंड ब्लोइंग बनाने के लिए, एक बहुत ही कमाल का आर्टिस्ट अपने मुरादाबाद में आ रहा है। हाँ जी, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, मुरादाबाद में एक हंसी की जो है शाम होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। यस, मुरादाबाद में एक बहुत ही पॉपुलर स्टैंड अप कॉमेडियन रवि गुप्ता जी आ रहे हैं अपना बहुत ही अमेजिंग शो लेकर, और शो का टैगलाइन मुझे बहुत ही यूनिक लग रहा है, कल की चिंता नहीं करता के साथ जो है ये यहाँ पर एंट्री देने वाले हैं। दिस इज़ वेरी वेरी एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग कॉन्सर्ट। तो अगर आप अभी तक यहाँ पर आने का प्लान नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्लीज़ करिए, बिकॉज आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ शायद आपको ना पता हो, बट आज आपको ये पता लगेगी तो आप भी एक्साइटेड हो जाएंगे मेरी तरह। तो रवि गुप्ता लाइव कॉन्सर्ट होने वाला है मुरादाबाद में 8 सितंबर को पंचायत भवन मुरादाबाद में, एंड इसके जो है दो शानदार शो होने वाले हैं, एक शाम को 4 बजे, दूसरा रात को 8 बजे। तो मुरादाबाद बस तैयार हो जाइए एक शाम हंसी के नाम, जहां कॉमेडी होगी, बहुत सारा फन होगा, बहुत सारा एक्साइटमेंट होगा, एंड साथ ही साथ रवि गुप्ता जी के साथ हम मिलकर बहुत सारा फन करेंगे, खूब सारी अपनी शाम को और भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो मुरादाबाद में जो है हम रवि गुप्ता का वेलकम करेंगे। जब पहली बार कोई मुरादाबाद आए तो उनको दिखाना चाहिए कि भैया मुरादाबाद वाले लोग कितने दिल वाले लोग हैं और कितने जानदार और शानदार लोग हैं। तो एक वार्म वेलकम करेंगे रवि गुप्ता जी का मैं और आप मिलकर, है ना, आने वाली 8 सितंबर को पंचायत भवन में, शाम को 4 बजे पहला शो होगा एंड दूसरा शो होगा रात को 8 बजे। सो डोंट मिस आउट द चांस, बिकॉज इतना अच्छा ऑप्शन आपके पास है, तो आप डेफिनेटली जो है आने की तैयारी कर लो। और हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ पाजी, कल की चिंता छोड़िए, बस आज में मुस्कुराइए, है ना, ये टैगलाइन है हमारे रवि जी की। तो एक बहुत ही बढ़िया लाइव कॉन्सर्ट होने वाला है रवि गुप्ता जी का, मैं कह रहा हूँ पाजी आप डेफिनेटली जो है प्लीज़ अपनी जो है टिकट विकेट बुक कर लो यार यहाँ पर आने के लिए। 8 सितंबर डेट बिल्कुल याद रखिएगा, एंड आई एम सो एक्साइटेड। बाकी मोर डिटेल्स के लिए प्लीज ट्यून इन टू एफएम मुरादाबाद 89.6, ऐसे ही ट्यून इन रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। आपके मैसेज अभी लौट कर आता हूँ, उसके बाद जल्दी से शामिल करूंगा, सो डोंट गो एनीवेयर, अगले घंटे भी आपके साथ हूँ।
1: लेट्स गो क्रेजी।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय।
3: बिंदास मॉर्निंग
0: सुनिए, बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
2: छोटे मोटे पत्तियां बनाए कैसे सजना।
3: चलिए दोस्तों, बिंदास मॉर्निंग का सिलसिला यहीं पर करते हैं खत्म और अगले कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। 10:13 आज की सुबह सैटरडे मॉर्निंग है, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को वेरी गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। देखिए रीना छुट्टी पर है, खुशी आ नहीं पा रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी 12 बजे तक आप मेरे साथ इस कंपनी को एंजॉय करेंगे। आपके जो मैसेज आए थे मैं जल्दी जल्दी आपके नाम के साथ पढ़ता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे ना। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हाल चाल है? हाय, रामपुर से रिहाना बात कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग। एंड एक मैसेज मेरे पास सही जवाब का इनका भी पहुंचा है, बाकी अगला मैसेज मेरे पास आया था। हाय गुड मॉर्निंग बबली अंजान कर्शव गीता जी और साथ में लक्ष्मी भाभी, गुड मॉर्निंग, हेलो कैसे हैं आप? इन्होंने सही जवाब दिया था। हाय नमस्कार आनंद जी, सहारनपुर से ये मेरे प्यारे लिस्नर हैं जो रोजी पल विलीस लिखते हैं। दिल के अच्छे लोगों को दुनिया बेवकूफ समझती है। आई एग्री विद यू, एकदम सच बात है। मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं, शुभ शनिवार, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हालचाल है? मुरादाबाद सुनने वालों को राम राम और साथ में सही जवाब पहुंचा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, रामपुर से मोहन स्वरूप जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह। हाय गुड मॉर्निंग मोहसिन अंसारी जी, गुड मॉर्निंग आपको भी। आनंद जी, जय श्री राम, संजय सैनी देवापुर मुरादाबाद से सही जवाब पहुंचाते हैं, गुड मॉर्निंग लिखते हैं। लिखते हैं फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भूल जाना जिंदगी है, मिलकर लोग खुश होते हैं तो क्या हुआ, बिना मिले दोस्त निभाना भी जिंदगी है। वेरी नाइस। दर्पण भैया गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं और साथ में सही जवाब के साथ जुड़े हैं मेरे साथ आज की मॉर्निंग। डॉक्टर सुरेश मेरे साथ जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग आनंद, वेरी गुड मॉर्निंग। इसके अलावा हमारे पास ये टीना एंड श्वेता का मैसेज आ रहा है, साथ में हमारे पास ये कौन मैसेज कर रही है, शिखा जी गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं वंस अगेन, तारीख भाई जुड़ गए हैं। एंड इसके अलावा रामपुर से हमारे पास मैसेज आया है वसीम अकरम जी का, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई गाना अगर आप सुनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे साथ अपना गाना अपने नाम के साथ शेयर कर सकते हैं और अपनी प्यारी थॉट्स भी शेयर कर सकते हैं। आज की सुबह आप आनंद को सुन रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, 12 बजे तक आपके साथ हैं, 10:15 हो गए, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके मैसेज अभी और आने को हैं और बहुत सारे आ रहे हैं, लौट कर आऊँगा तो इनको शामिल करूँगा। ओके okay?

0: क्या बात है यार, वेलकम बैक है। ढेर सारे मैसेज पहुंच रहे हैं मेरे पास, थैंक यू सो मच इतने अमेजिंग मैसेजेस के लिए। और सच में ये जो आपके संदेश हैं बहुत प्यारे प्यारे आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं और आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं उसके लिए दिल से शुक्रिया। हाँ पाजी, मैं ये कह रहा था आपने जो मैसेज कर दी है ना गाने सुनने के लिए, ये मैं अभी पढ़ता हूँ।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
0: हर शहर की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, हर शहर में कुछ ना कुछ यूनिक होता है, कुछ ना कुछ खास होता है। और वैसे ही हमारे आसपास में जैसे चीज़ें पॉपुलर होती हैं ना, वैसे लोग भी पॉपुलर होते हैं ना, और कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे भी होते हैं ना। बट आज मैं आपके साथ कुछ ना कुछ तो अच्छी बातें करूंगा, अगर यहाँ पर आया हूँ तो कुछ ना कुछ जानकारी भी आपको दूंगा आज के दिन के बारे में, और स्पेशल बातें भी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम शो, आपका मॉर्निंग मसाला, मॉर्निंग डोज वाला टाइम। यहाँ पर आपसे करेंगे अभी ढेर सारी इसी वाले प्रोग्राम में। 10:20 हो गए, हमारे पास ढेर सारे संदेश पहुंच रहे हैं। गुड मॉर्निंग खुशी जी, तो देखिए खुशी जी तो नहीं है अभी ऑफिस में, फिलहाल मैं आपके साथ जरूर हूँ 12 बजे तक इसी स्टेशन पर। और ये सबसे पहले मेरे पास मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग, हाय माय नेम इज तरन्नुम। गुड मॉर्निंग तरन्नुम, और ये लिखते हैं आज की सुबह बहुत प्यारी है और आप जो भी चाहते हैं ऊपर वाला आपकी वो सारी ख्वाहिशें मुरादें पूरी करे, थैंक यू सो मच तरन्नुम जी। और आपने जो गाना मेरे को पहुंचाया है, डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा इसको आप तक पहुंचाने के लिए। हाय जय श्री राम आनंद, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हो? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, गुड मॉर्निंग। यार आप लोग अगर अपने मैसेज पहुंचा रहे हो ना तो प्लीज़ ज़रा नाम भी लिखकर पहुंचाया करो, क्योंकि खाली मैसेज करने से कुछ नहीं होता है, आप लोग अपने नाम भी पहुंचाओगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, है ना। तो थोड़ा सा पढ़ने में हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा, अच्छा ये इंसान यहां से जुड़ रहा है या इन्होंने मैसेज किया है, थोड़ा सा ईजी हो जाता है, समझ रहे हैं आप। ये गाना मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर श्वेता जी की रिक्वेस्ट पे, इन्होंने मेरे को मैसेज कर दिया है, गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है? आनंद जी वंस अगेन वेलकम बैक है और मुझे गाना सुनना है, प्लीज इसको प्ले कर दीजिएगा, मैंने जादू नहीं किया। फिर आपने क्या किया, ब्रेकफास्ट किया ना आपने? बहुत बढ़िया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर आप भी कुछ सुनना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं आज की सुबह। प्लीज अपना मैसेज छोड़ के जाइए फटाफट व्हाट्सएप पे 9837896896 पे। ये आप सुन रहे हैं आपकी शहर का अमेजिंग रेडियो, जहां बातें होती हैं देसी वाली, दिल से दिल तक वाली। राइट, तो आप बिना किसी देरी के व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई गाना सुनना चाहते हैं, किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, आज किसी का बर्थडे है, आपको लगता है कि रेडियो पे शेयर करना चाहिए, उसका बर्थडे रेडियो से विश होना चाहिए, तो आप इमीडिएटली मैसेज कर दो ना यार। एंड अभी के लिए प्लीज कीप लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6, आई विल बी राइट बैक। जनता डोंट गो एनीवेयर, ऐसे ही कनेक्टेड रहिए ना मेरे साथ, ठीक है? वापस आता हूँ, दिल से कहिए जियो बिंदास।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल रामपुर रोड मुरादाबाद।
5: कोई मिल गया,
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

खेलों की दुनिया में अपना करियर बनाने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा दिन है आज का। आज 29 अगस्त है और हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। श्रोताओं, अब इस पे हम जरा विस्तार से चर्चा करते हैं।

दोस्तों अब जो है बात कर लेते हैं इसी स्पेशल दिवस के बारे में। हाँ जी श्रोताओं, आपको बता दें आज 29 अगस्त है और आज का दिन उन सभी खिलाड़ियों के नाम है जिन्होंने हमें सिखाया है कि मैदान में जीतने से पहले खुद पर जीत हासिल करनी पड़ती है। और आज मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। क्या आप जानते हैं 29 अगस्त को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ये राष्ट्रीय खेल दिवस? चलिए मैं आपको बताता हूँ। आज ही के दिन जन्म हुआ था भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का। एंड मेजर ध्यानचंद जी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें मैं आपको बताता हूँ। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त सन 1905 को हुआ था। उन्हें भारतीय हॉकी के महानतम खिलाड़ी में गिना जाता है। श्रोताओं, उनका जो जन्म का नाम था वो ध्यान सिंह था, चंद्र उनके नाम के साथ बाद में जुड़ा। एंड उनकी हॉकी की कला इतनी शानदार थी कि उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। आपको बता दें उन्होंने भारत को 1928 में, साथ ही साथ 1932 में और 1936 में ओलंपिक में हॉकी के स्वर्ण पदक जीतने वाली टीमों का हिस्सा भी बनाया। हाँ जी, और 29 अगस्त को ही उनके जन्मदिन के सम्मान में भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। एंड जिससे अभी हम बात भी कर रहे हैं, खेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है आज सेलिब्रेट किया जाता है। भारत सरकार के इस खास खेलों में जो कंट्रीब्यूशन होते हैं वो भी अलग होते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो प्रदान करती है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, खेल सिर्फ एक मेडल जीतने का नाम नहीं है। खेल हमें अनुशासन सिखाता है, हार के बाद दोबारा उठना सिखाता है और टीम के साथ चलना सिखाता है। इसीलिए आज का ये दिन राष्ट्रीय खेल दिवस, इससे एक जो है मैसेज भी ले सकते हैं और खुद से एक छोटा सा वादा भी कर सकते हैं हम। बिकॉज हर दिन अपने शरीर को और अपनी सेहत को थोड़ा सा समय ज़रूर दीजिए, क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ है, अगर आपकी सेहत अच्छी है तो सब कुछ बहुत बेहतरीन है, राइट? 10:32 हो गए हैं, समय जो है किसी के इंतजार नहीं करता है भैया। समय का इंतजार सब करते हैं, कब बजेंगे 10, कब बजेंगे 12, लेकिन समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, ये तो सब जानते हैं, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एक मैसेज पहुंचा है। गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, ये मुझे मैसेज आया है फारूक भाई का। फारूक जी गुड मॉर्निंग। ये गाना मेरे नसीब में, आई डोंट नो ये नया वाला सुनना चाहते हैं या पुराना। वेल थैंक यू सो मच अपना मैसेज ड्रॉप करने के लिए मेरे भाई। मिलन बिहार से मेरे पास मैसेज पहुंच रहा है। गुड मॉर्निंग, हाय माय नेम इज रिधिमा। गुड

0: come on.
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस मैं यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। Thank you.

थैंक यू सो मच गाइज, इतने अमेजिंग मैसेज करने के लिए। 10:43 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 आरजे आनंद के साथ हैं आप, जहां पर ढेर सारी बातें हम कर रहे हैं और आपके मैसेज लगातार हम तक मिल रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच इतने प्यारे मैसेज करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: चलो भाई आपके दिमाग का थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं फटाफट से ना, आपसे एक छोटा सा सवाल पूछेंगे और आप इसका जवाब दीजिएगा मुझे इमीडिएटली मैसेज करके 9837 8 9 6 8 9 6 पर, हमें इंतजार रहेगा आपके मैसेजेस का, ठीक है जी। तो आप मुझे डेफिनेटली बताइएगा ज़रूर, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इसका जवाब ज़रूर से पहुँचाएँ, ठीक है। तो फटाफट से मुझे डेफिनेटली आप इसका जवाब पहुँचा देंगे और मुझे इंतज़ार भी रहेगा आपके मैसेजेस का। वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम खाते भी हैं और पीते भी हैं, अगर आपको पता है इसका जवाब तो आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा फन क्रिएट करना भी ज़रूरी है। तो मैं आपसे फिर से पूछता हूँ सवाल, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम खाते भी हैं और पीते भी हैं, अगर आपको पता है इसे जवाब तो जरूर बताइएगा मैसेज करके 9837 8 9 6 8 9 6 पर। गुड मॉर्निंग आनंद जी, गुड मॉर्निंग। मेरे पास ये मैसेज आया है यहाँ पर, इन्होंने अपना नाम लिखा है अलवर जी, और ये मैसेज करते हैं मुझे यहाँ मुरादाबाद से ही। एक पीली कोठी से मेरे पास संदेश पहुँचा है संदीप जी का, और एक मैसेज हमारे पास आ रहा है मनोज भट्ट जी का। ये लिखते हैं, गुड मॉर्निंग, इस वक्त मैं हरथला में हूँ और आपका रेडियो सुनते हुए ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आनंद जी, आप काफ़ी अच्छी बातें करते हैं और आज आपको इस प्रोग्राम में सुन के आनंद आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू सो मच। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से ये हमारे साथ जुड़े हैं इरशाद हुसैन अंसारी, सैयद शारिक अली, मेहराज अंसारी, बाबू अंसारी। लिखते हैं, गुड मॉर्निंग आनंद जी, आज मॉर्निंग मसाला में सुनकर आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमारा एक सॉन्ग ज़रूर प्ले करिएगा। चलिए जी, निकाल दिया मैंने आपका बेहतरीन गाना, शुक्रिया अपना गाना पहुंचाने के लिए। एक संदेश पहुंचा है, गुड मॉर्निंग, हाय कैसे हाल चाल है। गुड मॉर्निंग जी, ये मैसेज मेरे पास पंजाब से पहुँच रहा है। गुड मॉर्निंग, लुधियाना से मैसेज आया है, हाय कैसे हैं आप, हमें भी एक ट्रैक ज़रूर सुनवा दीजिएगा। नमस्ते जी, ये जी ज़रूर मैं आपको सुनवाऊंगा, आप बिल्कुल इंतज़ार करिए थोड़ा सा। एक संदेश पहुंचा है, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज पिंकी, आई एम फ्रॉम गायत्री नगर मुरादाबाद, कैसे हो आनंद जी। गुड मॉर्निंग,
1: आने लगे जरा जरा।
0: लाइन पार से मैसेज आ रहा है हमारे पास, रामलीला ग्राउंड के पास से मैसेज किया है पूजा जी ने, गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं और एक गाने की रिक्वेस्ट भी डाली है। आपका रेडियो सुनकर बड़ा मज़ा आता है, अच्छी अच्छी जानकारियां भी मिलती हैं मुरादाबाद से जुड़ी हुई, हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच प्रेम जी, आपने ये बात बोल करना दिल गार्डन गार्डन कर दिया यार।
2: Hey, you're tuning to FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: विजिट करो।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कोई मिल गया,
5: कोई मिल गया।
6: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: नरम मुल्कों की पुलिस ने दी है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
1: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
2: फुल ट्रैक। अगर आप अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो आज आनंद को सुन रहे हैं आप। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप जहां भी जा रहे हैं गुड लक, ऑल द बेस्ट। आज सैटरडे है, वीकेंड है। ये गाना निकल चुका है लुधियाना से, मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी एक भाई की। इनका नाम मुझे दिख नहीं रहा है, पंजाब लुधियाना से मैसेज किया है। नंबर की 40 है 0212। भाई सुन रहे हैं आप, तो आपका ये गाना निकल गया है रेडियो सेट पे। एंजॉय करिए यार, और हाँ थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा लो।

बिल्कुल जी, आहिस्ता आहिस्ता तो मेरा भी सफर आपके साथ आधा कट ही गया है, पता नहीं चल रहा है कैसे 11 बजने को है सुबह के और ये जो सफर है वो कैसे 3 घंटों में कन्वर्ट हो गया। आई कांट बिलीव दिस यार। आई एम टेलिंग यू, आप ही का नशा है बॉस, जो इतनी सारी बातें एक साथ हो जाती है और पता भी नहीं चलता है टाइम का। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, ढेर सारे मैसेज आपके लगातार मुझे मिल ही रहे हैं, इनको हम शामिल करते रहेंगे और कुछ बातें हैं जो आपको बताता रहूंगा। जैसे अभी मैंने एक रिसर्च पढ़ी, मैं स्टडी कर रहा था तो एक रिसर्च में पता लगा है कि अगर आप पूरे दिन में से 5 मिनट अपने लिए निकाल के अगर आप किसी गार्डन में या किसी पार्क में बैठते हैं जहां पर हरा भरा माहौल होता है, तो वहां बैठने से एक तो आपका स्ट्रेस कम होता है, प्लस आपके अंदर जो पॉजिटिव हार्मोन है वो रिलीज होते हैं, जिससे आपका जो माइंड है वो और ज्यादा फ्रेशनेस फील करता है। और अगर आप गुस्से में हैं या थके हुए हैं तो आपको काफी रिलीफ मिलता है। अगर आप 5 मिनट जाके किसी ग्रीन एरिया में बैठ जाते हैं, किसी शांत एरिया में बैठ जाते हैं, वो पार्क हो सकता है, वो आपके आसपास कोई गार्डन अच्छा सा हो सकता है, या आपके घर में आपकी छोटी सी बेल्कनी हो सकती है जहाँ बैठ के आपको थोड़ा सा अच्छा सा फील हो, कंफर्टेबल सा फील हो, तो वहाँ बैठ के आपका स्ट्रेस भी कम होता है, प्लस आप बहुत हैप्पी फील करते हो। ये रिसर्च जो ऐसी होती है ना तो बढ़िया होती है, नो डाउट। 10:58 हो गए स्टेशन क्लॉक में, एफएम मुरादाबाद आप सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आनंद को, यह है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपके संदेश को भी शामिल कर लेते हैं। अभी आपने जो गाना सुना था बहुत ही बढ़िया, ये लुधियाना से मैसेज आया था। अगला मैसेज मेरे पास आया है, गुड मॉर्निंग आनंद जी, आपका कार्यक्रम ध्यान से सुनता हूँ, प्रस्तुति स्पष्टता और प्रोफेशनलिज्म और श्रोताओं से जुड़ने का वाकई आपका जो तरीका है वो काफ़ी काबिल तारीफ है, और अगर कार्यक्रम के अनुकूल हो तो मेरी एक छोटी सी फरमाइश है। बिल्कुल जी, डेफिनेटली आप प्ले कर दीजिएगा ये मेरा ट्रैक, डेफिनेटली वंडरफुल सॉन्ग है, मैं जरूर इसको प्ले करूंगा। और इन्होंने लिखा है, आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब, ओ माय गॉड सच अमेजिंग आंसर यार, एंड आसिफ फ्रॉम इटली, ओ माय गॉड इटली से मेरे को व्हाट्सएप आया है, मैं तभी दिख रहा हूँ यार आपका नंबर, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये पाकिस्तान का भी नहीं है, ये यूएई का नंबर भी नहीं है, तो ये कहाँ का नंबर है। थैंक गॉड मुझे समझ आएगा कि इटली से भी हमारे लिसनर जुड़े हैं। देखो अलग अलग कंट्रीज में ना मुरादाबाद की जनता फैली हुई है, तो मुझे अब यहाँ पे आके पता चल गया है कुछ लोग यूएई से हमारे साथ जुड़ते हैं, पाकिस्तान से जुड़ते हैं, एंड हमारे पास कनाडा से भी मैसेज आते हैं, अभी ये मेरे पास इटली से मैसेज आ रहा है। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल मैसेज, और आपने जो लिखा है वो मेरे लिए एक प्लेजर है, बहुत ही अच्छी चीज है, आई एम सो एक्साइटेड, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल मैसेज। आगे बढ़ते हैं, गुड मॉर्निंग आरजे जी, कैसे हैं आप, थैंक यू सो मच हमारा मैसेज शामिल करने के लिए, मुझे गाना सुनवा दीजिएगा। एंड ये मैसेज कश्मीर से आ रहा है, मैं राजू दीन जी का, कश्मीर से मैसेज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, आप हमेशा हमारे कार्यक्रमों में जो है जुड़ते रहते हैं, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, एक और संदेश हमारे पास पहुंच गया है, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हाल चाल है, माय नेम इज दीपा, हाय दीपा गुड मॉर्निंग, ये मुझे मैसेज करती है लाइन पार से, इनको एक पंजाबी गाना सुनना है कोई सा भी, ठीक है जी जरूर चलाऊंगा। दीपाली हमारे साथ जुड़ गई हैं इस वक्त, ये मुझे मुरादाबाद से मैसेज करती हैं, मधुबनी से गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं, गुड मॉर्निंग दीपाली जी। एक मैसेज आया है बबली अनजान, साथ में गीता कश्यप लक्ष्मी भाभी गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, एंड इनको भी एक ट्रैक सुनना है। बिल्कुल जी मैं कोशिश करूंगा, आप लोग इतने प्यारे प्यारे गाने पहुंचाते हैं, हमारे पूरे परिवार की तरफ से आनंद जी को गुड मॉर्निंग, नमन यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच, एंड साथ में शंकर लाल यादव, रितु यादव, अमित यादव, एंड साथ में एक और नाम बड़ा प्यारा सा इन्होंने लिखा है, थोड़ा सा निरांशी यादव, लाइन पर प्रकाश नगर चौराहा से मुझे मैसेज आ रहा है, प्लीज़ प्लीज़ प्ले माई ब्यूटिफुल ट्रैक, गाना बहुत अच्छा है आपका, ज़रूर मैं प्ले करूँगा थोड़ी सी देर में।

0: चलिए फिलहाल एक रिक्वेस्ट आई थी एक पंजाबी गाने की, तो मैं एक बढ़िया सा गाना आपके लिए निकाल रहा हूँ अभी से स्टेशन पे। आप कहीं मत जाइए, ऐसे ही ट्यून इन रहिए आनंद के साथ। देखिए खुशी तो स्टूडियो में नहीं है, सैटरडे वैसे भी उसकी ऑफ होती है, लेकिन अभी तो रीना नहीं है तो हम लोगों को मैनेज करना है, बट अभी उसकी तबीयत डाउन है तो मैंने सोचा चलो हमें मौका मिला है हम आपके साथ शो कर लेते हैं बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी अपने प्यारे प्यारे गाने और संदेश हम तक पहुंचाइए। और एक सवाल मैंने पूछा है आपसे, आप मुझे उसका प्लीज मैसेज करके बताइएगा जवाब। मैंने आपसे कहा है आप मुझे व्हाट्सएप करके बताओ जरा ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। पता है आपको, चुटकियों में बता दूंगा, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तगड़ा है। चुप कर व्हाट्सएप करो मुझे 9837896896। जाइए अपने मैसेज बॉक्स में, टाइप कीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम और एक छोटा सा आंसर जो मैंने सवाल पूछा है। और कोई गाना सुनना चाहते हो वो भी आप बता सकते हो, अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा बॉस। कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, ऐसे ही ट्यून रहिए आनंद के साथ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए। छोटू सा ब्रेक, फिर ये बढ़िया सा गाना।
1: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 7055070552।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: बसंती इनके सामने मत नाचना।
6: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

मामू सुबह हो गई है, 11:03 हो रहे हैं, आनंद को सुन रहे हैं आप। ये है आपका मॉर्निंग मैगजीन शो, दिस इज मॉर्निंग मसाला। अभी मसाले डालेंगे कुछ और अपडेट के, आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए, ये गाना सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। इटली से मैसेज आ गया, कश्मीर से मैसेज आ गया है, एक और मैसेज आया है मेरे पास पाकिस्तान से। आप क्या कर रहे हैं, आप कब मैसेज करोगे, जल्दी से व्हाट्सएप करोगे।

ये सारे गाने जो आप सुन रहे हो ना, ये आप ही लोगों के रिक्वेस्ट पे गाने चल रहे हैं भाई, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। 11:12 हो गए, बड़ा प्यारा सा सेगमेंट बन गया 11:12 का। आज 29 अगस्त है और आपको बताते चले भैया, देखिए 3 दिन जो है फ्री बस सेवा चलाई गई थी हमारे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। हाँ जी, आपको बताया ना 28 भी कल भी था, 27, 28, 29 आज भी जो है फ्री बस सेवा चल रही है। तो अगर आप कहीं आना चाह रही हैं, कहीं से अपने मम्मी के घर से आप वापस आ रहे हो या आपने कहीं और घर जा रहे हो, आप कहीं पे आपको घूमने जाना है, तो आज की दिन आप बसों का डेफिनेटली लाभ उठा सकते हो, फ्री में आप घूम सकते हो। सुबह 6 बजे से सर्विस आज भी स्टार्ट हो गई ये फैसिलिटी, और ये रात को 12 बजे तक चलने वाली है। तो अगर आप कहीं पे आज भी ट्रैवल करना चाह रहे हो, आप कहीं से आप कल राखी पे घर गए थे, आपको वापस आना है, तो आप डेफिनेटली फ्री में जो ये बस चल रही है इनकी हेल्प ले सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये अपडेट मुझे जरूरी थी बताएं। बाकी आप मेरे साथ यूनिन है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तमाम प्रकार की जानकारियां आप हमें पहुंचा रहे हो, हम आपको पहुंचा रहे हैं, और क्या ही चाहिए, यही तो चाहिए यार जिंदगी में, है ना। और आपको बता दें 118 रुपये में बनेगा स्मार्ट कार्ड, 5 साल तक रहेगा वैलिड। हाँ जी, आपको बता दें बसों में फ्री सफर करने का आनंद उठा पाएंगे वो लोग जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है। एग्जैक्टली, आपको बता दें रोडवेज बसों में 60 साल से ऊपर की महिलाओं को फ्री सफर करने के लिए स्मार्ट कार्ड बनवाए जा रहे हैं, और ये कार्ड जो है किसी भी बस अड्डे पर जाके बनवाया जा सकता है। इसके लिए आपको 118 रुपये देने होंगे और ये 5 साल के लिए वैलिड होगी, इसकी जो मान्यता होगी वो 5 साल की होगी। और इस संबंध में परिवहन निगम है वो जल्द ही इस पूरी कार्य योजना को जारी करेगा। बाकी सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें 2011 की जनगणना और मार्च 2022 की जनगणना में किए गए सर्वे के अनुसार बस में यात्रा करने के जो सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आए हैं वो रोडवेज बसों में प्रतिदिन 60 वर्षों से अधिक जो महिलाएं हैं उनका आंकड़ा एक निकल कर आया है, जिसको ध्यान में रखते हुए अब ये एक बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव लिया गया है इस कार्ड के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये स्मार्ट कार्ड की जो व्यवस्था है वो की जा रही है ताकि लाभार्थी को कोई किसी भी दिक्कत का सामना ना हो। और अगर आप इस कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपके घर में कोई बुजुर्ग है जिसकी उम्र 60 वर्ष से प्लस है, तो उसका ये कार्ड आप जरूर बनवाएं ताकि जब भी वो कहीं ट्रैवल करें तो उनको किसी भी चीज का किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, बहुत ही आसानी से जो है ये सुविधा उनको मिलेगी। तो आप डेफिनेटली इसका लाभ उठा सकते हैं, 118 रुपये में ये कार्ड बनेगा, बस अड्डे पर जाके इसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है जी। बाकी तरह तरह की अपडेट आपको मिलती है, आज नेशनल इंटरनेशनल डेज में क्या बनाया जाता है इस पे बात करेंगे, और आपके मैसेज तो लगातार मुझे मिल ही रहे हैं। गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हालचाल हैं आप, बहुत ही अच्छे गाने प्ले करते हैं, आपने पूरा माहौल ही चेंज कर दिया है यहाँ पर आकर, एंड सच लवली सॉन्ग्स। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि मेरा कोई रोल नहीं है, जो भी गाने आप सुन रहे हैं वो सारे के सारे गाने आप ही की पसंद के चल रहे हैं, आप ही लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो मेरा तो कोई रोल नहीं है। जो अगला गाना है वो भी बहुत ही प्यारा गाना है, शेफाली जी ने इस गाने की रिक्वेस्ट की है मुझे, बंटी और बबली से, बहुत ही गजब का सॉन्ग, एंड मैं इस गाने को बहुत टाइम के बाद सुन रहा हूँ, रेडियो में सुनते सुनते बड़े हुए इस गाने को, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। ऐसी कौन सी चीज़ें जो हम खा भी सकते हैं पी भी सकते हैं, मुझे इसका जवाब चाहिए, अगर आप दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। एक और चीज मुझे आपसे बोलनी है, अगर आपका इन शहरों में कोई भी कांटेक्ट है या अगर आप इन शहरों में किसी को भी जानते हैं तो प्लीज आप मुझे जरूर अपडेट करिएगा। मैं आपको कुछ शहर बता रहा हूँ, सहारनपुर, लुधियाना, अम्बाला, अमृतसर एंड जगाधरी, राजपुरा, अगर इन सारे स्टेशन पे, या जलंधर, अगर आपकी कोई कॉन्टैक्ट है या आप वहाँ पे किसी को जानते हैं, कोई आपका रिलेटिव है या आपको लगता है कि हाँ वहाँ पे हमारा कोई है जानने वाला, तो अगर आप मुझे बता सकते हैं तो थोड़ी सी आपकी मेहरबानी हो जाएगी। जनाब अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सहारनपुर, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, ये जगाधरी, इन सब स्टेशन पे अगर आपकी कोई मतलब स्टेशन हो या इन शहरों में अगर आपकी कोई कॉन्टैक्ट हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल ये गाना शेफाली जी आपकी रिक्वेस्ट पे आ रहा है, बर्बाद हो रहे हैं। घड़ी मिला लूं, 11:16 हो रहे हैं।

0: पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। Thank you.

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: दोस्तों, आप आनंद के साथ जुड़े हुए हैं आपके फेवरेट प्रोग्राम मॉर्निंग मसाला में। और ये जो गाना है, ये मेरे पास इसकी रिक्वेस्ट आई थी इटली से। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे प्यारे मित्र जिन्होंने हमें मैसेज किया है और वो खूबसूरत गाना सुनना चाहते हैं, जिनका नाम आसिफ है। आसिफ जी इटली से जुड़े हैं, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक पहुँचाते हैं। चलिए इस गाने को सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं इसी गाने को सुनते हुए। अगर आप भी कुछ सुनना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं

इटली से मैसेज पहुंचा था हमारे पास आसिफ जी का, उन्हीं की रिक्वेस्ट पे गाना भी आप एंजॉय कर रहे थे। आनंद के साथ हैं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद और 11:28 का समय हो गया है। बहुत प्यारे प्यारे मैसेज लगातार आप कर रहे हैं, शुक्रिया मेरे भाई। देखो लाइफ है तो भसड़ मचनी तो कंपलसरी है, जब जिंदगी है तो प्रॉब्लम्स आना स्वाभाविक है, और जब ये प्रॉब्लम्स आती है तो बहुत कुछ सिखा कर जाती है। कहते हैं ना जिंदगी को जब हम लाइफ में जीते हैं तो इतना आसान नहीं होता लाइफ जीना, उसमें बहुत सारे संघर्ष होते हैं, बहुत सारे लो अप चीज़ें आती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, है ना, ये लाइफ का पार्ट है। हमें जिंदगी में आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि देखिए एक कहना होता है और एक फेस करना होता है, दोनों में बहुत अंतर होता है ना। लेकिन जब आप फेस करते हो ना, प्रैक्टिकली जब कोई सिचुएशन आपके ऊपर आती है और आप उसे फेस करके निकल रहे होते हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो। कहते हैं ना कभी कभी आपके रिश्तेदार आपके दोस्त आपको बहुत कुछ सिखाते हैं बताते हैं, बट आप उस टाइम पे उसको इतना फोकस्ड होके नहीं सुनते हो, राइट? लेकिन जब वो आपके ऊपर बीतती है तब आपको बहुत अच्छे से समझ आती है। कहते हैं ना हुजूर बादाम खाने से अकल आती, तो कितने लोग बाजारों में बादाम बेच रहे हैं, अकल सबसे पहले उनके अंदर भी भर भर के होती है, अकलें तो सिर्फ ठोकर खाने से आती है। ये बात बिल्कुल सच बोली किसी ने यार। चलिए आपके मैसेज की तरफ मैं रुख करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर सुंदर मैसेज करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अलग अलग जगहों से मेरे साथ जुड़े हैं, अभी हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है बहुत ही हमारी प्यारी सी लिसनर का। गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हैं? ये सना एंड नाजिया मेरे साथ जुड़ चुकी हैं आज की सुबह, और इनको एक बहुत ही बेहतरीन ट्रैक सुनना है, तो ये बेहतरीन गाना ज़रूर मैं आप तक पहुँचाऊँगा। इसके अलावा हमारे पास नूर का व्हाट्सएप मैसेज पहुँचा है पागवाड़ा से, बहुत बहुत शुक्रिया। दिलशाद भाई हमारे साथ चुके हैं आज की सुबह, प्रेम जी मेरे साथ जुड़े हैं, साथ में स्वीटी का मैसेज पहुंच गया है, और ये मंझोला से हमारे साथ जुड़े हैं दीपक शर्मा, थैंक यू सो मच दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक और संदेश मेरे पास पहुंचा है, सिविल लाइंस महिला थाना के पास हम आपको सुन रहे हैं। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल है? राहुल वर्मा जी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक संदेश और मेरे पास पहुंचा है, आनंद जी कैसे हैं आप? आफ्टर लॉन्ग टाइम हम आपको सुन रहे हैं, सुबह तो खैर नहीं सुन पा रहे हैं, थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा है, लेकिन आज आपको इस प्रोग्राम में सुन के अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मुझे तो अच्छा मुझे भी लग रहा है, लेकिन पेट में जो चूहे दौड़ रहे हैं ना आपको बता नहीं सकता हूँ। 8 से 12 को आगे अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है बॉस, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ खा पी के आ जाऊँ, क्या एनर्जी को भी मेंटेन रखना है, कब से पानी पिए जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है पानी पीने से काम नहीं चलेगा, अभी कुछ खाना भी पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है ना। आने वाला गाना एंजॉय करते हैं साथ में, बहुत ही बेहतरीन ट्रैक उदित नारायण एंड कविता कृष्ण मूर्ति जी की आवाजों में ये ट्रैक है। लेकिन कुछ खाया पिया नहीं है ना, इसलिए जुबान लड़खड़ा रही है, सोच रहा हूँ कुछ। एक तो यार मेरे रामलीला ग्राउंड के आसपास में कुछ अच्छा खाने का ही नहीं मिलता है, मतलब ये मेरी शिकायत है आसपास में कोई ऐसा सुन रहा तो भाई कुछ तो बढ़िया चाचू का इंतजाम करो यार। ये कहने का टाइम तो मेरे पास कत ही नहीं है, मैं कुछ सर्च करता हूँ, देखता हूँ कुछ ऑनलाइन अगर खाने पीने का अच्छा मिल जाए, क्योंकि अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा यार, बहुत भयंकर वाली मेरे को भूख लगी है, तो कुछ तो ब्रेकफास्ट होना चाहिए। फिलहाल आप ही गाना सुनो, और कुछ कहना चाहते हो, कुछ शेयर करना चाहते हो, कुछ सुनना चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सएप करो 9837896896, ये व्हाट्सएप का नंबर है। सुनते रहिए आरजे आनंद को, ये है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए। गुड मॉर्निंग।

0: विजिट करो।
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
3: इस गाने की रिक्वेस्ट ने मेरे पास बड़ी देर से आ रही थी। प्रतीक्षा एंड मोहन, साथ में पिंकी, रिंकू एंड ये कौन है, इशिका, इन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट डाली थी इस गाने की। चलो इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने एक सवाल पूछा था, ऐसी कौन सी चीजें जिसे हम खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं? अगर आपको पता है सही जवाब, हाँ गूगल मत करना, नहीं तो आपको पाप चढ़ेगा, पहले बता रहा हूँ। आज की सुबह अगर आपको पता है तो मुझे व्हाट्सएप करो 9837896896। मुझे पता है आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, बॉस आप नहीं कर सकते हो मैसेज, आई नो आप इंजॉय कर रहे हो, आप इंजॉय करते रहो, बस सीट बेल्ट लगा ली ना आपने, वेरी गुड, फोकस गाड़ी पे रखिए और अपने कानों को रेडियो पे रखिए। अच्छे गाने बज रहे हैं आपकी रिक्वेस्ट पर।
4: एक लड़की की तुम्हें क्या सुनाऊं,
3: फिलहाल मेरी दास्तां थोड़ी सी परेशानी वाली है, शेयर करता हूं अभी आपके साथ।

everybody. Gana chana. बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। इस गाने की रिक्वेस्ट आप लोगों ने ही करी थी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपने जो मैसेज किए हैं उसके लिए दिल से शुक्रिया। 11:41 हो गए स्टेशन क्लॉक में, आनंद के साथ जुड़े हुए हैं आप। हाय, माय नेम इज जस्सी, गुड मॉर्निंग। हाय जस्सी, इन्होंने मेरे को जवाब दिया है एंड अभी इन्होंने कोई गाने वाने का तो नहीं बोला है, बस इन्होंने अपना नाम बता दिया। माय नेम इज जस्सी गिल। हाय जस्सी, मुझे वो बॉलीवुड में जो जस्सी गिल है ना, पंजाबी सिंगर, वो वाले याद आ गए। नंबर की 4001662 अगर आप सुन रहे हो तो भैया आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। मैंने आपसे पूछा था ना ऐसी कौन सी चीज़ें जिसे हम खाते भी हैं और पीते भी हैं, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं हमारे पास। ये मैसेज आ गया, गुड मॉर्निंग आनंद भाई, कैसे हाल चाल है आप, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा कर रहे हो और एक गाना मुझे सुनवा दीजिएगा, डेफिनेटली मैं प्ले करूंगा। अमित जी आप जुड़े, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इटली से आसिफ जी मुझे लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा फेवरेट गाना सुनाकर दिन बना दिया है। और लिखते हैं साथ में, गुड मॉर्निंग आदरणीय आनंद जी, आपका कार्यक्रम ध्यान से सुनता हूँ, बहुत ही अच्छी आपकी जो है प्रस्तुति है, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और ये लिख रहे हैं, आनंद जी क्या बात है, आज तो आपने मतलब जो है एक के बाद एक शानदार सॉन्ग प्ले किए हैं, बहुत ही आनंद, मतलब जो है आनंद में आपने माहौल कर दिया है, आनंद आ रहा है काफी सुनकर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, तो मुझे बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं, आनंद जी आपके फादर मिले या नहीं मिले, तो देखो यार अभी तक तो मेरे फादर की कोई अपडेट नहीं है। हाँ जी, मैं आपको बता देता हूँ, 17 अगस्त मंडे की सुबह ये एक्चुअली एक एक्सीडेंट हो गया है ऐसा वाला, जिसपे हम लोग अभी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं लेकिन अभी कोई पता नहीं चल रहा है। और फादर की एज 70+ है, मेरे फादर मिसिंग है लगभग आज 13-14 दिन हो गए हैं, अभी तक तो कोई कहीं से हेल्प नहीं मिल रही। और जो जिस ट्रेन में मेरे फादर बैठ गए थे, अनफॉर्चुनेटली वो पंजाब जा रही थी गाड़ी और ट्रेन नंबर था 4617, यानी कि 1467 ये ट्रेन नंबर था। ये पूर्णिया बिहार से ट्रेन आ रही थी, अमृतसर जाने वाली थी गाड़ी, और सुबह 7:01 पे गाड़ी आई और 7:10 पे गाड़ी चली मुरादाबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। और आई डोंट नो क्या हुआ, मेरे फादर एकदम से, बहुत सारा क्राउड आया, वो हमसे एकदम से एकदम मतलब अलग हो गए, पता नहीं चला। और कैसे वो उस ट्रेन में चढ़ गया समझ में नहीं आ रहा है चीज़ें, बट अभी तक उनकी कोई अपडेट नहीं है। मैंने JRP पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई है, वहाँ पर भी लोग जो है ऐसा नहीं है, पुलिस प्रशासन भी हेल्प कर ही रहा है जितना उनसे हो रहा है, वो लोग भी कर रहे हैं रिसर्च और JRP पुलिस भी कर रही है अपना काम। तो बाकी अभी स्ट्रेस का माहौल है, थोड़ा सा टेंशन में है पूरी फैमिली, मैं भी हूँ ऑफकोर्स, लेकिन वही चीज़ है कि समझ में नहीं आ रहा है चीज़ें कैसे अभी सही की जाए, कैसे कहाँ जाया जाए, कुछ भी आइडिया नहीं है। इसलिए मैंने आपसे कहा था, अगर पंजाब वाले रूट पे आपका कोई भी रिलेटिव है या कोई भी आपका ऐसा कॉन्टैक्ट है, अगर आप मुझे थोड़ी हेल्प कर सकते हैं तो शायद मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा अपने फादर तक पहुंचना, क्योंकि एक इंसान, बुजुर्ग इंसान गायब है, उसका कोई अता पता नहीं है, 15-16 दिन हो गए, तो थोड़ा सा टेंशन वाला मामला तो बन ही गया है ये, अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है सिचुएशन। तो रेडियो पर हम दूर दूर तक लोगों की मैसेज को डिलीवर करते हैं, जब बारी अपनी आई है तो मुझे लग रहा है कि अब डेफिनेटली बात करनी चाहिए। तो अगर आपका इस रूट पर कोई भी कॉन्टैक्ट है या आप खुद वहाँ पर रहते हैं तो प्लीज़ हेल्प मी, मुझे बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। अगर आप इधर कहीं भी रहते हैं पंजाब की तरफ, सहारनपुर, अंबाला, लुधियाना, अमृतसर, ब्यास, जलंधर, इस वाले रूट पे, जगाधरी, कहीं पर भी अगर आप हैं तो आप डेफिनेटली मुझे बताइएगा। अगर आप रुड़की में हैं, अगर आप लक्सर में हैं, इन रूट से होके ट्रेन गई है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ ना कुछ सपोर्ट या हेल्प डेफिनेटली मिल सकती है। तो अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है, आप लोग इतने सारे मैसेज कर रहे हैं, बट हाँ आई एम श्योर, मुझे यकीन है हमारे फादर ज़रूर वापस मिल जाएंगे। देखिए जब हम किसी के लिए गलत नहीं सोचते हैं ना, तो हमारे लिए भी गलत हो नहीं सकता है, थोड़ी मुश्किलें ज़रूर आएंगी लेकिन गलत तो नहीं होगा, इतना तो यकीन है अपने आप पे भी और अपने ऊपर वाले पे भी। बाकी आपकी दुआएं हैं, आपका साथ है तो ज़रूर अच्छा होगा, बस दुआएं करिए, प्रार्थनाएं करिए कि हमारे पिताजी जल्दी सुरक्षित घर को लौटें, वो जहां भी हैं, और हमें जल्दी मिल जाएं, और हमारे ये जो समय है, ये जो एक टाइम चल रहा है, इससे जल्दी से हम बाहर आ जाएं। बस थोड़ा सा स्ट्रेस है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं है, अंदर क्या चल रहा है ये तो मुझे अच्छे से पता है और शायद आप भी समझ पा रहे होंगे। एक बहुत ही ऐसी न्यूज जिसपे मैं बात करना भी नहीं चाह रहा था लेकिन बहुत दिन हो गए, तो मुझे लगता है कि अब रेडियो के थ्रू भी मैसेज डिलीवर करना चाहिए, जितना हो सकता है प्लीज हेल्प कीजिए, बहुत जरूरी है आपकी हेल्प की, मुझे बहुत नीड है। यार बते रहे हैं लेकिन ऐसे टाइम पे कोई काम नहीं आता बॉस, और ये जो समय होता है ना यही आपको सिखाता है कि जिंदगी में ना जब आपकी अच्छी अच्छी चीजें चलती है तो आपके 4 रिश्तेदार और 4 पड़ोसी और 4 फ्रेंड अपने आप आ जाते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है ना जो अपने होते हैं ना वो भी दूर भाग जाते हैं। अब तो मुझे विश्वास ही नहीं है यार, अभी तो वही सीन है, ऑन ईयर स्माइल, ऑफ ईयर अ लॉट गोइंग ऑन, समझ रहे हो ना मेरी सिचुएशन। फिलहाल चलो गाना सुनते हैं यार,

0: मत करो।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
5: कोई मिल गया,
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

बिन पूछे ये

बहुत अच्छा सा गाना अभी आप एंजॉय कर रहे थे और आप में से किसी ने मुझे इस गाने की जो है रिक्वेस्ट डाली थी। श्रोताओं 11:54 हो गए हैं, कुछ खाने पीने का तो आसपास मिला नहीं है, जोरों की भूख लगी है, तो मैं अभी आपसे लूंगा जाने की इजाजत, क्योंकि हेल्थ का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है ना। तो अभी फिलहाल सुबह से तो मैंने कुछ खाया नहीं है, तो इसीलिए अब जाके फटाफट ब्रंच ही करूंगा। अभी ना तो लंच है ना ब्रेकफास्ट है, तो ब्रंच ही हो जाएगा फाइनली। चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने जो मैसेज किए थे उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बिल्कुल सही सही जवाब पहुंचाए थे आज की सुबह। तमाम सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए थे आज की सुबह कि आनंद जी आपने जो पूछा है ऐसी कौन सी चीज़ें जो हम खा भी सकते हैं पी भी सकते हैं, उसका सही जवाब ये है एग्जैक्टली नारियल नजर आएगा। तालियां आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, सबने एकदम सही धाकड़ जवाब दिए हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है? कश्मीर से मेरे पास मैसेज आ रहा था एक और, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और इन्होंने बहुत अच्छे गाने की जो है एक फरमाइश डाली थी, तो ऑफ कोर्स आपका गाना अब तक पहुंच जाएगा। हाय, प्लीज प्ले माय ब्यूटीफुल ट्रैक। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हाय, गुड मॉर्निंग, मैं बहुत बढ़िया हूँ। सर कैसे हो? नमस्कार जी, नमस्कार। पूनम वर्मा, दीपेश शर्मा, ज्योतिष एंड शिवांश हमारे साथ जुड़े हैं आज की सुबह। इसके अलावा मेरे पास मैसेज आया था, हेलो नमस्ते आनंद जी, गुड मॉर्निंग। ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम एंड साथ में मेराज जी हमारे साथ जुड़े हैं आज़ाद नगर लक्सर उत्तराखंड हरिद्वार से मैसेज कर रहे हैं। इसके अलावा एक मैसेज हमारे पास पहुंचा है नाइमुल जी का, गुड मॉर्निंग। और ये मैसेज हमारे पास आ गया है, गुड मॉर्निंग सर कैसे हालचाल है? अफ्रीका से मेरे पास मैसेज आया है एंड शेख साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही खूबसूरत गीत की फरमाइश उन्होंने डाली है आज की सुबह, तो ज़रूर हम इसको भी प्ले करने की कोशिश करेंगे। समय थोड़ा सा कम है अब हमारे पास, लेनी होगी आपसे जाने की। गुड मॉर्निंग आरजे, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग सहारनपुर से जोन रोजी पल विलीज मेरे साथ जुड़े हैं और बहुत ही खूबसूरत गीत की फरमाइश करते हैं, ये जरूर मैं इसको प्ले करके जाऊंगा। बाकी आनंद जी गुड मॉर्निंग, आपका जवाब है नारियल गोला, इसे हम पीते भी हैं और खाते भी हैं। विक्की सागर जी ने मुझे फोटो खींच के भेज दिए, वेरी नाइस यार। मैं बेंगलुरु से जुड़ा हूँ राजेश मीना और कार्यक्रम तो सुनता ही रहता हूँ, लेकिन अभी इटली से मैसेज आया, कश्मीर से आया और भी न जाने कहाँ कहाँ से मैसेज आ रहे हैं आनंद जी, तो मैंने सोचा मैं भी आपको मैसेज पहुंचा देता हूं। अरे भाई ये बहुत बढ़िया किया आपने, चलिए थैंक यू सो मच, आपने संदेश पहुंचाया। एक मैसेज आ गया है, जय श्री राम, कैसे हालचाल है? संजय सैनी देवापुर से मुझे लिखते हैं, सर आपने जो सवाल किया था उसका जवाब है नारियल, बिल्कुल सही जवाब है। अलका वर्मा बुद्धि विहार से सही जवाब पहुंचाती हैं। और एक संदेश और पहुंच गया है, सर लुधियाना में हूं इस वक्त में, ओके थैंक यू सर। अमृतसर में मेरा कॉन्टैक्ट है, हाय गुड मॉर्निंग सर, मैं आपको बताना चाहती हूं मेरा कॉन्टैक्ट रुड़की में है, कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी, ओके थैंक यू सो मच। एक और मैसेज आ गया है, गुड मॉर्निंग सर, मैं लुधियाना में मेरी फ्रेंड रहती है, अगर कोई हेल्प चाहिए, ओके थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जो ये मैसेज किए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जरूर। अजीत कसाना, माया देवी एंड साथ में ऋतिक, आदित्य कसाना लदावली मुरादाबाद से जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। कांट रोड से यूपी मुरादाबाद से रणवीर जेठालाल जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, गुड मॉर्निंग सर आप कैसे हैं? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। बारुल हुसैन सिद्दीकी साहब जुड़े हैं अमरोहा फतेह खालसा से, गुड मॉर्निंग ये भी पहुंचाते हैं। ऊपर वाला करे आपकी जो भी तकलीफें हैं वो जल्दी खत्म हो जाएं और आप एक बार फिर से हैप्पी जोन में आ जाएं। जी शुक्रिया, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत सारे ब्लेसिंग्सफुल मैसेज आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन संदेशों के लिए, शुक्रगुजार रहूंगा आपका। तालिया अभी फिलहाल जाता हूँ, फिर जल्दी आपसे मिलेंगे इसी स्टेशन पे। कल संडे है, कल तो मेरी आपकी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन जल्द ही आपसे होगी हमारी मुलाकात, तो आप कहीं मत जाइए, ऐसे ही बनाए रखिए अपना साथ। आगे भी अच्छे गाने आपके लिए छोड़ के जाऊंगा इस स्टेशन पे, बाकी जिन लोगों के मैसेज शामिल नहीं कर पाया उनके लिए माफी चाहता हूँ, समय थोड़ा सा कम है। आई होप आप मेरी प्रॉब्लम समझ पा रहे होंगे गाइज। टेक्स्ट मैसेज मेरे पास ढेर सारे पहुंचे थे, हाय गुड मॉर्निंग नेहा फ्रॉम मुरादाबाद, एंड सर जो आपने सवाल किया इसका राइट आंसर है कोकोनट, इज द राइट आंसर, थैंक यू सो मच, बिल्कुल सही जवाब दिया है। हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है? माय नेम इज पिंकी, गुड मॉर्निंग पिंकी, इन्होंने भी सही जवाब पहुंचाया है। क्या? एक और मैसेज आ गया है, गुड मॉर्निंग सर कैसे हालचाल है? माय नेम इज कपिल देव, गुड मॉर्निंग कपिल। तो चलो गाइज थैंक यू, मिलते हैं आपसे वेरी वेरी सून, स्टे ट्यून, आप कहीं मत जाइए, ट्यून इन रहिए एफएम मुरादाबाद पे, अच्छे आगे गाने आते रहेंगे आपके लिए। और बाकी बस दुआएं करते रहिए यार, सब कुछ जिंदगी में अच्छा चले, अपनी तरफ से अगर हम किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी ना करें, इसी मोटिवेशन कोट के साथ मैं निकलता हूं। अपना अच्छा कर्म करते रहिए, सब कुछ अच्छा होगा, बाकी कुछ चीजें ऊपर वाले पे भी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि वो जो करते हैं अच्छा ही करते हैं यार। चलिए बाय बाय, टेक केयर, होगी जल्दी आपसे मुलाकात।

0: करो।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कोई मिल गया,
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद। और ऑफ कोर्स जब आप मुरादाबाद रेडियो सुनते हो तो यहाँ एंटरटेनमेंट के साथ साथ होती है ढेर सारी जानकारी। और आज का ये जो प्रोग्राम है बहुत ही स्पेशल है। आप सुन रहे हैं किसान भाइयों आपका फेवरेट प्रोग्राम खेती किसानी। और आज इस प्रोग्राम में एक खास विषय पे चर्चा करने वाले हैं।
1: आज किसान ज्ञान वार्ता के इस एपिसोड में किसान साथियों आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारे बीच कृषि से जुड़े विविध मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए हमने आमंत्रित किया है चंबल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के वरिष्ठ प्रबंधक श्री अनिल कुमार संघी को। सर, आपका हार्दिक स्वागत है।
2: स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एफएम रेडियो रंग। और मैं शायद आपके यहाँ प्रथम बार आ रहा हूँ, और सभी श्रोता जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार।
1: सर, आज मूंगफली की फसल के बारे में हमारे किसान साथियों को बताएं।
2: जी जी।
1: और सबसे पहले तो आजकल किसान भाइयों के बीच में PMKSK इसकी बड़ी चर्चा है, इसके थोड़ा प्रकार।
2: PMKSK एक तरह से भारत सरकार की योजना है, और खास तौर से जो उर्वरक मंत्रालय है। और आप देखते होंगे कि जो भी खाद की दुकानें हैं वहां पर आज के समय में PMKSK लिखा हुआ है या उस तरह के कुछ बोर्ड लगे हुए हैं। तो भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि खेती अगर देखा जाए तो हमारे भारतवर्ष का एक मुख्य काम है। लगभग 60-70% लोग खेती के ऊपर आश्रित हैं। हमारा खाद्यान्न, अधिकांश खाद्यान्न है वो खेती से ही आता है। और खेती में जो उर्वरक इस्तेमाल होते हैं वो इन खाद की दुकान के द्वारा जाते हैं, तो वहां से लोग खाद ले जाते हैं और उनका उपयोग करते हैं। तो भारत सरकार ने सोचा और उन्होंने उर्वरक मंत्रालय को आदेश दिया कि जितनी भी उर्वरक की ये दुकानें हैं उनको हम इस तरह से जो चैनलाइज करें कि वहां पर जो किसानों को खेती से संबंधित सेवाएं भी मिले, क्योंकि जो उत्पाद ले रहे हैं अगर वहां से सेवाएं भी मिलेंगी तो जो उत्पाद उन्होंने लिए हैं उनका अच्छा उपयोग हो सकेगा। अगर सपोज कोई किसान यूरिया लेके जा रहा है या कोई DAP लेके जा रहा है, ले तो गया वो, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है उसके बारे में अगर उसे जानकारी नहीं है तो उसका सही सदुपयोग नहीं हो पाता है। अब भारत जो उर्वरक मंत्रालय उसकी ओर से ये सुनिश्चित किया गया है कि जितनी भी उर्वरक की दुकान है वहां से उर्वरक की या जो भी खेती में जो इस्तेमाल होने वाले आदान है उन जो उनकी बिक्री तो होगी ही, लेकिन साथ के साथ उनके उपयोग की सलाह और क्या सावधानियां रखनी है उसके बारे में भी पूरी जानकारी जो है किसानों को दी जाएगी। तो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जब भी कोई वो उत्पाद खरीदे, या तो वो पहले से लेके आ रहे हैं तो उसके बारे में जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं, कोई शंका है उनको, लगता है कि इसके बारे में और जानकारी ली जाए कि इसका सही ढंग से उपयोग कैसे किया जाए जिससे कि मुझे अधिक से अधिक लाभ हो सके, तो जो भी दुकान से आप उर्वरक ले रहे हैं उनसे जानकारी आप लें। और अगर उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा हो रही है, वो जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उनसे ये पूछिए कि कौन हमें सही ढंग से जानकारी दे सकता है। उसमें जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र है आपके यहाँ पर, बहुत से ऐसे फोन नंबर होते हैं जो आपके सलाह के एक तरह से जो फोन नंबर होते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं उनके नंबर होते हैं। जैसे कि हमारी चंबल फर्टिलाइजर है, उसका भी एक फोन नंबर है हेलो उत्तम का, तो वहां आप फोन लगाएंगे, वो हर दुकान पे वो नंबर लिखा हुआ है, तो वो जो वहां पर जो हमारे एक्सपर्ट है वो फोन उठाएंगे और आपका जो सवाल होगा उसका वो सही उत्तर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज आप लेके जा रहे हैं उसी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। खेती से संबंधित कोई और भी आप सलाह चाहते हैं, या आपको लगता है कि मैं कोई नई खेती करना चाहता हूं, या आपको लगता है कि मेरे यहाँ कोई और इस तरह की समस्या आ रही है उसका मुझे समाधान चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, तो वो जो वैज्ञानिक है वो उसमें मार्गदर्शन भी करते हैं। हमारा एक जो उत्तम का ऐप भी आता है उससे भी आपको सलाह जाती है। तो मतलब कहने का ये, चंबल फर्टिलाइजर नहीं, अन्य उर्वरक कंपनियां भी इस तरह की सेवाएं देती हैं। तो PMKSK अब सिर्फ उर्वरक विक्रय या खेती जो आपके खेती के आदान है उनके जो विक्रय केंद्र ही नहीं है, वो सलाह केंद्र है, सेवा केंद्र है, और वहां पे आपको जानकारी मिलेगी, साहित्य मिलेगा। और मैं आपसे अनुरोध यही करता हूं कि आप अवश्य वहां जाकर पूछा करें। आप पूछेंगे तो अगर उनके पास वो सुविधा नहीं है तो उसको वो एकत्रित करेंगे, कंपनियों से मांगेंगे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लेंगे और वो सेवाएं आपको उपलब्ध अवश्य कराएंगे। तो पीएम केएसके के बारे में मैंने ये कुछ जानकारियां आपको दी। किसान भाइयों, मुझे लगता है कि आप इसे लाभान्वित होंगे और आगे जब भी किसी दुकान पर जाएं तो इन सेवाओं का लाभ अवश्य लें।
1: सर, इसका मतलब यह है कि सरकार इन केंद्रों को वन स्टॉप सेंटर के रूप में।
2: बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आपने सही जो कहा कि सिंगल स्टॉप सेंटर है और जहां खेती की सभी आपको सेवाएं और उत्पाद उपलब्ध होंगे।
1: सर, इस समय वैसे तो धान की खेती हमारे तरफ जो है वो जोर शोर पे चल रही है
2: जी,
1: लेकिन जहाँ सिंचाई की सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं है या मिट्टी धान की खेती के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है वहाँ पर लोग अक्सर मूंगफली की खेती करते हैं।
2: जी जी,
1: तो सर मूंगफली की फसल के बारे में थोड़ा हमारे साथियों को बताएं।
2: हाँ, मूंगफली की खेती के बारे में मैं जो अवश्य जान

0: हमारी भूख चार रोटी की, और अगर हम साथ खा भी लेंगे तो हमें शायद बहुत तकलीफ भी हो जाएगी, और उसका जो सही मायने में उससे जो पोषक तत्व तो नहीं मिलने चाहिए, जो आने चाहिए थे, वो हम अच्छे तरीके से उसको ग्रहण नहीं कर पाते। इसी तरह उर्वरक के बारे में कि एक निश्चित मात्रा में ही फसल जो पोषक तत्वों को लेती है, अगर ज्यादा उर्वरक आप देंगे तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से वेस्ट हो जाएंगे, फसल के काम नहीं आएंगे। तो उससे क्या नुकसान होगा, एक तो क्या है आर्थिक नुकसान हुआ आपने जो अधिक इस्तेमाल किया, दूसरा उसके अंदर जो रासायनिक तत्व हैं जो फसल इस्तेमाल नहीं कर पाई वो पानी में मिलेंगे, जमीन में मिलेंगे, तो वो जो रासायनिक अवयव है वो हमारे खेती के पर्यावरण को खराब करेंगे। जो जो जो अपनी खेत की मिट्टी है उसका जो स्वास्थ्य है उसमें कहीं ना कहीं वो नुकसानदेह होंगे। तो इसी के ऊपर जो प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा अच्छा संबोधन दिया है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वो अवश्य किसानों को सुनाएं, तो वो संबोधन आप अवश्य सुनाइए।
1: मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी, और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है, और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दे, ये धरती मां हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है, दो गोली की जरूरत है चार गोली खा लें तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है, वैसा ही ये धरती मां को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती मां हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है, ये हमारी मां है, हमें उस मां को भी बचाना है।
2: सर इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जो है उर्वरकों का अधिक उपयोग
0: जी,
2: जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, वो हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए और फसल की स्वास्थ्य के लिए
0: बिल्कुल। और इस संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने यही कहने की जो कोशिश की है, और मैं आशा करता हूँ कि किसान भाई इसको समझ के और उसी हिसाब से उर्वरकों का उपयोग करेंगे।
2: सर अब मूंगफली की फसल के बारे में थोड़ा बताएं।
0: हाँ जी हाँ जी, जैसा कि आपने कहा कि मूंगफली की फसल आपके क्षेत्र में होती है लेकिन उतनी सघनता से नहीं होती, और मेरा मानना भी यही है कि जो लगभग कुछ क्षेत्रों को हम छोड़ दें तो ज्यादातर क्षेत्रों में उतनी सघनता से मूंगफली की खेती नहीं होती। हाँ, लेकिन जो खेत उपयुक्त है जहाँ सिंचाई के साधन शुरू में है, शुरू में मतलब जब आपका खरीफ का आरंभ होता है, बहुत सी जगह जायद में भी लगाते हैं, वहां पर मूंगफली की खेती की जाती है। मूंगफली अगर आप देखें तो एक ऐसी फसल है जो कि हमारे जो हमारा खान पान है उसमें शामिल है, और ये एक तरह से स्नैक्स के रूप में भी है, भोजन के रूप में भी, अलग अलग रूप में इसका इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। दूसरा इसके अंदर तेल की मात्रा होती है, मूंगफली का तेल अगर कच्ची घानी से निकाल के खाया जाए जो कि ट्रेडिशनली खाया जाता था, तो वह भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है और बहुत लाभदायक है। मूंगफली की फसल अगर हम देखें तो इसका जो बीज है वो मिट्टी के अंदर लगता है, मिट्टी के अंदर लगता है तो इसके लिए खेत की तैयारी ये खास तौर से की जानी चाहिए, और उर्वरकों की या जो जो जो इसके अंदर पोषक तत्व है उनकी सही मात्रा उस जमीन के अंदर होना बहुत आवश्यक है। और ये ऐसे समय पर होती है जबकि शायद और कोई फसल हम नहीं ले रहे होते हैं, सरफेस पे होने वाली फसल है, तो इसलिए मूंगफली की खेती जब भी अगर आपको मौका मिलता है, आपका ऐसा कोई खेत है जहां पर आप ले सकते हैं मूंगफली, और इसको आप मेड़ पे भी लगा सकते हैं, समतल जमीन पे भी लगा सकते हैं, जहां पर आप एकदम जो है आप अपने सपाट खेत पे भी लगा सकते हैं, तो इससे क्या है कि अतिरिक्त आमदनी के बहुत सारे साधन आपको खुलते हैं। जैसे कि कभी आप जैसे धान लगा रहे हैं, धान के बाद फिर मुझे लगता है कि आप गेहूं लगाएंगे, ऐसा ही है ना, और गेहूं के बाद खेत खाली है, तो उस बीच में अगर पानी की व्यवस्था है तो आप बहुत सी वैरायटियां ऐसी उपलब्ध है जो कि जायद में भी मूंगफली की होती है, तो वो धान से पहले मूंगफली

0: आपको प्राप्त हो जाएगी। तो एक अतिरिक्त आमदनी का एक साधन हो जाता है। मूंगफली आपने आपने अपने उपयोग के लिए की है, वो तो आपके अपने लिए होगी। अगर आपके पास ज्यादा मात्रा में तो आप उसका विक्रय कर सकते हैं। मैंने जैसे देखा है आपके यहाँ सड़क किनारे लोग रखे हैं और वो भूल के लोगों को देंगे। तो ये एक आम आदमी का काजू है
1: जी,
0: हम कहे तो वो आराम से लेके 100 ग्राम उसने लिया और धीरे धीरे चबाते हुए अपना, और बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। और ऐसा भी कहा जाता है साउथ में तो कि मूंगफली को अगर आप रात को भिगो दें और सुबह उसको खा के थोड़ा एक कप दूध पी लें तो वो एक संपूर्ण आहार के रूप में हो जाता है
1: जी।
0: तो बहुत अच्छी चीज है, अच्छी फसल है। और मैं अनुरोध यही करूंगा कि जब भी अगर आपको मौका मिले और अवसर है तो आप अवश्य मूंगफली की खेती करें।
1: सर, मूंगफली की हमारी फसल अच्छी हो
0: जी,
1: तो उससे अधिक उपज ली जा सके, उसकी गुणवत्ता बेहतर हो
0: जी,
1: इसके लिए पोषण प्रबंधन कैसे किया जाए फसल?
0: जी हाँ जी हाँ, पोषण प्रबंधन के लिए सबसे पहले तो ये कि जब आप लगाने जा रहे हैं उस समय आप खेत में ये देखिए कि कौन कौन से जो है उर्वरकों की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहला जो उर्वरक है वो है फास्फोरस। फास्फोरस हमें अनेक अनेक जो उर्वरक उत्पाद है, जो मतलब आपका पोषण है फास्फोरस है, वो अनेक उर्वरकों से हमें प्राप्त होता है। जैसे कि एनपीके है जो अलग अलग आते हैं, डीएपी है ठीक है, और इसके अलावा जो सुपर फास्फेट है जो कि सिंगल सुपर फास्फेट भी है, ट्रिपल सुपर फास्फेट भी है, इन सब से हमें फास्फोरस उपलब्ध होता है। तो हम जब खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय पर फास्फोरस के उर्वरकों को जरूर दें। दूसरा एक होता है कि इसमें प्रोटीन बनता है और जो तेल की मात्रा भी बनती है। तो अगर सल्फर का कोई उत्पाद आपके पास उपलब्ध है तो उसे भी आप खेत की तैयारी की समय पर दें। यूरिया की मात्रा ज्यादा न दें, यूरिया बहुत सीमित मात्रा में दें, क्योंकि जब मूंगफली की फसल करीब करीब 25 से 30 दिन की हो जाती है तो उस पौधे के अंदर स्वयं इतनी क्षमता आ जाती है कि वो खुद हवा से यूरिया लेकर उसकी पोषण की पूर्ति कर लेता है। अब वो हवा से यूरिया कैसे लेता है उसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि जब आप देखें कहीं पर भी आपने मूंगफली लगाई हो, 30 दिन की करीब करीब हो जाए तो उसको उखाड़ के देखें तो उसमें आपको छोटी छोटी गांठें मिलेंगी। तो कंफ्यूज ना हो कि वो मूंगफली की गांठें हैं, वो एक तरह से ऐसी गांठें होती हैं जिनके अंदर खास तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो हवा के अंदर जो नाइट्रोजन है जो हमें यूरिया से मिलती है या एनपीके खादों में भी होती है, वो हवा से उस नाइट्रोजन को ले लेते हैं और उससे वो पौधा अपने लिए पोषण की पूर्ति कर लेता है। तो नाइट्रोजन ज्यादा न दे, फास्फोरस दे, सल्फर दे, ये पोषक तत्व शुरू में दे दे। और उससे पहले अगर सपोज कोई जैविक जो है आपके पास व्यवस्था है जैसे कि कंपोस्ट खाद है, गोबर का खाद है, तो वो आप दे सकते हैं। उससे जो जो हवा का आवागमन है वो अच्छा होता है, जमीन में पानी रोकने की क्षमता है उसमें विकास होता है। तो ये जब सारी स्थितियां इकट्ठी हो जाती हैं तो हमारी मूंगफली फसल को जो जो शुरुआती तौर पर जो है उसको पर्यावरण और जो पोषण की आवश्यकता होती है वो मिल जाता है।
1: सर, हमारे किसान भाइयों को जरा बताएं, जिस तरह आपने बताया कि मूंगफली की फसल वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन को अवशोषित करके
0: जी
1: और मिट्टी को बेहतर बना सकती है, स्वयं के लिए भी पोषण जनरेट करती
0: है जी जी,
1: तो ये कुछ अरहर की फसल के जैसे?
0: हाँ बिल्कुल, अरहर भी है, चना भी है, उड़द भी है, मूंग भी है, जितनी भी ऐसी फसलें जिनके बीज की दो दाल हो जाती है
1: जी।
0: जैसे ढैचा है, ढैचा में भी हो जाता है, सनई में भी हो जाता है, जिसकी दो दाल हो जाए अपने आप सहायक तौर पे, उनके जो भी जो उनसे जो आपका पौधा उगता है उसके अंदर ये क्षमता पाई जाती है। तो ये आपका उत्तर रहा। दूसरा मित्र ये है कि अब बात ये आती है कि मूंगफली में ये तो शुरुआती पोषण हमने दिया, खड़ी फसल में भी कभी कभी लगता है कि भाई कुछ ऐसा कर दे जिससे कि और पोषण मिले, हमारा उत्पादन कभी फसल हल्की लगती है, तो आप जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। करीबन 350 ग्राम जिंक और 160 ग्राम आप चूना ले लें, 100 लीटर पानी में घोल लें और ये एक एकड़ के लिए पर्याप्त होता है, ये आप छिड़काव कर सकते हैं। इससे क्वालिटी अच्छी होगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा और स्वाद अच्छा होगा। दूसरा आप देखें कि एक हमारा उत्पाद आता है उत्तम आरिस गोल्ड, इसकी 500 ml मात्रा ले लें और इसको भी पानी में घोल के आप छिड़काव कर सकते हैं ऐसी अवस्था पे जब पौधे की पूरी ऊपर से शाखाएं पत्तियां अच्छी तरह से बन गई हो, क्योंकि जो भी हम स्प्रे करते हैं उसका जो अवशोषण होता है वो पत्तियों के द्वारा होता है, खेत के द्वारा नहीं होता है। तो इस तरह से आप इसका पोषण करके मूंगफली से अच्छी फसल ले सकते हैं। तो ये जो पोषण के बारे में जानकारी रही। आपका अगला सवाल
1: सर, मूंगफली की फसल में खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया?
0: हाँ जी, हाँ जी, खरपतवार का नियंत्रण अगर हम देखें तो इसमें, क्योंकि ये चौड़ी पत्ती वाली फसल है तो बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति नहीं होती है कि हम आगे चलकर इसका वो करें, लेकिन फसल जैसे हमने लगाई है और 20 से 30 दिन के अंदर हम खरपतवारों को रोकने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय तो ये है कि हम जो गुड़ाई करें, जो खुरपी की सहायता से, अगर बहुत छोटा एरिया है, जैसे कि कोई किसान ने आधा एकड़ लगाई है, एक बीघा लगाई है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रासायनिक की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है। आप खुरपी के द्वारा भी, अगर आपके पास श्रम उपलब्ध है तो कर सकते हैं। बाकी रासायनिक नियंत्रण आपने करना है तो उसके लिए एक दवा आती है, उत्तम एटलस है, 175 ml ले लें, या एक दूसरी एक दवा आती है जिसका नाम है उत्तम फ्लूजी, वो 400 ml, इनमें से कोई एक दवा ले लें, 200 लीटर पानी में घोल के आप छिड़काव करें तो ये जो खरपतवार हैं जो मूंगफली के अंदर, वो नष्ट हो जाएंगे। और ये ध्यान रखें इसके साथ कोई भी पोषक तत्व तो न मिलाए, क्योंकि एक तरफ तो आप पौधे को मार रहे हैं और उसके साथ पोषक तत्व भी दे रहे हैं, तो खरपतवारों का नियंत्रण उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। दूसरा सावधानी ये रखें कि जब स्प्रे करें तो पत्तियां सूखी हो, उनके ऊपर पानी नहीं होना चाहिए, पानी होता है तो ये जो कंसंट्रेशन है इनका ज़्यादा असर नहीं हो पाता। तीसरा ये है कि जब आपने छिड़काव किया है तो कम से कम 8-10 घंटे तक बारिश ना हो तो बेहतर है। इस तरह से खरपतवारों का नियंत्रण हम कर सकते हैं। खरपतवारों का नियंत्रण आवश्यक क्यों है? क्योंकि ये जो भोजन आपने फसल के लिए दिया है वो ये खा जाते हैं, तो फसल कमज़ोर हो जाती है, तो जो एक उत्पादन आप चाह रहे हैं वो उतना बढ़िया से नहीं मिल पाता है, इसलिए खरपतवारों का नियंत्रण बहुत जरूरी है। उसे
1: सर, खरीफ का मौसम जो है वो बारिश का मौसम होता है,
0: जी जी,
1: तो अक्सर इसमें कीटों की भरमार हो जाती है,
0: जी जी,
1: तो मूंगफली की फसल में कीटों की रोकथाम हमारे किसान भाई कैसे करें?
0: बहुत बढ़िया। देखिए, बहुत से इसमें जो होते हैं, एक तो होता है कि जो इल्ली होती है, जो उसकी ऊपर की पत्तियां होती है उनको खाता है, और दूसरा एक जो तंबाकू के ऊपर एक जो कीड़ा आता है जो ऐसे चलता है उसको बोलते हैं कैटरपिलर। ये दो तरह के होते हैं, इल्ली थोड़ी छोटी जो छोटी होती है, कैटरपिलर का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो इनके लिए एक कीटनाशक है उत्तम प्योटा, ये 60 ml आप लें, 200 से आप 300 लीटर पानी में घोल के, पानी की मात्रा इसलिए अच्छी तरह से आपको अधिक बताई जा रही है कि पौधे का कोई हिस्सा ऐसा छूटे नहीं जहाँ तक कि वो दवा न पहुँचे, और आप इसका छिड़काव करें। छिड़काव करते वक्त ये जरूर देख लें कि कीड़े की संख्या, अगर कोई आपने पूरे खेत में चक्कर लगाया और एक आदि दिख रहा है तो कोई उतना प्रभाव उसका नहीं होगा, जब ज़्यादा इनकी संख्या हो जाती है तो उनको रोकने की ज़रूरत है और समय पर आप छिड़काव करें। दूसरा जो तंबाकू की जो है लट, उसके लिए एक उत्तम योवोटा के नाम से आता है, इसकी भी करीब करीब 60 ml मात्रा है, 200 से 300 लीटर पानी में लेकर इसका आप छिड़काव करें। तो इस तरह से हम कीड़ों का नियंत्रण कर सकते हैं और जो है मतलब जो हानि होनी है फसल को वो रोक सकते हैं। कीड़ जो जो मतलब जो जो कीड़े हैं वो लगे हैं या नहीं लगे ये कैसे पता पड़ेगा? अंदाजे से तो नहीं लगेगा, तो इसलिए खेत के चक्कर जरूर लगाते रहें, हर रोज नहीं तो एक दिन छोड़ के खेत में जाएं, जरूर देखें कि हमारी फसल की क्या स्थिति है और कोई जो नुकसान तो नहीं हो रहा है। अगर कुछ इस तरह का नुकसान है तो उसके लिए आप प्रबंध करें तो फसल हमारी ठीक हो जाएगी।
1: इसी बहाने खेत भी घूम लेंगे और टहलना भी हो जाएगा,
0: टहलना हो जाता है। और मैं तो एक चीज ये कहूंगा कि आप जितना खेत के पास जाते हैं या टहलते हैं तो खेत पहचानने लगता है, आपको फसल पहचानने लगती है। बड़ा अजीब सा लगता है पर ऐसा नहीं है, पहचानती है। आप कभी देखिए कि आप जहाँ जो अपने घर में रोज रह रहे हैं वहाँ आपको बड़ा सहजता लगती है, है? आपको अच्छा सा लगता है, सहज होता है सब कुछ। आप वहां से कहीं दूसरी जगह जाएं जहां पहले कभी नहीं रुके और वहां आप रुकिए, आप बहुत देर तक असहज रहेंगे वहां। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां का जो पर्यावरण है वो आपके लिए, आपके शरीर के एडजस्ट नहीं हो पाया है। इसी तरह से जो खेत है हमारे या जहाँ फसल हो रही है वो एक तरह से जीवंत है। हमें तो लगता है चलो हैसियत से काट देते हैं तो ये क्या जीवंत है, ऐसा नहीं है, पर वो जीवंत जगह है, वहाँ पर एक ऊर्जा है, वो ऊर्जा आपको पहचानने लगती है, पहचानने लगती है तो फिर उससे आपको संकेत भी मिलते हैं। संकेत इन द सेंस है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नए विचार आपको आ सकते हैं। और तो ये सारी चीजों के लिए हमें खेत के पास जाना जरूर चाहिए। अभी जैसे मैं देखता हूँ कि धान लगा हुआ है, लगा दिया, यूरिया डाल दिया, बस उसके बाद वो देखें काटने कब जाना है, क्योंकि बहुत आसान है। लेकिन कुछ भी नहीं करना, फिर भी जाइए, देखिए, मिलिए, हालचाल पूछिए, तो आपको कोई ना कोई वहाँ से उत्तर और जवाब जरूर मिलेगा। तो जाना चाहिए
1: के साथ। हाँ, डेवलप करें।
0: हाँ बिल्कुल, तालमेल हम करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा।
1: सर, अलग अलग तरह की फसलों में अलग अलग तरह के रोग भी हो जाते हैं, तो मूंगफली की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं और उनके क्या उपाय हैं? हाँ। रोकथाम कैसे किया जाए, ये हमारे किसान।
0: देखिए, मूंगफली की फसल या हो या कोई फसल हो, रोग न लगे उसका उपाय बहुत शुरुआत में किया जाता है। उसके लिए बीज का उपचार है, तो बीज का उपचार जरूर करें। बीज के उपचार के लिए बड़ी सामान्य सी चीज होती है, कुछ दवाएं आती है, जैसे M45 है, मैनजीम, जिनको हम फफूंद नाशी बोल देते हैं। रोग फैलता है फफूंद से, उसके छोटे छोटे जीव वो जो अणु होते हैं वो जो बीज के ऊपर होते हैं, और जब वो जाते हैं खेत में और फसल उगती है तो फिर उनके एक जब सही समय आता है तो उनका विकास होकर वो रोग का रूप धारण कर लेते हैं और फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो बीज से रोग का अंश हमें हटाना है, तो फफूंद नाशक से बीज लगाने से पहले उसका उपचार हम जरूर करें। बहुत थोड़ी सी दवा लगती है, बहुत थोड़ा खर्चा आता है, लेकिन उसके परिणाम हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। तो बीज उपचार करें, लेकिन उसके बाद भी अगर रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें उसके ऊपर जो भी जो फफूंद नाशक है या जो दवा है उसका स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि रोग से जो पौधा नष्ट हो गया उसको तो ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन रोग आगे और न बढ़े उसकी रोकथाम तो की जा सकती है। तो उसके लिए ये दवाएं हैं, जैसे कि अगर मूंगफली में आप उखाड़ के देखते हैं पौधा सूख रहा है तो उसकी जो जड़ है उसमें गलन है, तो उसके लिए आप कोई दवा है, एक जो उत्तम मैंजिम है, 200 ग्राम दवा ले लें, 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर अच्छे से आप जो छिड़काव करें नीचे की तरफ करें, जहां पर उसका रूट सिस्टम है, जहां पर उसकी जड़ें हैं, वो अंदर तक जाएगा और उसको ठीक करेगा। फिर एक आता है जो इसकी हरी पत्तियां उन पर छोटे छोटे धब्बे हो जाते हैं, उसको धब्बा रोग बोलते हैं, उसके लिए भी यही दवा है मैंजिम करके। तो जब आप जो नीचे की तरफ स्प्रे कर रहे हैं तो थोड़ा ऊपर भी कर दीजिए इसी मैंजिम का, तो वो उसके लिए, चाहे वो रोग है या नहीं है तो भी वो एक लाभदायक होगा। फिर इसके अलावा एक गेरुआ रंग जैसा आ जाता है, उसके लिए एक दवाई VRM-45 350 ग्राम एक एकड़ के लिए है, और इसके लिए भी लगभग 300 लीटर पानी आप ले लें और इसका आप स्प्रे कर दें। तो ये जो दवाएं, ये फफूंद नाशक है, सामान्य फफूंद नाशक है, तो इनका आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा धब्बा रोग, रष्ट रोग, टिक्का रोग, ये बहुत ज़्यादा अगर संक्रमण इसका ज़्यादा है तो फाल जो आपके फलकॉक्स जो नाम की एक दवा आती है, ये भी 350 ग्राम दवा है और 250 लीटर पानी में घोल के आप इसका एक एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें तो बहुत अच्छा रहता है। दूसरा एक और छोटा सा उपाय है जो किया जा सकता है कि जहाँ पर भी इस तरह की फसलें लगा रहे हैं जिनमें आपको लगता है रोग आने की संभावना रहती है या ज़्यादा संक्रमण होता है, तो उसके आसपास उसके आकार से ऊंची फसल कोई लगा दे आसपास खेत में। जैसे कि आपने एक एकड़ मूंगफली लगाई है तो उसकी जो मेड़ है उसके पास चार चार पांच पांच कूड़ जो आप जो चारों तरफ ऐसे मक्का के लगा दें, बाजरा के लगा दें, ज्वार के लगा दें, तो उससे क्या होता है कि अगर एक बार दवा का स्प्रे करने के बाद जो रोग के जो वो है वो एक तरह से खत्म हो गए, लेकिन अगर वो उड़ के कहीं दूसरी जगह से आ जाएंगे तो फिर वो उसको संक्रमित कर सकते हैं, तो वो उसको रोकने का काम करेगी बाढ़। और जब आप मुख्य फसल पे स्प्रे करें तो आसपास जो वो और आपके पेड़ है उन पे भी कर सकते हैं, जो मेड़ है उन पे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कीड़े उड़ के वहाँ पे भी पहुँच जाते हैं, बहुत सारे रोग के जो अंश है वो भी वहाँ पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं, और जैसे ही उनको उचित अवसर मिलता है तो वो आके फिर फसल पे, क्योंकि उनके लिए वो भोजन है, पोषण है, और वहाँ पर वो चाहते हैं कि हमारी वृद्धि हो सके, वंश वृद्धि जिसको बोलते हैं ना, वो करना चाहते हैं, तो इसलिए उनको माध्यम चाहिए। तो उस माध्यम के बीच में कहीं ना कहीं आप अगर एक रुकावट ला देंगे तो फसल हमारी ज्यादा लंबे समय तक स्वस्थ रहेगी।
1: सर आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी दी
0: जी।
1: प्रधानमंत्री किसान के PMKS के योजना के बारे में बताया और वर्कों के उपयोग के बारे में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को सामने रखा
0: जी,
1: और मूंगफली की फसल से संबंधित प्रबंधन जो है किया सकता है उसके बारे में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद है कि हमारे ऑडियंस जो है इससे बड़े लाभान्वित होंगे। इसका जरूर आपकी सलाह और आपके द्वारा सुझाए गए उपायों का लाभ ले पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया, और सभी श्रोताओं को मेरा एक बार फिर नमस्कार।
2: आपको भी श्रोताओं नमस्कार। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM।
4: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजरीना। साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने टीबी की इलाज के बारे में विस्तार से बात की थी। हमने जाना था कि टीबी का इलाज पूरी तरह संभव है, सरकार मुफ्त दवाइयां देती है, और यहां तक कि दवा प्रतिरोधी यानी MDR टीबी का भी इलाज उपलब्ध है। लेकिन आज हम उस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सच कहे तो टीबी के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई केवल दवा शुरू करने से नहीं होती, बल्कि दवा को लगातार और सही तरीके से जारी रखने से होती है। बहुत सारे मरीज इलाज शुरू कर लेते हैं लेकिन बीच में दवा छोड़ देते हैं, फॉलो अप जांच नहीं करवाते, कई बार काम पर चले जाते हैं, या फिर दवा से होने वाली किसी परेशानी के कारण खुद ही इलाज बंद कर देते हैं, और यही छोटी सी गलती कई बार बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। तो आज हम बात करेंगे इलाज को बीच में ना रोकने की, दवाओं को संभावित रिएक्शन की, अगर दवा से परेशानी हो क्या करना चाहिए, निक्षय जैसी सरकारी व्यवस्थाएं मरीजों की मदद कैसे करती हैं, और परिवार तथा समुदाय का सहयोग कितनी जरूरी है। इन सब विषयों पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है हमारी अपनी स्वास्थ्य साथी टीकन देवी। स्वागत है टीकन भाभी आपका।
5: धन्यवाद आरजरीना, और सभी श्रोताओं को भी मेरा कोटी कोटी धन्यवाद। आरजरीना जी, पिछले कार्यक्रम के बाद मुझे कई लोगों के फोन आए, अधिकांश लोगों ने तो एक ही बात कही, हमें पता है कि टीबी का इलाज होता है लेकिन इतने महीनों तक दवा लगातार लेना आसान नहीं होता। और सच कहूँ तो यही वह जगह है जहाँ सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। इलाज शुरू करना महत्वपूर्ण है लेकिन इलाज पूरा करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण।
4: बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे लगता है कि आज की चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप कोई ऐसी कहानी सुनाए जो इस विषय को समझने में मदद करे तो श्रोताओं को बताओ और अच्छी तरह समझाइए।
5: बिल्कुल, मैं आपको एक ऐसी घटना बताना चाहूंगी जो कुछ वर्ष पहले हुई थी। पास के एक छोटे से कस्बे में लगभग 12 साल का एक छोटा सा बच्चा था, रवि। रवि को लगातार बुखार रहता था, वजन कम हो रहा था और खांसी भी लंबे समय से बनी हुई थी। जांच हुई और पता चला कि उसे टीबी है। परिवार घबरा गया लेकिन डॉक्टर ने समझाया कि चिंता की बात नहीं है, इलाज शुरू हो गया है। शुरुआती कुछ हफ्तों में रवि की हालात सुधरने लगी, बुखार कम हुआ, भूख लौटने लगी और घर वालों को लगा कि अब सब ठीक है। लेकिन लगभग 1.5 महीने बाद रवि को एक नई समस्या शुरू हुई। उसके शरीर पर लाल चकत्ते निकलने लगे, उसे मतली महसूस होने लगी, कभी कभी उल्टी भी होने लगी। तब पिता बहुत डर गए। गांव में कुछ लोगों ने सलाह दी, दवा बंद कर दो, दवा ही नुकसान कर रही है। लेकिन सहयोग से उसी समय उसके पिता ने हमारे

0: इस कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई का एक पुराना एपिसोड सुना था, जिसमें कहा गया था कि दवा से कोई भी असामान्य परेशानी हो तो तुरंत स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर को बताना चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से दवा बंद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने वही किया। अगले ही दिन बच्चे को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जाँच की, दवाओं की समीक्षा की, आवश्यकता बदलाव किए और कुछ अतिरिक्त उपचार दिए। कुछ ही दिनों में स्थिति नियंत्रण हो गई। आज रवि पूरी तरह स्वस्थ है। सोचिए अगर उसके माता पिता डरकर दवा बंद कर देते तो बीमारी दोबारा गंभीर हो सकती थी। यानी समस्या दवा से नहीं बल्कि समय पर सलाह ना लेने से पैदा होती है।
1: वाह, यह कहानी सचमुच बहुत सीख देती है। यानी दवा के दौरान कोई परेशानी हो जाए तो घबराना नहीं है बल्कि तुरंत स्वास्थ्य प्रणाली से संपर्क करें। लेकिन भाभी सबसे पहले यही बताइए कि इलाज की निरंतरता यानी कंटिन्यूटली ऑफ ट्रीटमेंट इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है?
0: देखिए अर्जेरीना, टीवी का जीवाणु बहुत चालाक होता है। जब मरीज दवा शुरू करता है तो कुछ ही हफ्ते में खांसी कम होने लगती है, बुखार कम हो जाता है और शरीर बेहतर महसूस करने लगता है। यही पर कई लोग गलती कर बैठते हैं। वैसे सोचते हैं कि अब हम ठीक हो गए हैं, लेकिन वास्तव में उस समय शरीर के अंदर मौजूद सभी जीवाणु समाप्त नहीं हुए होते हैं। लक्षणों का कम होना और बीमारी का पूरी तरह खत्म होना दो अलग अलग बातें हैं। इसीलिए राष्ट्रीय टीवी उन्मूलन कार्यक्रम बार बार कहता है कि डॉक्टर जितने समय तक दवा लेने को कहें उतने समय तक नियमित रूप से दवा लेना जरूरी है। याद रखिए, आराम महसूस होना इलाज की सफलता का संकेत हो सकता है लेकिन इलाज पूरा होने का प्रमाण नहीं।
1: बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन व्यवहार में लोग इलाज बीच में छोड़ देते हैं क्यों?
0: कारण कई होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अब वे ठीक हो चुके हैं। कुछ लोग रोज दवा लेने से उब जाते हैं। कुछ लोगों को काम पर जाना होता है और वे फॉलोअप नहीं कर पाते। कुछ लोग दूर शहर या राज्य में काम करने चले जाते हैं। कुछ लोग दवा के हल्के दुष्प्रभावों से डर जाते हैं और कुछ लोग समाज की डर या शर्म की वजह से इलाज छिपाने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार ने इन चुनौतियों को समझते हुए कई व्यवस्थाएं बनाई हैं ताकि मरीज का इलाज बीच में ना टूटे।
1: यही तो मैं पूछना चाहती थी, अगर कोई मरीज इलाज के दौरान गांव छोड़कर दूसरे शहर चला जाए तब क्या होगा? क्या उसे फिर से पूरी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये बात खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां लाखों लोग रोजगार के लिए दूसरे जिलों या राज्यों में जाते हैं। सरकार ने ट्रांसफर अकाउंट की व्यवस्था बनाई है। अगर मरीज अपने स्वास्थ्य कर्मी या टीवी टीम को जानकारी देते हैं तो उसका रिकॉर्ड निश्चय प्रणाली में अपडेट किया जा सकता है और नए स्थान पर भी इलाज जारी रखा जा सकता है। यानी केवल स्थान बदलने के कारण दवा बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां जाएं वहां की सरकारी स्वास्थ्य सुविधा से जुड़िए और इलाज जाके।
1: आपने निक्षय नाम का नाम लिया। बहुत सारे श्रोताओं ने इसके बारे में सुना होगा लेकिन विस्तार से शायद नहीं जानते होंगे।
0: निक्षय वास्तव में टीवी मरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। यह एक डिजिटल प्रणाली है जिसके माध्यम से मरीजों का रिकॉर्ड, इलाज की प्रगति, फॉलोअप, सहायता और निगरानी की जाती है। इसके जरिए स्वास्थ्य कर्मी ये देख सकते हैं कि मरीज इलाज पर बना हुआ है या नहीं। अगर किसी मरीज की फॉलोअप जांच बाकी है तो उसे याद दिलाया जा सकता है। अगर मरीज कहीं और चला गया है तो उसका इलाज एक नए स्थान से जोड़ा जा सकता है और इसी व्यवस्था के माध्यम से कई प्रकार की सहायता भी सुनिश्चित की जा सकती है। यानी निक्षय केवल एक कंप्यूटर सिस्टम नहीं बल्कि इलाज की निरंतरता बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है।
1: अब बात करते हैं दवाओं से होने वाली प्रक्रियाओं की, यानी साइड इफेक्ट या रिएक्शन, क्योंकि यही वह विषय है जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं।
0: और डर अक्सर जानकारी की कमी से पैदा होता है। अर्जेरीना, जैसे ही किसी को पता चलता है कि टीवी की दवाई कई महीनों तक चलेगी तो उसके मन में एक चिंता भी रहती है, कहीं दवा से कोई परेशानी हुई तो। इसलिए सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि अधिकांश टीवी मरीज बिना किसी गंभीर समस्या के अपना पूरा इलाज सफलतापूर्वक करवा लेते हैं। लेकिन हाँ, कुछ मरीजों को इलाज के दौरान कुछ दुष्प्रभाव या प्रक्रियाएं महसूस हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, किसी को शुरुआत में मितली या उल्टी की शिकायत हो सकती है, किसी का पेट भारी लग सकता है या जलन महसूस हो सकती है, कुछ लोगों की भूख थोड़ी कम हो जाती है, कई बार त्वचा पर खुजली या लाल चकते दिखाई दे सकते हैं, कुछ मरीज कमजोर, थकान या चक्कर आने की बात भी बताते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे संकेत भी हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे आँखों या त्वचा का पीला पड़ना, पेशाब का रंग बहुत गहरा हो जाना, धुंधला धुंधला दिखाई देना, हाथ पैरों में झनझनाहट या सुन्नपन महसूस होना, सुनने की क्षमता में बदलाव आना या व्यवहार और मानसिक स्थिति में कई असामान्य परिवर्तन महसूस होना। ऐसे लक्षणों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगी, दुष्प्रभाव होने का मतलब ये नहीं कि इलाज असफल हो रहा है, और न ही इसका मतलब ये है कि मरीज अपने मन से दवा बंद कर दे। वास्तव में सबसे बड़ी गलती यही होती है, कई बार लोग किसी पड़ोसी, रिश्तेदार या अधूरी जानकारी आधार पर दवा छोड़ देते हैं, जबकि सही कदम ये है कि तुरंत अपने स्वास्थ्य कर्मी, आशा बहन, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर को इसकी जानकारी दें। याद रखें, अधिकांश दुष्प्रभावों का प्रबंध किया जा सकता है। डॉक्टर जरूरत पड़ने पर जांच करेंगे, सलाह देंगे और यदि आवश्यक हुआ तो इलाज में उचित बदलाव भी करेंगे। लेकिन अगर मरीज बिना बताए दवाएं बंद कर देता है तो बीमारी फिर से सक्रिय हो सकती है और इलाज और भी कठिन हो सकता है। इसीलिए हमारा संदेश बहुत सरल है, दुष्प्रभाव छुपाइए मत, घबराइए मत और अपने मन से दवा बिल्कुल भी मत रोकिए। समय पर जानकारी देना ही सुरक्षित और सफलता इलाज की कुंजी है।
1: यानी दवा से परेशानी हो तो पहला कदम दवा छोड़ना नहीं बल्कि डॉक्टर से बात करना।
0: बिल्कुल, क्योंकि हर शिकायत गंभीर नहीं होती, कुछ दुष्प्रभाव अस्थायी होते हैं, कुछ का इलाज किया जा सकता है, कुछ मामलों में डॉक्टर दवा की समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन ये निर्णय केवल परीक्षित स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर को लेना चाहिए, मरीज को नहीं। याद रखिए, जल्दी जानकारी देना इलाज बचाता है, जबकि चुप रहना इलाज को खतरे में डाल सकता है।
1: वाह, फॉलो अप जांचों की भी बात होती है। कई लोग सोचते हैं कि दवा मिल गई तो अब अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं।
0: यही एक और बड़ी गलतफहमी है, इलाज केवल दवा खाने का नाम नहीं है, इलाज में नियमित निगरानी भी शामिल है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी जब फॉलो अप जांच के लिए बुलवाएं तो अवश्य जाएं। अगर बलगम का नमूना मांगा जाए, अगर कोई जांच लिखी जाए तो करवाएं। इन जांचों से पता चलता है कि दवा सही काम कर रही है या नहीं, कहीं अतिरिक्त सहायता की जरूरत तो नहीं है, और यदि कोई समस्या है तो उसे समय रहते पकड़ा जा सकता है।
1: भाभी, आपने पिछली बार MDR TB का भी जिक्र किया था, इसके संदर्भ में इलाज की निरंतरता कितनी महत्वपूर्ण है?
0: रीना, MDR TV यानी दवा प्रतिरोधी टीबी में तो यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऐसे मामलों में इलाज अपेक्षाकृत जटिल हो सकता है, दवाएं अधिक हो सकती है, निगरानी ज्यादा करनी पड़ सकती है और फॉलो अप भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन मैं श्रोताओं को ये बताना चाहूँगी कि MDR TB का मतलब इलाज असंभव होना नहीं है। आज बेहतर जांच, बेहतर निगरानी और नए उपचार पद्धतियों के कारण मरीजों के ठीक होने की संभावना पहले से कहीं अधिक है। बस शर्त एक ही है, इलाज बीच में नहीं रुकना चाहिए।
1: और परिवार की भूमिका, कई बार मरीज अकेला पड़ जाता है।
0: परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है आजरीना। सरकार भी मानती है कि टीवी का इलाज केवल मरीज नहीं करता, पूरा परिवार करता है। घर का कोई सदस्य दवा याद दिला सकता है, फॉलो अप में साथ जा सकता है, लक्षणों में नजर रख सकता है, मानसिक सहारा दे सकता है और सबसे महत्वपूर्ण, मरीज को ये महसूस करा सकता है कि वह अकेला नहीं है। कई बार दवा से ज्यादा असर एक सहारा देने वाले शब्द का होता है।
1: और पोषण, क्योंकि पिछली बार भी आपने कहा था कि रिकवरी में भोजन की बड़ी भूमिका होती है।
0: बिल्कुल, दवाएं बीमारी का इलाज करती हैं, लेकिन शरीर को ताकत भोजन देता है। इसलिए सरकार निक्षेप पोषण योजना जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से पोषण सहायता भी उपलब्ध कराती है। मरीज को नियमित भोजन, पर्याप्त आराम और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। दालें, दूध, अंडे, चना, सोयाबीन, हरी सब्जियां और स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ शरीर की रिकवरी में मदद करते हैं।
1: तो अगर आज की चर्चा को कुछ मुख्य संदेशों में समेटा हो तो आप क्या कहेंगे?
0: श्रोताओं से 8 बातें याद रखने का आग्रह करूंगी। पहले, टीवी की दवा कभी अपने मन से बंद ना करें। दूसरी, बेहतर महसूस होना इलाज पूरे होने का संकेत नहीं। तीसरा, दवा से कोई भी असामान्य परेशानी हो तो तुरंत स्वास्थ्य कर्मी को बताएं। चौथा, फॉलो अप जांचें इलाज का जरूरी हिस्सा है। पांचवी बात, अगर आप कहीं और जा रहे हैं तो स्वास्थ्य टीम को बताकर इलाज जारी रखें। छठी बात, निक्षे और सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं इलाज की निरंतरता में मदद करती है। सातवीं बात, परिवार और उपचार सहयोगी मरीज की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आठवीं बात, MDR टीवी भी इलाज योग्य है, बशर्ते मरीज नियमित रूप से कार्यक्रमों से जुड़ा रहे।
1: बहुत सुंदर। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी, अगर रवि के माता पिता उस दिन डर का दवा बंद कर देते तो शायद आज कहानी कुछ और होती, लेकिन उन्होंने सही समय पर सही कदम उठाया। यही समझ, यही जागरूकता और यही सतर्कता हर परिवार तक पहुँचनी चाहिए। साथियों, याद रखिए, टीवी का इलाज केवल दवाओं से नहीं बल्कि धैर्य, नियमितता, परिवार के सहयोग और स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े रहने से सफल होता है। आइए अंत में हम सब मिलकर लेते हैं सेहत की शपथ।
0: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपके साथ आपके दोस्त आरजे खुशी। आज तो हमारे गांव में कुछ अलग ही माहौल है। सुबह सुबह इतनी भीड़ और ये लाउड स्पीकर आवाज, सभी लोग ध्यान दीजिए। आज प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर है। अरे भाई, ये HPV क्या होता है और इतनी भीड़ क्यों लगी है?
1: अरे सेतिया सिंह जी, जरा इधर आइए, आप तो हमेशा सही जानकारी देते हैं, जरा बताइएगा ये क्या चल रहा है?
2: आरजे साहिबा, आज बड़ा अच्छा दिन है गांव के लिए और भी हमारी बेटियों के लिए भी। आज जो कैंप लगा है ना, ये कोई साधारण टीकाकरण कैंप नहीं है, ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी बीमारी से बचाने वाला टीका है। पर HPV के बारे में तो विस्तार से जानने के लिए आपको पहले कहानी बताता। यहाँ एक गांव था, गांव का नाम था बड़की टोला। सुबह का समय था, सूरज अभी पूरी तरीके से निकला भी नहीं था, लेकिन सावित्री देवी का दिन कब का शुरू हो चुका था। पहले चूल्हा जलाना, फिर पानी भरना, बच्चों को तैयार करना और उसके बाद खेत का काम भी अलग। सावित्री देवी एक 12 साल की बेटी थी, जो हम कह सकते हैं गुड़िया, गांव में गुड़िया कहा जाता। पढ़ने में तेज लेकिन थोड़ी शरारती। सावित्री चाहती थी कि उसकी बेटी बहुत कुछ बन जाए बड़े होकर, जिससे उसकी जिंदगी और बेहतर हो जाए। एक दिन गांव में आशा दीदी आईं और उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर लगने वाला है। उन्होंने समझाया कि टीका लड़कियों को आगे चलकर एक खतरनाक बीमारी सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। सावित्री देवी पहले तो थोड़ी हिचकिचाई, फिर उन्होंने अपने पति रामपाल से बात। रामपाल पहले तो बोले, अरे हमारी बेटियां तो बिल्कुल ठीक है ना, तो क्या जरूरत पड़ी है इस टीके की? लेकिन आशा दीदी ने धैर्य से समझाया, भैया यही सही समय है, यह टीका बीमारी होने के बाद नहीं पहले काम करता है, अगर अभी लगवा दिया तो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचाव हो सकता है। रामपाल कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने आसपास के लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी के पास पूरी जानकारी नहीं थी, बस अफवाहें थी जो सुनी सुनाई। तभी एक दिन उन्होंने रेडियो पर एक कार्यक्रम सुना, जिसमें मेरे जैसे ही एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समझा रहे थे कि टीका सुरक्षित है और क्यों जरूरी है। उस दिन के बाद रामलाल का नजरिया ही बदल गया। उन्होंने कहा, अगर एक छोटा सा टीका मेरी बेटी की जिंदगी को बीमारियों से बचा सकता है तो हम पीछे क्यों रहे। अगले ही दिन सावित्री और रामपाल अपनी बेटी गुड़िया को लेकर कैंप पहुंचे। वहां कई और लड़कियां भी आई हुई थी। शुरुआत में गुड़िया थोड़ी सी डरी हुई थी, लेकिन जब उसने देखा कि बाकी लड़कियां तो बिल्कुल हिम्मत से टीका लगवा रही हैं, उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा मैं भी लगवाऊंगी। टीका लगने के बाद बस थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन 2 दिन में सब ठीक हो गया। धीरे धीरे गांव में और भी लोग इससे प्रेरित हुए। सावित्री देवी भी अब खुद दूसरी महिलाओं को समझाने लगी। रामपाल भी पंचायत में इस विषय पर बात करने लगे। कुछ महीने बाद एक बदलाव साफ दिखने लगा, ज्यादा लड़कियां टीका लगवा रही थी, लोग अफवाहों की जगह सही जानकारी पर भरोसा करने लगे, और सबसे बड़ी बात, अब बेटियों की सेहत को लेकर गंभीरता बढ़ गई। सावित्री देवी अक्सर कहती थी, पहले हम सोचते थे कि ये सब शहरों की बातें हैं, लेकिन अब समझ आया ये हमारी बेटियों की भविष्य की बात है। ये कहानी सिर्फ सावित्री और गुड़िया की ही नहीं है, ये हर परिवार की कहानी हो सकती है जो सही समय पर सही फैसला ले।
0: अच्छा, लेकिन ये HPV नाम तो बड़ा भारी लगता है, जरा खुलकर विस्तार में बताइए।
2: चलिए आपको अच्छे से ही बता देता हूँ। HPV का मतलब है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। नाम बड़ा है पर बात आसान है। ये एक ऐसा वायरस है जो अगर शरीर में आ जाए और समय रहते हुए रोका ना जाए तो महिलाओं के अंदर आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय में मुंह का कैंसर पैदा कर सकता है।
0: मतलब ये सीधे सीधे जानलेवा बीमारी तक ले जा सकता है?
2: हाँ जी बिल्कुल, और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है आर्य साहिबा?
0: जी सेहतिया जी, अब तो आप थोड़ा डरा ही रहे हैं।
2: डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूँ। इस बीमारी की सबसे बड़ी चालाकी ये है कि शुरू शुरू में इसका कोई लक्षण नहीं होता, ना कोई दर्द, ना बुखार, ना कोई ऐसी परेशानी जिससे लगे कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है।
0: मतलब इंसान को पता ही नहीं चलता?
2: बिल्कुल, और यही वजह है कि जब तक लोगों को इसका पता चलता है तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है, बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है।
0: अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत खतरनाक बात है। तो फिर इससे बचने का कोई तरीका तो होगा ना?
2: यही अच्छी खबर है, जहाँ एक तरफ इसका इलाज मुश्किल हो सकता है वहीं दूसरी तरफ इसका बचाव बहुत आसान है।
0: सच में? कैसे?
2: HPV वैक्सीन से, एक छोटा सा टीका जो आगे चलकर आपको बड़ी बीमारी से बचा सकता है।
0: जरा इसे और आसान करके समझाइए ना, ताकि हमारे गांव के लोग भी अच्छे से समझ सकें।
2: चलो आप कहते तो समझा देता हूँ। ठीक, एक उदाहरण से समझिए, जब हम खेत में फसल लगाते हैं तो क्या करते हैं?
0: चारों तरफ बाड़ लगाते हैं ताकि जानवर अंदर ना घुसे।
2: बिल्कुल सही कहा, ताकि फसल सुरक्षित रहे। ठीक वैसे ही ये वैक्सीन हमारे शरीर के लिए सुरक्षा की बाड़ की तरह काम करता है। ये वायरस को अंदर आकर नुकसान करने से रोकता है।
1: ओह, मतलब ये बीमारी को शुरू होने से पहले ही रोक देता है।
2: हाँ बिल्कुल सही समझा आपने, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई इलाज नहीं, यही बीमारी को जाने के बाद काम आए। ये तो पहले से ही सुरक्षा देता है ताकि बीमारी हो ही ना पाए।
1: तो फिर ये टीका किसे लगवाना चाहिए, कोई खास उम्र होती है?
2: हाँ, इसकी सबसे ज्यादा फायदा तो तब होता है जब इसे सही उम्र में लगवाया जाए। आमतौर पर 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए ये टीका लगवाना सबसे अच्छा माना जाता है।
1: और अगर कोई इससे बड़ी उम्र का हो?
2: तो भी कोई चिंता की बात तो नहीं है, ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेकर बाद में भी ये टीका लगवाया जा सकता है, लेकिन जितनी जल्दी लग जाए उतना बेहतर है।
1: सेहतिया जी, एक बात मेरे मन में आ रही है, ये तो लड़कियों का टीका है, तो इसमें पुरुषों की क्या भूमिका होती है?
2: यही तो सबसे अहम बात है, महिलाओं की सेहत सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं, इसमें पूरे परिवार की, खासकर पुरुषों की उतनी ही जिम्मेदारी होती है।
1: जरा विस्तार से बताइएगा।
2: जरूर, देखिए, एक पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपनी बेटी को समय पर सही जानकारी दे और उसका टीकाकरण करवाए। एक भाई का कर्तव्य है कि वो अपनी बहन को समझाए, उसे डर या अफवाहों से दूर रखे। और एक पति की फर्ज है कि वह अपनी पत्नी की सेहत का ख्याल रखे, उसे हर जरूरी सुविधाओं और सहयोग दे।
1: सही कहा आपने।
2: अगर घर का पुरुष ही पीछे हट जाएगा या ध्यान नहीं देगा, आधी लड़ाई वह हारेगी। इसलिए पुरुषों की भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: मतलब ये सिर्फ महिला स्वास्थ्य का मामला नहीं है?
2: बिल्कुल सही आरजे साहिबा, ये पूरे परिवार का मामला है। जब एक महिला स्वस्थ रहती है, पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, और जब परिवार स्वस्थ होता है तभी गांव मजबूत बनता है।
1: लेकिन सेहतिया जी, एक बात है, गांव में तो तरह तरह की बातें चलती रहती हैं। कोई कहता है कि ये टीका लगवाने से लड़कियां कमजोर हो जाती हैं, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आगे चलकर माँ बनने में दिक्कत होती है।
2: देखिए आरजे साहिबा, यही सबसे बड़ी समस्या है, अधूरी और गलत जानकारी। इस सब जो बातें आप सुन रही हैं ना, ये सच नहीं है, बल्कि क्या है, अफवाहें।
1: मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है?
2: बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको एक एक करके चलिए साफ साफ करके बता देता हूँ। पहली बात, लोग कहते हैं कि टीका लगवाने से कमजोरी आ जाती है, जबकि सच्चाई तो यह है कि टीका लगवाने के बाद बस हल्का सा बुखार आता है या हाथ में थोड़ा सा दर्द हो सकता है, क्योंकि मात्र 1 से 2 दिन में आप अपने आप ठीक हो जाएंगे, इसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
1: अच्छा, और जो लोग कहते हैं कि इससे आगे चलकर बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती है?
2: यह भी पूरी तरीके से गलत। इस वैक्सीन में मां बनने की क्षमता से कोई लेना देना ही नहीं है, ये सिर्फ एक वायरस से बचाने के लिए होता है और कुछ भी नहीं।
1: और एक बात जो अक्सर लोग कहते हैं, अगर लड़की बिल्कुल ठीक है तो टीका लगवाने की क्या जरूरत है?
2: यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखिए, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं बल्कि बीमारी होने से पहले लगवाना है, और तभी ये काम करता है। अगर लड़की अभी स्वस्थ है तो वही सबसे सही समय है टीका लगवाने का। जैसे हम बारिश आने से पहले छाता रखते हैं ना, वैसे ये पहले सुरक्षा देता है। जरा सोचिए आरजे साहिबा, अगर एक छोटा सा टीका आपकी बेटी को एक बड़ी और जानलेवा बीमारी से बचा सकता है, तो क्या हमें इंतजार करना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं, जब बचाव इतना आसान है तो देर क्यों करें? सेहतिया जी, एक बात बताइए, क्या हमारे गांव में भी लोग इसे लगवा रहे हैं?
2: हाँ, धीरे धीरे लोग समझने तो लगे हैं और आगे भी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लोग डर और अफवाहों के कारण पीछे हटे जाते हैं। यही वजह है कि आज जैसे कैंप बहुत जरूरी है, ताकि सही जानकारी हर घर तक पहुंचे। जहां जानकारी नहीं पहुंचती, वहां ऐसी कुछ रानी जैसी केस हो जाते हैं। उसी इलाके के पास एक गांव था, छोटा पुरवा, यही रहती थी कमला देवी और उनकी बेटी रानी। रानी भी गुड़िया की उम्र की ही थी, हसमुख, चंचल और पढ़ाई में बहुत अच्छी। जब गांव में HPV टीकाकरण की बात आई तो आशा दीदी यहां भी आई थी और लोगों को समझाने लगी। उन्होंने कमला देवी से भी कहा, बहन, अपनी बेटी को टीका जरूर लगवा देना। लेकिन कमला देवी के घर का माहौल थोड़ा अलग था, उनके पति महेंद्र इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया, ये सब नई नई बातें हैं, हमारे जमाने में कौन सा टीका लगता था, और हम तो ठीक हैं। कमला देवी भी डर गई। गांव में कुछ लोगों ने और बातें फैलाई, इससे लड़की कमजोर हो जाएगी, आगे चलकर बच्चा नहीं होगा। इन अफवाहों के बीच सच की आवाज वहीं दब गई। रानी ने एक दिन अपनी माँ से पूछा, अम्मा, मेरी सहेली गुड़िया टीका लगवाने गई थी, मैं क्यों नहीं जा सकती? कमला देवी के पास कोई जवाब नहीं था, उन्होंने बस इतना कहा, बेटी, तुम्हारे बाबूजी मना कर रहे हैं। समय बीतता गया, बात वहीं रह गई। सालों बाद जब रानी बड़ी हुई, शादी हुई, और एक दिन उसे बार बार कमजोरी, असहजता महसूस होने लगी। शुरू में सबसे इसे सामान्य समझा, लेकिन जब हालत बिगड़ने लगी तो शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया, उसने पूरे परिवार को हिला दिया, यह सर्वाइकल कैंसर का मामला है और अब यह काफी आगे बढ़ चुका है। कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने वही दिन याद आया जब आशा दीदी ने समझाया था, जब रानी ने खुद पूछा था। महेंद्र भी चुप हो गए, अपनी आंखों में पछतावा सिर्फ साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीमे से पूछा, वो अगर उस दिन हमने टीका लगवा दिया होता तो शायद आज ही दिन देखना ना पड़ता। इलाज शुरू हुआ लेकिन अब रास्ता मुश्किल था। बार बार अस्पताल के चक्कर काटना, बढ़ता खर्च, परिवार की चिंता, दर्द, रानी की बीमारियों से सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं पूरे परिवार को झिंझोड़ दिया था। आज कमला देवी हर घर जाकर एक ही बात कहती है, अफवाहों पर मत जाओ, हमने अपनी गलती से बहुत बड़ा नुकसान देखा है, तुम ऐसा कभी मत करना। उनकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन आवाज में सिर्फ एक विनती, अपनी बेटियों को बचा लो समय रहते।
1: तो जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए?
2: इन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए, आज ही अपनी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं, आशा दीदी से बात करें और अपनी बेटियों का नाम टीकाकरण के लिए दर्ज करवाएं। और सबसे जरूरी बात, जो सही जानकारी आपने आज सुनी है उसे ही दूसरों तक पहुंचाएं, अफवाहों को नहीं सच्चाई फैलाएं।
1: तो दोस्तों आज हमने जाना कि HPV क्या है, ये कैसे एक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और एक छोटा सा टीका कैसे हमें बड़ी परेशानी से बचा सकता है।
2: और याद रखिए, महिलाओं की सेहत सिर्फ उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। और सही समय पर लिया गया एक छोटा सा फैसला जिंदगी भर का बड़ा बदलाव ला सकता है।
1: छोटी सी तैयारी बड़ी बीमारी से बचाव,
2: बेटी का टीका परिवार का भविष्य सुरक्षित बनाए।
1: तो चलिए जानने से पहले लेते हैं सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचाया जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए विषय और कुछ अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। आज का हमारा शो ये बेहद खास होने वाला है, यानी कि लीगल टॉक्स, जहां हम बात करने वाले हैं मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में, यानी सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी कानून। चाहे आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो या पैदल सड़क पार करते हो, ट्रैफिक नियमों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्या बिना हेलमेट बाइक चलाने पर सिर्फ चालान होता है या और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है? अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ओवर स्पीड, शराब पीकर गाड़ी चलाना और मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर कानून क्या कहता है? इन सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी। तो सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे रेडियो में। आप बताइए कि रेडियो में आकर आपको कैसा लगता है?
1: देखिए, मैं हर वीकेंड वेट करता हूँ कि कब आपका शो आए और मेरे को आप इनवाइट करो यहाँ पे, और मैं जो हूँ अपने प्यारे जो लिसनर्स है कम्युनिटी रेडियो के, हमारे लिसनर्स है, उनसे मैं बात कर पाऊँ, उनको अवेयर कर पाऊँ, उनकी परेशानियों को दूर कर पाऊँ।
0: श्रोता तो हमारा इंतजार ही करते रहते हैं,
1: वेट करते हैं उनका कि हमारी उनसे कब मुलाकात होगी। और जो है, मैं भी बड़ा बेताब रहता हूँ कि मैं अपने लिसनर्स के जो उनके डाउट्स हैं या उनकी कोई लीगल अवेयरनेस है या उनको कोई भी लीगल हेल्प चाहिए तो उसको मैं गाइड कर पाऊँ उनको।
0: तो श्रोताओं, हम बातें करते रहेंगे, बस आपने कहीं नहीं जाना है, रेडियो की सुई बिल्कुल नहीं घुमानी है, आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहने, क्योंकि शो होने वाला है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खास, जिसमें आपको तरह तरह की जानकारियां मिलती रहती है। और मुझे लगता है कि हर चीज के बारे में जानकारियां हमें लेना हमारे लिए ही अच्छा है। कभी कभी किसी चीज के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में हमें नहीं पता होता है, जिसके खिलाफ हम नहीं बोल पाते क्योंकि हम डरते हैं, और जब आपको पूरी जानकारी होगी तो आप आसानी से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो सर, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट क्या है?
1: देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट भारत का एक वह कानून है जो सड़क पर चलने वाले सभी मोटर वाहनों, ड्राइवर, वाहन मालिक, लाइसेंस पंजीकरण, बीमा, सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियम और दुर्घटना से जुड़े जो भी अधिकार हैं, जो भी दायित्व को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना होता है और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित कराना होता है।
0: क्या हर वाहन चालक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है?
1: हाँ, बिना वह ड्राइविंग लाइसेंस के सार्वजनिक सड़क पर वाहन चलाना कानून का उल्लंघन है, और वाहन आपको डीएल तभी मिलता है जब आपको वाहन चलाना आता हो प्रॉपर, ठीक है, और बिना डीएल के अगर आप वाहन चलाते हैं तो गैर कानूनी है। तो लिहाजा जो है, अगर इसके लिए जो प्रावधान है, जुर्माना भी हो सकता है और कार्रवाई के तौर पे आपको सजा भी हो सकती है। तो आप कभी भी अगर कोई वाहन चलाते हैं तो वाहन के लिए आपको डीएल बनाना अनिवार्य है। आप पहले प्रॉपर परिवहन आरटीओ विभाग जाएं, वहाँ पे प्रॉपर आप अपने डीएल के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करें, डीएल बनवाएं, उसके बाद ही आप सड़क पे वाहन लेके आए। अधिकतर मैंने देखा आज की डेट में बच्चे स्कूल जाते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको स्कूटी दे देते हैं ऐसी।
0: हाँ, वही,
1: वो गलत है, वो इलीगल है। अगर आप बच्चा स्कूटी चलाते हुए किसी को हिट कर देता है या तो उसको भी चोट लग सकती है और सामने वालों को भी चोट लग सकती है, तो ये अपराध है।
0: लाइसेंस बनवाने के लिए सर एज लिमिट क्या होती है?
1: 18 प्लस होनी चाहिए।
0: अच्छा, 18 प्लस होना चाहिए,
1: बालिग होना चाहिए एटलीस्ट।
0: ओके, लेकिन तो आजकल अगर जेंजी की बात करूं तो वो 16-17 की एज में सड़कों पर ऐसे
1: इलीगल है, वो पेरेंट्स दे देते हैं, गलत है वो, तो आप ऐसे जो है बिना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के आप व्हीकल नहीं चला सकते।
0: क्या वाहन चलाते समय कौन कौन से दस्तावेज साथ होना चाहिए?
1: देखिए, सबसे पहले तो आपका डीएल होना चाहिए जो आपको इश्यू किया गया है, वो गवर्नमेंट आईडी होती है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप रोड पे अपना व्हीकल लेके नहीं जा सकते। फिर जो आप वाहन चला रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है, उसको हम आरसी बोलते हैं। प्रॉपर जिस गाड़ी को आप चला रहे हैं उसका इंश्योरेंस होना चाहिए,
0: चाहे वो स्कूटी हो, बाइक हो, गाड़ी हो।
1: हाँ, उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, वैलिड इंश्योरेंस होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको पॉल्यूशन का पेपर होना चाहिए,
0: पॉल्यूशन,
1: हाँ, पॉल्यूशन, पीयूसी, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल बोलते हैं उसको, पॉल्यूशन, उसका डॉक्यूमेंट पॉल्यूशन चेक होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आप व्हीकल चला रहे हो, ठीक है। और आवश्यकता होने पे अगर कोई परमिट की, कोई हैवी आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको किसी स्टेट का परमिट है तो परमिट भी आपके पास में होना चाहिए। इन सबकी डिजिटल कॉपी मान्य है, ठीक है, आपको जरूरी नहीं नहीं है कि आपको ओरिजिनली अपने पास में रखना है। डिजिटल कॉपी भी मान्य हो सकती है यदि कानून के अनुसार स्वीकार है वो चीजें, तो आप उसकी डिजिटल कॉपी भी आप रख सकते हैं।
0: तो सर जैसे आपने बोला कि कॉपी होनी चाहिए तुम्हारे पास, वो चाहे स्कूटी चला रहे हो बाइक चला रहे हो, मतलब अपने साथ रखना,
1: सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए। आप उसकी सॉफ्ट कॉपी भी अपने मोबाइल पे रख सकते हैं, उसको आप दिखा सकते हैं।
0: अच्छा, फोन में भी है,
1: फोन में भी चल सकती है, गवर्नमेंट ने आप उसको वैलिड कर दिया, पहले नहीं था। तो अब आप अपनी डिजिटल कॉपी भी माने, अगर कोई आप ट्रैफिक पे जा रहे हैं या आप स्कूटी से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं और वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है या चेकिंग हो रही है और वो आपसे कोई वैलिड आईडी मांगते हैं, आपका DLF पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है या इंश्योरेंस है, तो आप उसको मोबाइल पे भी दिखा सकते हो। उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है, आज की डेट में हर चीज ऑनलाइन है, वो प्रॉपर चेक कर लेंगे कि ये डुप्लीकेट तो नहीं है, अगर वो चीज ऑथेंटिक है सही है तो आपको जाने देंगे। वो
0: मान लीजिए सर कोई मेरा ही गाड़ी है, वो कोई और लेके जा रहा है तो
1: वो गलत है, कायदे में तो आपको गाड़ी नहीं देनी चाहिए अपनी। लेकिन अगर आपने गाड़ी दे भी दी है तो उस गाड़ी के पेपर उसको दें, या पोल्यूशन का सर्टिफिकेट दें, इंश्योरेंस की कॉपी दें, और जिसको आपने गाड़ी दी है उसका DL बना होना चाहिए।
0: अच्छा, उसका भी बना होना चाहिए,
1: उसका भी DL होना चाहिए। अगर आपने DL उसका नहीं बना हुआ है, पेपर आपके पूरे हैं, DL आपका है और गाड़ी दूसरा चला रहा है जिसके पास DL
0: नहीं है,
1: तो वो भी गैर कानूनी है।
0: तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वो आजकल हर कोई भूल जाता है। क्या हेलमेट पहनना केवल चालक के लिए जरूरी है?
1: देखिए, अगर मैं अपने शहर की बात करूं तो यहाँ आप देखते हैं कि लोग जो है हेलमेट नहीं लगाना
0: नहीं
1: चाहते,
0: लगा चाहते,
1: तो हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, ठीक है। और जो है इससे आपकी सुरक्षा भी होती है, प्लस आप जो है दोपहिया वाहन चलाते वक्त जो चालक और पीछे व्यक्ति बैठा हो दोनों जो है हेलमेट पहने रहते तो सुरक्षा की दृष्टि से भी और ये एक कानून की निगाह से भी एक मैंडेटरी है, तो आगे आज आपको हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। तो कई परिस्थितियों में जो है कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने देखा कि अक्सर छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, हल्की सी टक्कर लग गई और डिसबैलेंस होकर गाड़ी गिर जाती है, तो क्या होता है सर पे बहुत ज्यादा गंभीर चोट लग जाती है उसकी वजह से, तो उसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो कानून के हिसाब से भी हेलमेट आपको लगाना चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से भी हेलमेट जरूर लगाना चाहिए आपको।
0: बहुत से देखा होगा सर आपने बोलते कि अरे 2 मिनट का तो काम ही है, यही जाना है, 2 कदम पर ही जाना है।
1: 2 मिनट का काम होता है, लेकिन अगर जरा कोई मिसहैपनिंग हो गई 2 मिनट के अंदर ही, तो आप क्या करेंगे?
0: करेक्ट। सो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर, सीट बेल्ट का क्या महत्व है?
1: सीट बेल्ट की भी यही मैंने प्रॉब्लम देखी है, लोग पता नहीं सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाते हैं।
0: एक तो बोल देते हैं हमने खाना खा लिया, पेट में दर्द हो जाएगा अगर उसको पहन लेंगे तो, सीट बेल्ट दबने लग जाएगा।
1: कानून के हिसाब से मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग भी आपको सीट बेल्ट जरूर लगानी चाहिए, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो उस पर आपकी गाड़ी का चालान कट सकता है, वो कानूनन अपराध की मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग वो जो है अपराध माना जाता है। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर सीट बेल्ट दुर्घटना के समय कोई ज्यादा दुर्घटना हो गई, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती तो कई ज्यादा गंभीर चोट आ जाती है, उससे क्या होता है कि जो है कई कैजुअलिटी डेथ तक हो जाती है। तो सीट बेल्ट अगर आप गाड़ी में लगा के ड्राइव कर रहे हैं और कोई मिसहैपनिंग भी कुछ होती है तो हो सकता है साधारण चोट ही लगे, ज्यादा आपको चोट ना लगे और आपकी लाइफ बच जाए, तो सीट बेल्ट आपको कानून की दृष्टि से भी लगानी चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से भी लगानी चाहिए।
0: उसके साथ वाला जो बैठा होता है उसके लिए अनिवार्य है,
1: सीट बेल्ट सबके लिए अनिवार्य है, तो लगानी चाहिए आपको।
0: सर कभी कभी जैसे कि मैंने ही देखा है कि वो सोचते हैं कि सामने पुलिस वाले तो है नहीं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, क्या ही हो जाएगा।
1: देखिए, आप ये सोचिए कि भाई ठीक है मेरे को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है, तो आपको आदत डालनी पड़ेगी, है ना। तो आप ये सोचोगे से मुझे चलान से बचने के लिए हेलमेट पहनना है या चलान से बचने के लिए मुझे सीट बेल्ट पहननी है, तो ये गलत है, इसको आप प्रैक्टिस में लाइए।
0: ओके।
1: जैसे आप डेली प्रैक्टिस में लाते हैं ना, आप सुबह ब्रश करते हैं, नहाते हैं, आप ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ये भी प्रैक्टिस में लाइए कि मुझे जब जाना है तो पहले मुझे गाड़ी खोलनी है, फिर उसमें प्रॉपर बैठ के मुझे सीट बेल्ट लगानी है, तब मुझे आगे ड्राइव कर।
0: आजकल तो कैमरे भी लगा दिए गए हैं ना कि सीधा पकड़े जाओ।
1: हाँ, वो जो ई चलान होते हैं वो आजकल ट्रैफिक पुलिस जो है वो ई चलान से भी अगर आपने गाड़ी में देखा कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, हाँ। तो आपकी पिक्चर उसमें कैप्चर होगी, आपका चलान कट जाएगा उसमें,
0: यानी कि पॉकेट मनी कब उड़ जाएंगे।
1: टू व्हीलर पे भी ऐसी हो गया है कि आपने हेलमेट नहीं लगाया, आपकी गाड़ी का नंबर ट्रेस हो गया, चलान कट जाएगा आपका उसमें।
0: ओके।
1: तो आप ये मत सोचिए कि मुझे चलान बचाने के लिए चीजें करनी है, आप ये सोचिए कि मुझे सुरक्षा की दृष्टि से भी करनी है।
0: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर, शराब पीकर वाहन चलाने पर क्या परिणाम हो सकता है?
1: देखिए, शराब पीकर तो वाहन चलाना ही नहीं चाहिए, गंभीर अपराध है। इसके कारण कई एक्सीडेंट्स भी देखे होंगे आपने, अधिकतर सुना होगा कि भाई वो कोई कैजुअल्टी हो गई तो पता चला कि ड्रिंक कर रखी थी उसने, शराब पी रखी थी। इसके कारण भारी, अगर आप शराब पी के गाड़ी चलाते हैं तो बहुत हैवी पेनल्टी के साथ आपकी गाड़ी भी सीज हो सकती है, ठीक है, आपका व्हीकल भी सीज कर सकते हैं पुलिस वाले, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, प्लस आपको जेल भी हो सकती है, कारावास भी भेज सकते हैं वो, और प्लस आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है।
0: यदि सड़क दुर्घटना हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए?
1: देखिए, अगर सड़क दुर्घटना हो जाती है तो घायल व्यक्ति को आप कोशिश करिए कि सबसे पहले जो है, अगर कोई पास में कोई पुलिस वाला दिख रहा है आपको तो आप उसकी उससे आप मदद मांग सकते हैं। एम्बुलेंस और पुलिस को आप सूचना भी दे सकते हैं, 112 नंबर पे आप कॉल करके पुलिस को भी बुला के सूचना दे सकते हैं। यदि संभव हो तो प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करें, कोई जैसे कोई ऑटो वाला जा रहा है उससे थोड़ी सी हेल्प मांग लीजिए, कोशिश करिए कि अगर वो बच सकता है तो उसे तत्काल हॉस्पिटल ले जाएं।
0: पर सर आजकल ये हो गया ना कि कोई किसी का हेल्प नहीं करता, उसके मन में एक ही डर होता है कि कहीं मैं ना फंस जाऊं।
1: देखिए, ऐसा होता है कि जब एक एक्सीडेंट होता है, अधिकतर भी हमने देखा, तो पहले तो था कि पुलिस थोड़ा सा पूछताछ करती थी कि भाई कब हुआ क्या हुआ, लेकिन अब जो है हमारे हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट्स की भी डायरेक्शंस आई हैं, अगर कोई घायल है या कोई दुर्घटना में घायल हुआ है तो ये तत्काल उसको मदद देनी है, पुलिस भी इसमें सहयोग करती है, और आपसे कुछ नहीं उसमें पूछा जाता है, आपसे कुछ कोई भी उसमें पूछताछ नहीं होती है, कुछ नहीं होती है, आप अगर उसकी मदद करते हैं तो बल्कि आपको अप्रिशिएट किया जाता है। आप सोचिए, आपने एक व्यक्ति के प्राण बचाए हैं, तो अब जो है बहुत लोगों में चेंजेस आए हैं, लोग मदद भी करते हैं एक दूसरे की, तो आप ये सोचिए कि अगर किसी की कोई दुर्घटना हुई है, किसी को कोई इंजरी हुई है, तत्काल उसको नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो शायद वो उसके घर वाले आपको दुआएं देंगे अगर उसकी जान बच जाएगी, और आप किसी व्यक्ति के प्राण बचा पाएंगे। क्योंकि अगर एक्सीडेंट के केसेस में अगर आप वक्त पे किसी को फर्स्ट एड दिला देते हैं, ट्रीटमेंट दिला देते हैं, तो उसकी लाइफ बच सकती है।
0: थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है?
1: देखिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बोलते हैं यदि आपके वाहन से किसी अन्य व्यक्ति या उसके वाहन या उसकी संपत्ति को नुकसान हो गया, तो थर्ड पार्टी जो होती है इंश्योरेंस, उस नुकसान की भरपाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो आपको नहीं देना पड़ता, जो आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया है वो इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम देती है, ये होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस।
0: यदि वाहन का बीमा नहीं हो तो क्या होगा?
1: देखिए, बिना वाहन के वैध बीमे के आप वाहन आपका सीज भी हो सकता है, ठीक है, और ये कानून का उल्लंघन है, इसके लिए जो भी दंडात्मक कार्रवाई है, फाइन है, पेनल्टी, वो भी पड़ सकती है। तो लिहाजा जो है आप वाहन का इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए आपको, और रिन्यूअल है तो रिन्यूअल भी जरूर कराएं।
0: तो श्रोताओं, यहाँ पर हम लेंगे म्यूजिकल ब्रेक, और आप सभी को मैं हमेशा बोलती हूँ कि हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है, और मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: क्या बात है श्रोताओं, आपने बहुत ही शानदार गाना एंजॉय किया है और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना, जहाँ हम बात कर रहे हैं काम की। आज भी कई लोग बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए खुद को बहुत बड़ा हीरो समझते हैं, लेकिन जरा सोचिए अगर एक छोटी सी दुर्घटना हो जाए तो सबसे ज्यादा दर्द किसको होगा? आपके परिवार को। असली हीरो वो नहीं जो बिना हेलमेट तेज रफ्तार से बाइक चलाए, असली हीरो वो होता है जो हेलमेट पहनकर ट्रैफिक नियमों का पालन करे, सुरक्षित अपने घर पहुंचे, क्योंकि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा होता है। याद रखिए, हेलमेट और सीट बेल्ट सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बचाने के लिए है। सड़क पर आपकी एक गलती किसी और की जिंदगी भी खतरे में डाल सकती है। तो जब भी आप घर से बाहर निकले, चाहे दो कदम के लिए निकले, चाहे आपको लॉन्ग सफर पर जाना है, आपने हेलमेट और सीट बेल्ट तो जरूर लगानी है, क्योंकि ये नियम है और इसका पालन करना हमारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि इसमें हमारी ही भलाई है, किसी और की नहीं है श्रोताओं। तो चलिए अब सर से बात करते हैं, जो ये सिलसिला है इसको जारी रखते हैं। तो सर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है जो बहुत मुझे लगता है कि इसके ऊपर बात ना बहुत जरूरी है। आजकल के जो जेंजी है या फिर किसी और को भी सोच लीजिए, उनको रहती भैया हमें ना लेट हो रहा है, हमें जल्दी पहुंचना है, ओवर स्पीड क्यों गंभीर मानी जाती है?
1: देखिए, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ। अधिकतर हम भी अगर रोड पे जाते हैं तो मैंने बहुत से लड़के ऐसे देखा है, एक तो वो ट्रिपलिंग करके गाड़ी चलाते हैं, ऐसे उल्टा सीधा
0: वेव में चलाते हैं,
1: और फिर आप सिटी के अंदर देखिए वो इतनी हाई स्पीड में, ओवर स्पीड में वो गाड़ी चलाते हैं कि सामने अगर कोई आ जाए तो उसको भी चोट लगेगी और इनको भी चोट लगेगी,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और उसमें किसी की जान भी जा सकती है। तो अधिक गति से वाहन चलाने पर अगर आप चलाओगे तो आपका बैलेंस नहीं बनेगा, सबसे बड़ी चीज, अगर एकदम आपको ब्रेक मारने तो, और आप ब्रेक मारोगे भी तो गाड़ी स्किप हो जाएगी, आपकी फिसल सकती है। तो ये भी एक कानून, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ये कानूनन अपराध है, उल्लंघन कानून का, तो इस पे भी फाइन हो सकता है और आपकी गाड़ी और आपका ड्राइविंग लाइसेंस दोनों कैंसिल भी हो सकते हैं। तो ओवर स्पीड आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप कहीं किसी गंतव्य तक जा रहे हैं तो आप ये सोचिए मुझे आराम से चलाना है, ड्राइविंग है ना, जिगजैग गाड़ी नहीं चलानी है, और जो है आप अपनी भी केयर करिए, सामने वाले की भी केयर करिए।
0: सर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बाइक भी चला रहे होते ना, तो एक बार हैंड फ्री होकर चलाते हैं।
1: हाँ, तो वो सब चीजें गलत हैं। वो एक स्टैंड जो ये आजकल देखते हैं, जो बच्चे स्टैंड वगैरह दिखाते हैं, तो ये गलत है। और इस पे हमारी, मैं तो एक अपील करूंगा हमारी मुरादाबाद पुलिस से भी कि तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं वो, अगर कहीं भी देखते हैं जो करते भी हैं वो लोग
0: स्टैंड मारते
1: हैं। हाँ, ये गलत है। इससे कई सड़क पे बुजुर्ग बच्चे जाते हैं, उनको भी कई बार चोटें होते हुए देखा गया है। तो निश्चित तौर पर ये गलत है और ये कानून का उल्लंघन है।
0: सो अगला भी क्वेश्चन सर बहुत इम्पोर्टेंट है, मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाना कितना खतरनाक है?
1: देखिए, मोबाइल फोन पर अगर आप बात कर रहे हैं या कोई व्हाट्सएप पे कोई संदेश पढ़ रहे हैं, तो आप सोचिए आप मोबाइल पे देख रहे हैं और एक तरफ आप व्हीकल भी चला रहे हैं, तो सामने से कोई आ रहा है, तो आप कैसे उससे आप अपने आप को बचा पाओगे, कैसे डिफेंस कर पाओगे? तो मोबाइल पे चलाने देखते हुए करते हुए कभी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, है ना, उससे एक्सीडेंट का खतरा पैदा हो, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर इस पे भी जुर्माना है।
0: अच्छा, बहुत से सर ये कहते हैं कि अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आराम से चला लेंगे, मैं फोन भी दोनों कर लेता हूँ,
1: इस पे भी आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है। अगर आप मोबाइल बात करते हुए गाड़ी चला रहे हैं तो इस पे भी आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है, आपकी गाड़ी का जो परमिट कैंसिल भी हो सकता है, आपके ऊपर जुर्माना भी पड़ सकता है। तो उस समय जो भी नियमानुसार जो कार्रवाई होती है पुलिस करती है उसमें।
0: यदि ट्रैफिक पुलिस चालान काटे तो नागरिक क्या करे?
1: देखिए, ट्रैफिक पुलिस अगर चालान काट रही है तो आप पहले तो आपको शांत रहना है, कोई आपको एग्रेशन नहीं दिखाना है, ठीक है, कोई सोर्स लगाने की आपको जरूरत नहीं है, प्रॉपर एक जेन्युइन से आप रीजन पूछिए कि आप मेरा चालान क्यों काट रहे हैं, क्या रीजन है। अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स आप उसको दिखाइए। अगर आप अपनी जगह ठीक है, आप प्रॉपर गाड़ी सही से चला रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, वो जो कागज मांग रहे हैं कागज अवेलेबल कराइए, और अगर आपको लगता है आपसे गलती हुई है तो आप कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए जो भी आपके ऊपर फाइन लगता है उसको आपको पे करना चाहिए।
0: ओके, मोटर दुर्घटना दावा अधिकार क्या है?
1: देखिए, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, इसे MACT बोलते हैं, MACT, ये एक न्यायिक मंच है जहां सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति या जो भी मृतक होते हैं, जो भी जिसकी डेथ हो जाती है, उसके परिजन जो होते हैं उनको मुआवजा मिल सकता है। उसमें आप क्लेम डालिए तो आपको क्लेम मिलता है उसमें।
0: सो हम अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं सर, दुर्घटना में मुआवजा किन लोगों को मिल सकता है?
1: देखिए, घायल व्यक्ति यदि कोई या कोई स्थायी विकलांगता से पीड़ित हो गया या व्यक्ति या दुर्घटना में मृत्यु होने पर कानूनी आश्रित जो भी होते हैं उसके, जो भी उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है, परिस्थिति के अनुसार दावा कर सकते हैं। तो वो आपको कोर्ट में दावा करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्लेम मिलेगा।
0: सर, अगला क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही शानदार है, क्या सीसीटीवी फुटेज और डैश कैम रिकॉर्ड साक्ष्य बन सकते
1: हैं? हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी है। आज की गाड़ियों में जो है, जो हमने देखा है, डैश कैम तो सारी गाड़ियों में मोस्टली आ रहा है, इतनी एडवांस हो गई है, क्योंकि अगर आप कहीं जा रहे हैं और कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो डैश कैम से कई ऐसी चीजें हमें सामने वाले की गलती पकड़ में आ जाती है। अगर दो गाड़ियों की टक्कर लगती है तो दोनों बोलेंगे कि भी मेरी गलती नहीं थी, उसमें हम गलती कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अगर आपकी गाड़ी पर डैश कैम लगा होता है तो डैश कैम क्या करता है, वो एक्चुअल जो आपकी जब आप ड्राइव कर रहे हो वो एक्चुअल सारी मूवमेंट्स को कैप्चर करता रहता है।
0: सर, डैश कैम है क्या?
1: डैश कैम एक तरीके का कैमरा होता है, सीसीटीवी कैमरा होता है, वो आपकी गाड़ी में लगा होता है, वो रिकॉर्ड करता है प्रॉपर,
0: मतलब वो जो गाड़ी चला रहा है उसको पता है?
1: हाँ पता क्या, वो गाड़ी में इनबिल्ट फीचर होता है वो।
0: अच्छा,
1: वो गाड़ी में इनबिल्ट फीचर होता है, आजकल गाड़ियां ऐसी आ रही है उसमें डैश कैम लगा होता है, आप कहीं जा रहे हैं तो सामने से भी जो गाड़ी आ रही है उसको भी कैप्चर करता है, पीछे आपकी गाड़ी के वो भी कैप्चर होता है। तो अगर कोई भी मूवमेंट होता है ऐसा तो डैश कैम के थ्रू वो एज एन एविडेंस बन सकता है कि भाई किसने टक्कर मारी थी, किसकी गलती है, वो ऑन द मैटर ऑफ रिकॉर्ड होता है। अगर कोर्ट में केस जाता है तो उसको हम वहाँ पे क्लेम भी कर सकते हैं,
0: मतलब ऑटोमेटिक वो चालू हो जाता है जैसे
1: रिकॉर्डिंग, जैसे आपके सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं तो वैसे एक तरीके का गाड़ी में सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, तो उसमें मेमोरी होती है, वो प्रॉपर रिकॉर्ड करती रहती है, तो एज एन एविडेंस का काम करती है वो।
0: सड़क पर वाहन चलाते समय सबसे बड़ी कानूनी जिम्मेदारी क्या है?
1: देखिए, कानूनी जिम्मेदारी आपकी यही है कि जब आप गाड़ी चलाएं तो एक वैलिड आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी के प्रॉपर पेपर्स होने चाहिए, इंश्योरेंस पॉल्यूशन, और आप अपनी साइड पे ही चलें, कभी भी रॉन्ग साइड ना चलें और कभी भी ओवर स्पीडिंग ना करें, बस ये दो तीन चीजें हैं।
0: सर, जो आजकल की जेन जी आम नागरिक है और जो गर्ल्स है, विमेन है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए भाई, मैं तो यही बोलूंगा कि सड़क पर जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, आपको आराम से व्हीकल चलाना है, जिम्मेदारी दिखाइए, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए, नशे में वाहन ना चलाइए, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, सुरक्षित सफर ही सबसे बड़ी मंजिल है। और अगर उसके बाद भी आप मेरी बात नहीं मानते तो मुरादाबाद पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है।
0: वो तो है सर।
1: तो फिर उसके बाद फिर आप जो है, आपको प्रॉब्लम आएगी तो आपको कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो बेटर है कि आप जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी लॉज है, उसको आप फॉलो करें।
0: तो चलिए श्रोता, ये शो हम यही खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आज की बात से हमें यही समझ आई कि सड़क पर सुरक्षा हमारी अपनी जिम्मेदारी है। ट्रैफिक नियमों का पालन करना सिर्फ कानून का डर नहीं बल्कि अपने और दूसरों के जीवन का सम्मान करना है। घर निकलते समय हमेशा हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाए, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और कभी भी शराब पीकर वाहन ना चलाए। छोटी सी सावधानी आपकी और आपके परिवार की खुशियां हमेशा सुरक्षित रख सकती हैं। और सुनते रहे एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है।
4: इसी का सुखद परिणाम है उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जापान यात्रा से ये संबंध और सुदृढ़ हुए।
3: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा और पर्यटन के क्षेत्र में खुलेंगे निवेश के नए द्वार, साथ ही हजारों रोजगार का मिलेगा सशक्त आधार। ईड़ा में 500 एकड़ की जापानी सिटी से यूपी जापान औद्योगिक साझेदारी को मिलेगी नई ऊंचाई।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552। पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल रामपुर रोड मुरादाबाद।
2: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा में कन्हैया जी का दिव्य महाअभिषेक, बांके बिहारी मंदिर की विश्व प्रसिद्ध मंगला आरती और द्वारकाधीश इस्कॉन तथा प्रेम मंदिर की अलौकिक झांकियां देखने देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं।
3: ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार, परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और यमुना घाटों के सौंदर्यकरण से लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा को नई पहचान दी है।
2: तो आप भी इस जन्माष्टमी 4 सितंबर को ब्रज तीर्थ आइए और कृष्ण भक्ति में रम जाइए।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफराबाद 89.6 पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। हम लेकर हाजिर हैं आपका अपना फेवरेट शो महिला मंच, और मेरे साथ में है प्राची। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, सपनों की कोई उम्र नहीं होती।
5: क्या सपनों पर भी कोई उम्र लिखी होती है? क्या कोई सपना 20 साल की उम्र में खूबसूरत होता है और 60 साल की उम्र में बेकार? जी नहीं बिल्कुल खुशी जी, क्योंकि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। सपने तो बस सपने होते हैं, उन्हें देखने के लिए आंखों में रोशनी चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए दिल में हिम्मत चाहिए।
4: और एक बड़ी खूबसूरत सी शायरी भी है, उम्र की गिनती से कहां सपने मरा करते हैं, कुछ ख्वाब तो आखिरी सांस तक जिया करते हैं। लोग कहते हैं अब तुम्हारी उम्र नहीं रही, लोग कहते हैं अब तुम्हारी उम्र नहीं रही, हम कहते हैं सपने उम्र से नहीं हौसलों से चलते हैं।
5: क्या बात कही खुशी जी आपने। तो दोस्तों आज हम आपको सुनाएंगे एक कहानी, एक ऐसी महिला की कहानी जो बस आपकी दिल को छू जाएगी।
4: एक ऐसी महिला की जिसने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा दूसरों के सपने पूरे करते हुए गुजार दिया।
5: दोस्तों उनका नाम था सावित्री देवी, और सावित्री देवी की उम्र लगभग 62 साल थी।
4: उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में उनका घर था, पति सरकारी नौकरी में थे, 2 बच्चे थे, जिंदगी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उस दौर की बहुत सी महिलाओं की होती थी।
5: जी हाँ दोस्तों, सुबह सुबह सबसे पहले उठना, घर संभालना, बच्चों को स्कूल भेजना, पति के लिए खाना बनाना, बुजुर्ग सास ससुर की सेवा कर, और दिन खत्म होते होते अपने लिए कुछ भी नहीं बचता था।
4: लेकिन दोस्तों सावित्री देवी के अंदर एक सपना था, उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। बचपन में वह स्कूल जाना चाहती थी, किताबें पढ़ना चाहती थी, उनके नाम के आगे एक डिग्री लगाना चाहती थी।
5: लेकिन दोस्तों उनकी घर की परिस्थितियां ऐसी थी कि 8वीं कक्षा के बाद उनकी पढ़ाई छुड़वा दी गई। उस समय लोग कहा करते थे कि लड़कियों का इतना पढ़कर क्या होगा, और सावित्री जी चुप हो जाया करती थी। लेकिन उनका सपना चुप नहीं हुआ,
4: वो सपना उनके अंदर कहीं रह गया। फिर शादी हो गई, बच्चे हुए, जिम्मेदारियां बढ़ती गई, और धीरे धीरे उन्होंने भी मान लिया कि शायद अब पढ़ाई उनके लिए नहीं है।
5: एक दिन उनकी पोती जब स्कूल से घर आई, उसके हाथ में एक किताब थी। वह अपनी दादी से बोली, दादी ये कहानी आप पढ़कर सुनाओ ना।
4: सावित्री ने किताब हाथ में ली, उस सेकंड तक किताब को देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, बेटा दादी को पढ़ना नहीं आता।
5: और दोस्तों आपको पता है पोती ने मासूमियत से क्या पूछा?
4: लेकिन दादी आपने स्कूल में पढ़ाई नहीं की थी क्या?
5: इस पर सावित्री देवी ने कहा कि तू थी बेटा, लेकिन बहुत थोड़ी।
4: पोती ने तुरंत कहा, तो आप कर लो।
5: बस यही 2 शब्द सावित्री देवी के दिल में कहीं गहरे उतर गए थे। उसी रात सावित्री देवी काफी देर तक सो नहीं पाई। उन्होंने दोस्तों खुद से एक सवाल पूछा, अगर मेरी पोती 10 साल की उम्र में पढ़ सकती है तो मैं 60 साल की उम्र में क्यों नहीं पढ़ सकती?
4: अगली सुबह उन्होंने अपने बेटे से कहा, मुझे पढ़ना है। बेटा हंस पड़ा, उसे मजाक लगा, उसे लगा माँ मजाक कर रही है।
5: और दोस्तों उसने कहा, माँ अब इस उम्र में पढ़कर क्या करूँगी। सावित्री देवी कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई और कहा, शायद वही करूँगी जो मैं बचपन में करना चाहती थी।
4: और फिर उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी, पहले हिंदी की किताब, फिर अखबार, फिर अंग्रेजी के छोटे छोटे शब्द। उम्र 60 पार थी, लेकिन उनके अंदर की छात्रा शायद अभी भी 15 साल की थी।
5: दोस्तों सच में शुरुआत में सपने आसान कहाँ होते हैं। कभी वो अक्षर भूल जाया करती थी, कभी शब्द समझ में नहीं आते थे, कभी घर में कोई कह देता था, अब इस उम्र में ये सब करने की क्या जरूरत है माँ। कभी पड़ोस की महिलाएं मजाक बनाया करती थी, अरे बहन जी आप परीक्षा देकर कलेक्टर बनोगी क्या।
4: सावित्री देवी हंस देती थी, लेकिन अंदर से वह और मजबूत हो जाती। उन्होंने एक कॉपी बनाई, उसके पहले पन्ने पर लिखा मेरा सपना, और उसके नीचे देर हुई लेकिन खत्म नहीं।
5: जी हाँ दोस्तों, उन्होंने क्या बढ़िया बात लिखी कि देर तो हुई है लेकिन खत्म नहीं हुआ। दिन गुजरते गए और सावित्री देवी ने आखिरकार पढ़ना सीख ही लिया, फिर लिखना सीखा, और कुछ समय बाद उन्होंने अपनी पहली परीक्षा दी।
4: और जब परीक्षा का परिणाम आया वह पास हो गई बहुत अच्छे नंबरों से। बहुत अच्छे नंबरों से नहीं, लेकिन उनके लिए वो नंबर दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि थी।
5: क्योंकि दोस्तों वो सिर्फ पास नहीं हुई थी, उन्होंने उस सोच को भी हरा दिया था जो कहती थी कि सपने सिर्फ जवान लोग देखते हैं।
4: उस दिन उनकी पोती ने उन्हें गले लगाकर कहा, दादी मुझे आप पर गर्व है। सावित्री देवी की आंखों में आंसू थे, उन्होंने अपनी पोती से कहा, बेटा जिंदगी में कभी ये मत सोचना कि अब देर हो गई है।
5: जी हाँ दोस्तों, सावित्री देवी के ये शब्द बिल्कुल दिल को छू जाने वाले थे कि कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जिंदगी में देर हो गई है। दोस्तों सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, तो शायद यही बात हम सबको समझने की जरूरत है।
4: कितनी बार हम खुद से कहते हैं ना, अब मेरी उम्र नहीं रही, अब कौन नई शुरुआत करेगा, अब तो बच्चे बड़े हो गए, अब तो नौकरी की उम्र निकल गई, अब कौन मुझे मौका देगा। लेकिन जिंदगी हर बार हमसे यही कहती है। किसी ने कहा कि शुरुआत की कोई भी उम्र नहीं होती। आप इस पर जी क्या कहना चाहेंगी?
5: खुशी मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि चाहे आप 20 के हैं, 30 के हैं, 40 के हैं, 50 70 के हैं दोस्तों, अगर दिल में कोई सपना अभी भी जिंदा है तो उसे एक मौका जरूर दीजिए। क्योंकि दोस्तों कुछ ख्वाब अधूरे रहकर भी आवाज देते हैं, कुछ रास्ते उम्र के बाद भी बुलाते हैं। जो दिल से निकल जाए मैं कर सकता हूँ, दोस्तों जो आपकी दिल से निकल जाए मैं कर सकता हूँ, वो सपने उम्र नहीं बस हौसला मांगते हैं।
4: तो आज अगर आपके दिल में कोई सपना है जिसे आपने सालों से दबा कर रखा है, तो उसे आज फिर से बाहर निकालिए, शायद वो सपना अभी भी आपका इंतजार कर रहा हो।
5: दोस्तों शायद वो सपना कह रहा हो, चलो अब बहुत इंतजार हो गया, अब मुझे जियो, अब मुझे भी तो अपनी जिंदगी में का हिस्सा बनाओ,
4: मुझे भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। और सपनों को उम्र नहीं चाहिए, सिर्फ हिम्मत चाहिए, क्यों प्राची?
5: बिल्कुल खुशी जी, उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, अगर आंखों में आपके सपने बाकी हैं तो जिंदगी में आप अभी भी जवान हैं।
4: बहुत खूब। तो दोस्तों बिल्कुल सही कहा है कि सपनों की ना कोई उम्र नहीं होती है। और हमारी बहुत सारी फीमेल्स हैं जो हमें सुन रही हैं प्राची इस समय राइट नाउ, उनका भी कहीं ना कहीं सपना है कि मुझे भी टीचर बनना है, लॉयर बनना है, एंड उसके अलावा फैशन डिजाइनिंग का भी आजकल यू नो ट्रेंड में है, मेकअप आर्टिस्ट बनना है। और महिलाएं हैं भी इस फील्ड में, जो लेडीज हैं वो आगे अच्छा भी कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं,
5: बिल्कुल खुशी
4: पार्लर जी भी संभाल रही हैं।
5: बिल्कुल खुशी जी, हमारी आजकल खासकर मैं बात करना चाहूंगी न्यूली मैरिड वुमेन जो है हमारी, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करनी है। टैलेंट तो उनके अंदर बहुत है, डेडिकेशन भी बहुत है, पर वो शुरुआत में घर की नई नई जिम्मेदारियों से घिर गई हैं, अपने लिए समय नहीं निकाल पा रही हैं। पर हमारी प्यारी प्यारी श्रोताओं, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप आगे आइए, अपने लिए समय निकालिए, जिस चीज में आपको खुशी मिलती है उसको भी कीजिए, क्योंकि आपके अंदर जो टैलेंट है वो आपके परिवार और समाज का नाम रोशन करेगा।
4: और बहुत प्यारी सी एक लाइन भी है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपकी जैसा।
5: अरे वाह खुशी जी, क्या बात कही है आपने। और हमारा ये संदेश सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं पुरुषों के लिए भी है कि अगर कोई भी सपना जो आपको लगा है कि मैं अभी नहीं कर पाया था, और आपको लगता है कि मैं जिंदगी की एक रेस में बहुत आगे आ गया हूँ और अब मैं अपने सपनों के जीने की उम्र को छोड़ आया हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों सपनों की कोई उम्र नहीं होती।
4: अब वो सब चीज कर सकते हैं जो आप चाहते हैं।
5: और बिल्कुल खुशी जी, और आपको पता है जब हम अपने सपनों को जीते हैं तो हमारी जो जिंदा दिली होती है जिंदगी को जीने की, वो
4: और ज्यादा बढ़ जाती है।
5: हाँ बिल्कुल, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। और सच में जिंदगी को जीने का मजा तभी है जब सपने बाकी हो। जब हम उस सपनों के पीछे भागते रहते हैं तो सच में जिंदगी को जीने का मजा आता है।
4: और जिंदगी इसी का नाम है।
5: और हाँ, जिंदगी इसी का नाम है। तो खुशी जी, कोई आपका ऐसा सपना है जो आप चाहती हैं अभी भी पूरा करना, क्योंकि आप हम सबके बीच में एक बहुत अच्छी आरजे हैं। तो और क्या क्या सपने हैं आपके जो आप पूरा करना चाहती हैं?
4: ड्रीम्स मेरे बहुत सारे हैं एंड मुझे ऐसा लगता है कि प्राची, कभी ड्रीम्स ना खत्म ही नहीं होते हैं। अगर एक कंप्लीट होता है तो फिर हम दूसरा सपना देखते हैं।
5: खुशी जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि क्योंकि सपने जो होते हैं, जो ड्रीम्स, जो इतना ब्यूटीफुल वर्ड है, ड्रीम्स ये लाइफ को सच में बहुत खूबसूरत बनाता है। अगर ड्रीम्स ना हो तो सच में लाइफ में वो जो क्यूरियोसिटी और जो हमारा सब कुछ एक्सप्लोर करने की जो एक हमेशा इच्छा रहती है, अगर वो खत्म हो जाए ना तो लाइफ में ना जिंदगी को जीने का मजा कम हो जाता है। सही बात है ना खुशी जी?
4: आई एग्री विद यू प्राची।
5: तो खुशी,
4: अभी लेते हैं हम एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। बातें तो हमने बहुत सारी कर ली हैं, तो मैं चाहती हूँ एक प्यारा सा, अपने जितने भी हमारे लिसनर्स समय हमें सुन रहे हैं राइट नाउ, सभी के लिए एक अच्छा सा गाना हम प्ले करेंगे यहाँ पर।
5: हाँ बिल्कुल, हम करेंगे एक बहुत ही प्यारा सा गाना आप सभी के लिए प्ले। सुनते रहिए, कहीं मत जाइए और रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। मिलेंगे आपसे एफएम मुरादाबाद 89.6 पर।
4: और मुस्कुराते भी रहिए, ये मत भूलना, क्योंकि ये किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं है। और आप भी मुस्कुराइए, जब आप मुस्कुराएंगे ना तो मुझे यकीन है कि आपके सामने वाले पड़ोसी भी आपको देखकर जरूर मुस्कुराएंगे।
5: थैंक यू सो मच खुशी जी, प्यारा सा मैसेज देने के लिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे बहुत जल्द। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: सारजी खुशी और मेरे साथ में यहाँ पर प्राची भी हैं एंड आज हम कुछ करने वाले हैं नया, कुछ न्यू क्रिएटिविटी एंड कुछ मस्ती भी, फन यहाँ पर होने वाला है। और दोस्तों आप ऐसे ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, कार्यक्रम को एंजॉय करते रहिए क्योंकि ढेर सारा एंटरटेनमेंट का डोज हम दोनों कुड़िया यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए। मैं प्राची से कुछ मालूम भी करने वाली हूँ। अरे सुनो प्राची, एक बात बताओ।
1: हाँ खुशी जी, बताओ आज आप क्या नया सवाल लेकर आई है।
0: तुम्हें क्या लगता है, सपने देखने की भी कोई उम्र होती है?
1: अरे बिल्कुल नहीं, सपने देखने की उम्र होती तो हम दोनों आज यहाँ बैठकर इतनी बातें थोड़ी कर रहे होते।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और सच बताऊँ, मुझे लगता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ सपने कम नहीं होते, बस हम उन्हें थोड़ा दबा देते हैं।
1: बिल्कुल ठीक कह रही हैं खुशी जी आप, क्योंकि जिंदगी में जिम्मेदारियां इतनी आ जाती हैं ना कि हम अपने सपनों को बोल देते हैं बेटा तुम थोड़ा इंतजार करो, पहले घर तो संभाल ले।
0: और वो थोड़ा देर, और वो थोड़ी देर पता है कब खत्म होती है?
1: जब बाल सफेद हो जाते हैं।
0: लेकिन सपना बेचारा तब भी वही खड़ा रहता है
1: और कहता है मैं तो अभी भी यही हूँ।
0: सच में दोस्तों, हमारे घरों में कितनी ऐसी महिलाएं होंगी ना जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ चाहा होगा। किसी को पढ़ना था, किसी को गाना सीखना था, किसी को सिलाई कढ़ाई का अपना काम शुरू करना था, किसी को घूमना था,
1: किसी को बस इतना करना था कि एक दिन अपने मन की कोई चीज खरीद सके और उसे किसी से पूछना ना पड़े।
0: लेकिन फिर शादी हुई, बच्चे हुए, घर की जिम्मेदारियां आई और अपने सपने धीरे धीरे अलमारी में रखे, किसी पुराने कपड़े की तरह पीछे चले गए।
1: लेकिन दोस्तों पुरानी चीज का मतलब बेकार चीज नहीं होता, कभी कभी वही पुरानी इच्छा सालों बाद फिर से आवाज देती है। दोस्तों हम आपको फिर से सुनाने जा रहे हैं बहुत ही अच्छी कहानी जो है बहुत ही प्रेरणादायक। मेरी जान पहचान में एक आंटी थी, उनकी उम्र लगभग 65 साल की थी,
0: बड़ी प्यारी महिला है। एक दिन मैंने उनसे पूछा आंटी अगर आपको जिंदगी में एक मौका मिले, मैंने आंटी जी से पूछा आंटी जी अगर आपको जिंदगी में आप कोई भी काम कर सकें तो आप क्या करेंगी? उन्होंने बिना सोचे कि पता है प्राची क्या कहा?
1: क्या कहा खुशी जी?
0: मैं डांस सीखूंगी। मैंने कहा अरे वाह, तो अभी सीख लीजिए।
1: तो वो क्या बोली खुशी जी?
0: तो वो हंसकर बोली अब मेरी उम्र थोड़ी है डांस सीखने की।
1: तो आपने उनसे क्या कहा?
0: मैंने आंटी जी से कहा आंटी जी डांस सीखने के लिए उम्र चाहिए या पैर? वो बोली पैर। मैंने कहा तो फिर समस्या क्या है? हल्की हंसी। और सच बताऊं
1: दोस्तों वो इस बात पर हंसने लगी और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब वो डांस क्लास ज्वाइन करेंगी। पहले दिन तो उन्हें बहुत डर लग रहा था, उनसे छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं जो थी, उन्हें लगा सब उन्हें देख रहे हैं।
0: लेकिन कुछ दिन बाद वही आंटी सबसे आगे खड़ी होकर डांस कर रही थी प्राची पता है। और उन्होंने एक दिन मुझे कॉल किया, बोली बेटा पता है मैं डांस करते हुए अपनी उम्र भूल जाती हूँ। और दोस्तों बस यही तो जिंदगी है, जब कोई काम करते हुए हमें अपनी उम्र याद ना रहे
1: तो समझिए दोस्तों कि आप सच में जी रहे हैं।
0: वाह।

0: ये बात तो बहुत अच्छी लगी।
1: क्योंकि दोस्तों हम उम्र को अक्सर एक नंबर समझ लेते हैं कि मैं 50 का हो गया हूँ या मैं 50 की हो गई हूँ, 60 का हो गया हूँ, 70 का हो गया हूँ, तो हम सोचते हैं अब क्या करेंगे, अब तो बच्चे सीख जाए। दोस्तों बच्चों को तो आगे बढ़ाइए, साथ में जो आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा बैठा है उसका भी थोड़ा ख्याल करिए दोस्तों।
0: लेकिन मेरा मानना है प्राची, उम्र ना कैलेंडर पर लिखी होती है, उत्साह दिल में होता है।
1: बिल्कुल,
0: और कभी कभी हमें अपने बच्चों से भी ये सुनने को मिलता है, मम्मी अब रहने दो, पापा अब आपकी उम्र नहीं है, दादी अब आराम भी करेंगे और सपना भी पूरा करेंगे।
1: जी हाँ दोस्तों, तो इसी बात पर मुझे एक बहुत ही प्यारी शायरी याद आ रही है।
0: इरशाद इरशाद,
1: राहों में उम्र की दीवार मत रखना, दोस्तों राहों में उम्र की दीवार मत रखना, दिल में कोई सपना बेकार मत रखना, जो करना है आज ही कर डालो, जो करना है आज ही कर डालो, कल का क्या भरोसा इंतजार मत रखना।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है प्राची। और एक बात मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगी, अगर आपने जिंदगी में कभी कोई सपना देखा था और वो सपना आज भी कहीं आपके दिल में पड़ा है, उसे निकालिए, उससे बात कीजिए
1: और दोस्तों उससे पूछिए, क्यों भाई अभी भी मेरे साथ चलोगे, मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों वो सपना आपसे कहेगा, हाँ मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ, आप ही आ रहे थे।
0: और जरूरी नहीं कि सपना बहुत बड़ा हो, सपना ये भी तो हो सकता है, मैं रोज सुबह पार्क में जाकर वॉक करूँगी, एक्सरसाइज करूंगी, मैं फिर आकर किताब पढूंगी, मैं हारमोनियम सीखूंगी।
1: जी हाँ दोस्तों, और हारमोनियम सीखने का सपना तो मेरा और खुशी दोनों का है।
0: मुझे तो आता भी प्ले करना, पता है प्राची मैंने आपको सुनाया भी था ना।
1: हाँ आपने तो मुझे सुनाया है, पर मेरा ये सपना तो अभी बहुत ही दूर है मुझसे, मैं बहुत जल्दी हारमोनियम बजाना सीखूंगी।
0: टेंशन मत लो, मैं आपके पास हूँ ना, तो समझो आपका ड्रीम्स भी आप ही के पास है।
1: ओ थैंक यू सो मच खुशी जी,
0: मोस्ट वेलकम।
1: मैं अपनी किसी पुरानी सहेली से मिलूंगी, ऐसे भी सपने होते हैं, मैं बस जिंदगी में पहली बार अपने मन की सुनूंगी। कुछ लोगों का तो दोस्तों ये भी सपना होता है, जिंदगी बीत जाती है पर हम अपने सपनों को नहीं जी पाते, पर दोस्तों अपने लिए टाइम निकालिए, अपने लिए वक्त निकालिए, अपने आप के लिए टाइम निकालिए और अपने सपनों के लिए टाइम निकालिए, और इसे पूरा करने के लिए किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं होती है।
0: कभी कभी हम दूसरों के सपने पूरे करते करते अपना सपना ही भूल जाते हैं। बच्चों को पढ़ाया, उनकी शादी की, घर बनाया, परिवार संभाला, सबके लिए खड़े रहे। अगर जिंदगी आपसे कह रही है थोड़ा सा अपने लिए भी जी लो, तो इसमें गलत क्या है, बिल्कुल नहीं ना।
1: बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों अब हम अपने कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का सवाल हमारे सभी श्रोताओं से है कि अगर उम्र की कोई सीमा ना हो तो आप कौन कौन सा सपना पूरा करना चाहेंगे,
0: सोचिए और जरूर बताइएगा,
1: सपने पूरा करने की हिम्मत मिल जाए।
0: और जाते जाते बस इतना ही याद रखिए, सफेद बालों से सपने सफेद नहीं होते, सफेद बालों से सपने सफेद नहीं होते, उम्र बढ़ने से अरमान कम नहीं होते, दिल में अगर जज्बा जिंदा है अभी तो जिंदगी के खूबसूरत दिन खत्म नहीं होते।
1: जी हाँ दोस्तों, उम्र चाहे 20 हो, 40 हो, 60 हो या 80, सपने देखने के लिए दिल चाहिए दोस्तों, उम्र नहीं। तो आज से ही अपने सपने को पूरा करने की कोशिश कीजिए, शायद वो आपका इंतजार कर रहे हो।
0: तो अपने उस पुराने सपने को आवाज दीजिए, शायद वो आज भी आपका इंतजार कर रहा हो।
1: जी दोस्तों, बहुत ज्यादा मत सोचिएगा क्योंकि सपनों की भी आदत खराब होती है, जितना देर करवाओ उतना नाराज हो जाते हैं। मैं हूँ आपकी दोस्त प्राची और मेरे साथ है
0: आरजी खुशी,
1: और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, जहाँ बातें कानों तक नहीं दिल तक पहुँचती है।
0: एग्जैक्टली राइट। और दोस्तों हम मिलेंगे फिर अगले कार्यक्रम में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए, चिपके रहिए और सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए,
1: गुनगुनाते रहिए,
0: मुस्कुराते रहिए हमारी तरह।
1: हाँ दोस्तों,
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
1: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहां हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
0: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.

FM मुरादाबाद 89.6 पे आपका स्वागत है हेलो फरमाइश में। जी हाँ, आज खुशी जी तो नहीं है मगर खुशी जी की कमी हम पूरी करेंगे। अखिल आज आपके साथ हैं, हम अखिल, और खूब सारी गाने होंगे, आपकी फरमाइश होगी सिर्फ हेलो फरमाइश पे 9837896896। तो कॉल उठाएं, अपनी फरमाइश बताएं और खूब मस्त से रहें साहब। चलिए इस गाने का आनंद लीजिए और करते हैं खूब ढेर सारी बातें आपसे। जैसी न

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा,

0: बिल्कुल फिट बैठता है ये गाना एक पतंगबाज के लिए। तो क्यों नहीं अपने हम कॉलर को लेते हैं लाइन पे और पता करते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया और क्या फरमाइश आज उनकी। हेलो फरमाइश, कैसे हैं सर आप?
1: बढ़िया हो, आवाज आप बात नहीं होती क्या?
0: नहीं नहीं बात हो रही है। और संजय जी क्या करते हैं आप?
1: मैं सर हल्का फुल्का काम है, छोटा मोटा मेरा, ये जो अपनी फार्म में जो लकड़ियों का काम होता है,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: वो आती है, हमारी गाड़ियां आती है, वो उतरवाता हूँ मैं।
0: क्या बात है साहब, कभी काम ना कोई संजय जी छोटा बड़ा नहीं होता, काम तो
1: और
0: काम
1: क्या
0: होता है। आप काम बहुत अच्छा करते हैं।
1: एक काम हो रहा है मेरे पास,
0: हाँ जी,
1: इलेक्ट्रो वोल्टिक लेकर काम करता हूँ मैं,
0: किस चीज का?
1: इलेक्ट्रो वोल्टिक लेकर लोहे
0: ओके ओके ओके ओके
1: को मैं सोना बना देता
0: साहब, बना दीजिए, लोहा और सोना दोनों ही इस समय आसमान छू रहे हैं। तो जरूर अगर आपसे कांटेक्ट करना हो इस कार्य के लिए तो कहाँ पे किया जाए?
1: दीजिएगा,
0: और जो
1: और मैं
0: कॉल
1: आपको
0: नहीं, जो कॉल नहीं कर पाए वो कोई जगह नहीं, अगर कोई कॉल नहीं कर पाए तो कोई कौन सी जगह पहुंच जाए आपसे संपर्क करने के लिए? चलिए चलिए, तो मतलब श्रोताओं जो भी हमारे सुन रहे हैं और जो भी चाहे लोहे को सोना बनाने के लिए, तो कम से कम संजय जी से नहीं, संजय जी से
1: हमारे घर में जैसा होता है, जैसा दीपावली आ रही होगी, अब दीपावली पे हमारी मूर्तियां होती है घर की,
0: हाँ जी,
1: उन्हें दे दीजिएगा आप, मैं आपको ऐसे करके दे दूंगा, आप पहचान नहीं पाएंगे उन्हें, मेरी
0: तो जरूर संजय जी मैं जरूर आपको दूंगा। और मतलब
1: पूरी फैमिली।
0: पहचान नहीं पाऊँ, मतलब ऐसा तो नहीं कि गणेश जी को विष्णु जी बन जाएंगे और विष्णु जी
1: नहीं
0: गणेश जी
1: ऐसा कैसे, गणेश जी रहेंगे, लक्ष्मी जी रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं है।
0: ठीक है सर, तो धन्यवाद आप।
1: ये तो हमारे हाथ ही कारीगरी है भाई साहब।
0: हाँ हाँ सर, नहीं, बहुत बढ़िया संजय जी। और कौन सी फरमाइश है आज आपकी?
1: मैंने बताया तो आपको, वो अब आने मिलो सजना गाना सुना दो मुझे।
0: हाँ मिलो सजना साहब, सही है सब। कल ही रक्षाबंधन का त्योहार खत्म हुआ है और आप कह रहे हो कि अब जब राखी बांध
1: भाई
0: लिए तो
1: साहब
0: आ जाओ घर।
1: तो मैंने राखी का मतलब रक्षाबंधन गाना सुना था, आप तो सुनने
0: हाँ मैं
1: होंगे।
0: बिल्कुल सही कहा आप सर, मौसम के हिसाब से बिल्कुल सही गाने सुन रहे हैं सर। तो
1: ठीक
0: सर धन्यवाद,
1: है, धन्यवाद, नमस्कार सर।
0: नमस्कार सर। तो हमारे साथ जुड़े थे संजय जी, जिनकी फरमाइश है आन मिलो सजना, तो क्यों नहीं साहब ये भी गाना प्ले होगा।

0: भाई साहब थकान तो उतर ही गई होगी कल की। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो चलिए नए कॉलर से बात करते हैं और सुनते हैं उनकी क्या है फरमाइश। हेलो फरमाइश, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका?
1: मनोज है।
0: मनोज जी, क्या करते हैं आप?
1: मैं काम करता हूँ सर,
0: तो इस समय क्या कर रहे हैं आप?
1: काम ही कर रहा है सर। मैं भी
0: इस समय आप काम कर रहे हैं? तो क्या फरमाइश है आपकी? कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: मुझे फिरकी वाला गाना सुनना था।
0: ये फिरकी वाला गाना मतलब कहीं कहीं आप फिरकी वाला काम तो नहीं करते हैं कोई?
1: वेल्डिंग का
0: हाँ
1: काम करते हो।
0: तो साहब कहीं फिरकी दे दी भाई साहब, आज नहीं कल हो जाएगा काम, टेंशन मत लो आप, करो आराम। चलिए गाना करते हैं। किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे आप? बताइए नाम।
1: बबलू भाई हैं और ताहिर भाई हैं
0: ताहिर भाई और
1: और पुष्पेंद्र भाई साहब हैं।
0: पुष्पेंद्र भाई साहब हैं, कोई और भी नाम अगर जहन में आ रहा है तो
1: बस
0: बोल
1: सर
0: दीजिए।
1: यही है, यही लोग हैं सब।
0: तो चलिए साहब आपकी फरमाइश पूरी करते हैं। बहुत ही अच्छा आपने कॉल किया। हम तो श्रोताओं, मनोज जी ने कहा जी मुझे फिरकी वाला गाना सुनना है, तो ज़रूर उन्हें फिरकी वाला ही गाना सुनाया जाएगा। आप भी किसी को फिरकी दे के घूम रहे हैं या इधर उधर फिरकी मार रहे हैं तो ज़रूर अपनी कॉल मिलाएं 9837896896 पे।

0: ओ फिरकी वाले तू कल फिर आना, तो और आके वापस फिरकी मत देके जाना। तो गाना बहुत अच्छा है, गाने के बोल बहुत अच्छे हैं और सुनने वाले साहब भी बढ़िया हैं। उन्होंने भी क्या कहा कि मैं 3 महीने बाद आपके साथ लाइन पे आया हूँ, 3 महीने बाद मैंने कॉल करी है आपको और वापस यही गाना सुनना चाहूँगा। तो भाई साहब हम यही कहेंगे आपसे, अब आप हमें फिर फिरकी दे के चले गए हैं, मगर अगली जो फिरकी है वो ज़्यादा दिनों तक मत रोकना, थोड़ा जल्दी कॉल करना। चलिए हम नए अपने लिसनर से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं उनकी क्या फरमाइश है। हेलो फरमाइश, क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: हेलो फरमाइश, मैं FM मुरादाबाद में, मेरा कॉल लग गया, बहुत खुशी हो रही है और जी बड़ी अच्छा लग रहा है, मुझे महसूस हो रहा है। मोहल्ला पंजूसराय मरकज वाली मस्जिद संभल से छोटे अंसारी।
0: क्या बात है छोटी अंसारे साहब, आपकी तो आवाज़ में भी ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ कोई गायक चल रहा है हमारे साथ। कोई एक आध शायरी सुना दीजिए इसी बात पे, मुझे 100% उम्मीद है कोई ना कोई शायरी आपको याद होगी।
1: मतलब एक लपंगा सा शहर शायर है, अभी आए हो अभी दामन संभाला है, अभी आए हो अभी दामन संभाला है, तुम्हारी चलो चलो ने हमारा दम निकाला है।
0: क्या बात है साहब, दम निकाला, ज्यादा दम तो नहीं निकला है आपका अंसारी जी?
1: ना
0: कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? दम मारो दम।
1: भाई साहब, ना भाई साहब, मैं सब कुछ बाद में बताऊंगा, पहले आप जरा मुस्कुरा दो।
0: नहीं साहब, मैं तो मुस्कुरा ही रहा हूँ आपकी बात पे और हमारी इन बातचीत पे मुस्कुराहट तो अपने आप ही आ रही है। और मैं बस यही कहना चाहूंगा, यही पूछना चाहूंगा आपसे कि कौन सी फरमाइश है जो आप इस समय दिल में लेके बैठे हैं अपनी?
1: फिल्म का नाम है मैं तेरा दुश्मन, इसमें जैकी श्रॉफ, राजेश खन्ना है, जया प्रदा है। गीत के बोल है, जिन्हें चाहिए शोहरत रब्बा उनको शोहरत दे दे, मैं मांगू मेरे यार की मोहब्बत, मुझको मोहब्बत दे दे।
0: क्या बात है, मैं चाहूंगा आपसे अंसारी साहब की 2 लाइनें इसकी जरा गुनगुना दीजिए, आज आज पता चलना चाहिए।
1: जिन्हें चाहिए शोहरत रब्बा उनको शोहरत दे दे, मैं मांगू मेरे यार की मोहब्बत, मुझको मोहब्बत दे दे।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही अच्छा गाना गाया आपने। अच्छा हुआ इस समय जैकी श्रॉफ आपके साथ नहीं है, वरना वो मैं तेरा दुश्मन टाइटल को सीरियस ले लेते। मगर बहुत बढ़िया, आपकी फरमाइश को पूरे करते हैं अंसारी साहब और बहुत ही जल्दी आपसे मुलाकात भी करेंगे।
1: हाँ, इस गीत को सुनना चाहते हैं
0: क्यों नहीं साहब, हम सुनाएंगे ज़रूर, आप वॉल्यूम बढ़ाइए अपने रेडियो का बस।
1: इरशाद भाई सुनना चाहते हैं, बाबू भाई सुनना चाहते हैं, सफी अहमद सुनना चाहते हैं, जाफर भाई हैं, वलीउल्लाह अंसारी हैं, अजीत खजाना है, यूनुस खान जी हैं, खुशी जी हैं, आप भी हैं, फरीद भाई हैं, अंसार भाई हैं, मेराज भाई हैं।
0: आपके अगल बगल में कोई रह गया है भाई तो बता दीजिए उसका भी नाम, देख लीजिए इधर उधर, कोई भाईजान रह तो नहीं गए हैं, अगर कोई भाईजान रह गए हैं तो उनका भी नाम बोल दीजिए। मगर बहुत ही बढ़िया रहा अंसारी साहब, जरूर ये फरमाइश आपकी पूरी करते हैं, जिन्हें चाहिए दौलत।
1: आखिर में एक बात कहूंगा, अल्लाह
0: जरूर जरूर, धन्यवाद
1: आपके हक में और भी बेहतर करे।
0: बहुत ही बहुत अच्छा लगा कि आपने बात हमारे लिए बोली। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आप हमसे ऐसी ही बात करते रहें।
1: थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, करम, इनायत आपकी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

साहब पर्दा भी हट जाएगा और मुखड़ा भी दिखा दिया जाएगा, मगर आप ये गाना सुनते हुए ना अपनी स्पीड तेज मत कर लेना, बड़े आराम से एक्सेलेटर पर पैर रखना, 60-70 की स्पीड भी बहुत होती है साहब।

0: चलिए साहब, एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। लेते हैं अपने नए लिसनर को लाइन पे, बात करते हैं क्या कहते हैं। हेलो फरमाइश, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका?
1: मुरादाबाद संभल रोड बरतौर से अतर सिंह सैनी बोल रहा हूँ।
0: सैनी साहब कैसे हैं आप, क्या करते हैं?
1: जी मैं प्लॉटिंग का काम करता हूँ और बाकी खेती बाड़ी का काम है मेरा, दो काम है।
0: तो प्लॉटिंग का काम और खेती बाड़ी का काम आसपास में ही है या प्लॉटिंग थोड़ी दूर हो रही है?
1: नहीं, प्लॉटिंग तो हर जगह हम जमीन है छोटों को दिलाते हैं फिर बिकवाते हैं, कहीं भी हो जमीन, मुरादाबाद हो या संभल हो, कहीं भी हो।
0: क्या बात है साहब, बहुत ही बढ़िया,
1: हमारा काम ये सब में चलता है।
0: बहुत ही बढ़िया सनी साहब, बहुत बढ़िया। तो आज क्या फरमाइश है, कौन से गाने की फरमाइश है आपकी?
1: जी आज मैं बहुत पुरानी फिल्म का गाना है, आंखें फिल्म का,
0: आंखें फिल्म
1: गाने
0: का।
1: के, जी जी गाने के बोल है, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी,
0: क्या
1: होती है
0: बात है
1: पास
0: साहब,
1: आने की मोहलत मोहलत कभी कभी।
0: ये गाना भी वैसे ही गाना है कि जैसे ही गाना सुनना पड़े, सुनना कानों में आए तो आप खुद ही गुनगुनाने लग जाते हैं।
1: जी,
0: बहुत बढ़िया। और किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे, किसी के लिए?
1: हाँ मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा।
0: जरूर जरूर।
1: अभी अभी छोटे अंसारी जी बात कर रहे थे, छोटे जिन लोगों की बात कर रहे थे सभी वो लोग मेरे को जानते हैं, सभी छोटा।
0: तो उन्होंने आपका भी नाम, का आपका भी नाम लिया था उन्हीं सभी में?
1: ना ना उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, कोई बात नहीं है।
0: कोई बात नहीं, अंसारी साहब से हम
1: ठीक
0: संभल
1: है,
0: चलेंगे
1: हाँ
0: मिलने एक
1: हाँ
0: बार,
1: जरूर, सुनने होंगे तो शायद आगे तो मेरा नाम भी लेंगे वो।
0: आगे नोट करके रखेंगे अंसारी साहब।
1: जी, जैसे मेरे घर के परिवार के लोग हैं, जैसे मीना, मुन्नी, पवित्रा, अजय, आकल, आकांक्षा, आकाश, आकर्षण, रामपुर, राम भजन सैनी और जितने भी सुनने वाले हैं सभी के लिए मैं गाना ये सुनवाने चाहता हूँ।
0: खासकर अंसारी साहब।
1: जी खासकर अंसारी साहब।
0: चलिए साहब, जरूर सैनी साहब, आपका ये गाना हम प्ले करते हैं और आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं। ओके, तो चलिए आप भी लीजिए आनंद इस गाने का। क्या गाने के बोल है, मिलती है जिंदगी मोहब्बत कभी कभी, सच में। और जब भी मिलती है ना, इसे बिल्कुल संवार के और सजा के रख लीजिए अपने।

0: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

0: देखने वाला।
1: बिल्कुल सही बात, होश ना खोदे कोई जोश में देखने वाला। तो आप भी अपना होश मत खोइएगा, जोश में ज़्यादा गाड़ी मत चलाइएगा, सीट बेल्ट ज़रूर पहनेगा, और अगर चला रहे हैं बाइक या स्कूटी तो हेलमेट तो ज़रूरी है भाई। तो चलिए अपने लेते हैं अपने नए कॉलर से बात करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। हेलो फरमाइश, क्या नाम है आपका सर, कैसे हैं आप?
2: जी सर हम बढ़िया हैं सर जी, बहुत मोहम्मद अंसारी बात कर रहे हैं, बाहर उनकी अहमदपुर से।
1: क्या बात है साहब, अहमदपुर से आप बात कर रहे हैं। अभी हमारी थोड़ी देर पहले छोटे अंसारी साहब से ही बात हुई, अब बड़े अंसारी साहब से बात हो रही है लगता है।
2: जी
1: तो क्या करते हैं आप अंसारी साहब?
2: जी सर मैं इलेक्ट्रॉनिक का काम करता हूँ, अहमदपुर बाजार में दुकान है, रिपेयर भी करते हैं और बेचते भी।
1: तो लग ही रहा है कि आपके आसपास के शोर से कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके पास बज ही रहे हैं।
2: जी
1: तो आप हमारा एफएम कैसे सुनते हैं, एफएम रेडियो पे सुनते हैं या आप मोबाइल के थ्रू सुनते हैं?
2: सर मोबाइल के थ्रू सुनते हैं, अभी नया मोबाइल भी लिया है और उसी पर जो है सुन रहे
1: हैं। सर नए मोबाइल लेने के बाद किन किन दोस्तों को बधाई दी है, किन किन दोस्तों को पार्टी दी है, ये भी जरा आप बताएं।
2: सभी दोस्तों को दी है और हमारे कुलदीप गुप्ता जी हैं उनको भी मैंने बताया, हमारे शुएब अंसारी जी हैं उनको भी बताया।
1: सबको आपने आइसक्रीम खिला दी है?
2: जी
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साहब। तो कौन सा फरमाइश है आज का आपके गाने की?
2: फिल्म का नाम रहेगा खामोशी और उसी फिल्म का गाना है आज मैं ऊपर आसमान नीचे, कुमार सानू जी की बेहतरीन आवाज।
1: क्या बात है, ये गाना भी आपने बहुत अच्छा चुना है और सिचुएशन भी बहुत अच्छी चल रही है। आपके हाथ में नया मोबाइल आया है तो आज मैं ऊपर और आसमान नीचे वाला ही सीन चल रहा है आपके साथ।
2: और हमारे वहाँ बारिश भी हो रही है आज।
1: बारिश भी हो रही है साहब, छाता और ले लीजिएगा हाथ में, मोबाइल कहीं भीगना नहीं चाहिए। तो चलिए आपकी फरमाइश पे करते हैं ये, और डेडिकेट करना चाहेंगे किसी को ये गाना?
2: जी सर
1: जरूर, उनका नाम लीजिए।
2: सर और कुलदीप गुप्ता जी हमारे उदोली बाराबंकी से हैं और मुनान अंसारी जी हैं और सभी सुनने हैं, सभी सुनने हैं, सुनते हैं सभी से।
1: ये साहब आपने मोबाइल कोई सा भी लिया हो, नया मॉडल का लिया हो या बिल्कुल नई कंपनी का लिया हो, टाइम पे चार्ज करते रहिएगा, टॉक टाइम का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद जी,
2: धन्यवाद सर।
1: दोस्तों कह रहे हैं मैंने नया मोबाइल लिया है और आज मैं ऊपर आसमान नीचे गाना सुनने की मेरी ख्वाहिश है। बिल्कुल खामोशी से हम ये गाना प्ले कर देते हैं, आप भी एंजॉय करिए।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। तो दोस्तों, जाम में फंसे रहे त्योहार से पहले भी और त्योहार के बाद भी कई सारी रील्स देख के लग रहा है ऐसे कि भाई इतना रश हाईवे पे, वो भी आपके जब आप आ रहे थे गाज़ियाबाद से मुरादाबाद की तरफ, और इतना सारा रश था मेरठ वाले रोड पर कि भाई साहब गाड़ियां मूव नहीं हो रही थी। और सेम कंडीशन हुई है जाते समय भी, खूब सारा जाम मिला है लोगों को। क्या आप भी जाम में फंसे? अगर नहीं फंसे हैं तो कॉल मिलाइए 9837896896 पे। चलिए बात करते हैं अपने नए लिसनर से। हेलो फरमाइश, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका?
2: मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल।
1: मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जी जेठालाल जी, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया सब, आप सुनाइए सर।
1: बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया। क्या हो रहा है इस समय, आप क्या कर रहे हैं?
2: आपके गाने सुनना है
1: सर। गाने सुन रहे हैं आप, गाने का आनंद ले रहे हैं पूरे?
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो बताइए, इससे पहले कौन सा गाना प्ले हो रहा था आपसे बात करने से पहले? चलिए यही तो जेठालाल जी की बात है। जेठालाल जी एकदम पकड़ में आते नहीं है, बात घुमा देते हैं जेठालाल जी।
2: अगर मैं ये गाने सुनता तो समझ गया आप?
1: हाँ हाँ, मैं समझ गया। आप यही कहेंगे मैं तो उसी मोबाइल से बात कर रहा हूँ जिसमें मैंने अपना FM का ऐप इंस्टॉल कर रखा है।
2: बिल्कुल, अरे बिल्कुल सर, तो क्या बात है।
1: तो क्या फरमाइश है आज आपकी, ये बताइए फटाफट। क्या बात है साहब, क्या बात है। आप तो बस पीने पिलाने में विश्वास रखते हैं और जरूर इस गम को जरूर पिलाएं आप।
2: जिंदगी रही तो याद सिर्फ तुम्हें ही करते रहेंगे।
1: क्या बात है, क्या बात है। जिंदगी जरूर है,
2: जिंदगी रही तो याद सिर्फ तुम्हें ही करते रहेंगे। भूल गए तो समझ लेना अब जिंदा नहीं रहे।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया शेर कहा है आपने। और आपको कोई ना भूलेगा ना आप किसी को भूलने देंगे, तो ज़रूर ही आपकी फरमाइश मैं पूरी करता हूँ। और इस बार ये गाना आप ज़रूर सुन लीजिएगा।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: कॉल डिस्कनेक्ट होते ही ऐप ऑन कर लीजिएगा।
2: बिल्कुल, सुन के मैसेज कर दूंगा।
1: ठीक है साहब,
2: ओके नमस्कार।
1: ओके जी नमस्कार। तो चलिए आप भी आनंद लीजिए जेठालाल जी की फरमाइश का, और तू नहीं तो तेरी याद ही सही।

0: तू नहीं तो तेरी या सही, क्या गाने क्या बोल। और सोनू निगम साहब की आवाज में तो एक अलग ही, कहते ना, करिश्मा है चार में। तो चलिए बात करते हैं अपने नए लिसनर से, देखते हैं क्या कहते हैं वो। हेलो फरमाइश, क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं सर? जय महाकाल। कैसे हैं आप?
1: सेवालोहट एमपी विदिशा से। सर्दी में बढ़िया हूँ, मौसम की चपेट में हूँ।
0: मौसम कैसा हो रहा है?
1: मौसम तो गर्म ठंडा है सर जी, बरसात हो रही है,
0: तो आप
1: इसी के तरह बीमारियां भी चल रही हैं सर, फीवर भी चल रहा है और सर्दी जुकाम भी चल रहा है सर।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, फीवर इस समय बहुत चल रहा है और एक नया फ्लू स्वाइन फ्लू भी बहुत फैला हुआ है। तो आप सभी अपना ध्यान रखें, जो भी सुन रहे हैं लिसनर्स और आप भी खासकर, कि अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखें। हल्के से भी जुकाम और किसी भी, कोई भी कहते हैं ना, बुखार को आप उसमें हल्के में ना लें और ज़रूर अपने आसपास नज़दीकी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं।
1: और सबसे मेन चीज तो ये रहेगी सर जी, उसका बचाव सबसे अच्छा है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाए तो मास्क लगाना चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल सही आपने सुझाव दिया और बात बहुत बात रखी कि जहाँ भी भीड़ बहुत ज़्यादा लग रही हो, आपको कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे रश हो, तो ज़रूर मास्क का प्रयोग करें, मास्क ज़रूर पहने।
1: जी सर।
0: तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप, थोड़ी सी तबीयत भी खुश हो जाए आपकी?
1: सर जी मूवी का नाम है हेलो गिरदार और उसके गाना है चांदी की डाल पे सोने का मोर।
0: क्या बात है, चांदी की डाल पर सोने का मोर। किसे डेडिकेट करना चाहेंगे आप, अपने कौन से ब्रदर को?
1: सर जी मेरे तो बहुत सारे ब्रदर हैं, अब एक दो चार का नाम लगा देता हूँ। मामा मित्र है राजस्थान से पूरन वर्मा, बदरुआ से है पुरुषोत्तम कुमार जी, और तमाम जितने भी ब्रदर हमारे सुन रहे हैं, माताएं बहने सुन रही हैं, सबको समर्पित है।
0: चलिए साहब, धन्यवाद बहुत बहुत, और बहुत अच्छा लगा। अपनी भी सेहत का आप ध्यान रखिए। चलिए साहब, गाना है हेलो ब्रदर मूवी से, हेलो ब्रदर, जहाँ ब्रदर सलमान खान और अरबाज खान की जो चौकड़ी थी, आपने देखी होगी क्या मस्त मूवी थी। चलिए अब इसका करते हैं गाना एंजॉय। और आपका भी कोई ऐसा गाना जो आपको फरमाइश है, तो अभी बजे हैं सिर्फ 4:30, तो ज़रूर हमें 9837898 पर कॉल करें और अपनी फरमाइश को पूरा करें।

0: आप जाग गए, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया सर जी।
0: क्या नाम है आपका?
1: जी सर जी, मैं सुनील साहू मधु सुधनगर जिला गुना से। सर
0: तो इस समय कैसा मौसम हो रहा है?
1: जी, बरसात जैसा मौसम रहा लेकिन पानी गिर नहीं रहा है अभी हमारे इधर।
0: पानी नहीं गिर रहा है, बस मौसम ही हो रहा है।
1: हाँ
0: तो ऐसे मौसम में कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? क्या फरमाइश लेके आए हैं?
1: ये पिक्चर का नाम है लाल दुपट्टा मलमल का।
0: लाल दुपट्टा मलमल का। और गाना किसे डेडिकेट करना चाहते हैं?
1: जी हमारे मित्र गजराज सिंह लोधी हैं, जितेंद्र धाकड़ जी है, गोपाल ओझा जी है, मांगीलाल चंदेल जी है।
0: चलिए साहब, आप सभी के साथ करें एंजॉय लाल दुपट्टा मलमल का, और इस मौसम को भी देखें।
1: ठीक है, धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी।

0: ये कौन गा रहा है?
1: है कोई प्यार के गीत गाने वाला, जंगल जंगल घूमता है प्यार के नए नए गीत लेकर, कभी दर्द भरे तो कभी खुशी के।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: Hello, 9821026212 BPL. Are 9820026235 Max Touch.

0: What is mobile number? What is your smile number?
1: What is your style number? Karu kya dial number?
2: It's all right. It's all right.
3: What is your mobile number? हाँ जी, हमारा मोबाइल नंबर तो सभी को पता है, 9837896896। और अब आपके शहर में फैशन फार्मर्स प्रेजेंट करते हैं इंदर साहनी का लाइव शो। यस, ये लाइव स्टैंड अप कॉमेडियन है इंदर साहनी। आपने कई बार इनकी वीडियोस और कई सारे शोज यूट्यूब पे ज़रूर देखे होंगे। आ रहे हैं 12 सितंबर को शाम को 8 बजे ड्राइव इन 24 पे। और अगर आपको चाहिए इनके टिकट्स तो ज़रूर हमें DM करें या फिर कॉल करें 9837896896 पे, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो चलिए अपने नए लिसनर्स की बात करते हैं। हेलो फरमाइश, कैसे हैं आप?
4: बढ़िया है सर।
3: क्या नाम है आपका और कहां से बात कर रहे हैं आज?
4: सर, मैं भोपाल से आरिफ खान मंसूरी बात कर रहा था।
3: क्या बात है साहब, भोपाल से आज बहुत सारी, मध्य प्रदेश से हमारे पास खूब कॉल आई हैं। आज सारे लिसनर्स जो हैं आज हमारे सब एक्टिव हैं मध्य प्रदेश में।
4: सर आपका प्रोग्राम इतना अच्छा है और आपकी आवाज़ इतनी मीठी है, मैं टेलर का काम कर रहा था इस वक्त। अच्छा। मगर मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था और जब मैंने आपकी आवाज़ सुनी तो मेरा दिल हुआ, मैंने मैं भी लगा दूँ कम से कम इसी बहाने।
3: क्या बात है, तो कौन सी फरमाइश है आज आपकी जो आप चाहते हैं कि प्ले हो?
4: आज मुझे नगीना फिल्म का
3: गाना सुनवा दीजिए। सर आपको नगीना घुमा सकते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में जगह है नगीना, कहेंगे तो आपको घुमा देंगे नगीना।
4: अगर कभी मुरादाबाद आना हुआ तो नगीना भी घूम लेंगे।
3: जरूर सर, आप आइए नगीना के आपको रसगुल्ला और समोसा जरूर खिलाया जाएगा।
4: जी सर।
3: तो अभी बताइए कौन से आप गाना सुनाया जाए नगीना मूवी से?
4: आजकल और कुछ याद रहता नहीं, बस तेरी एक याद आने के बाद।
3: क्या बात है सर, शादी को कितने साल हो गए आपके?
4: सर 21 साल हो गए।
3: सर अभी भी कुछ याद नहीं रहता?
4: अरे सर बस गाने अच्छे लगते हैं तो सुन लेते हैं, बाकी तो सब ठीक है।
3: सर बिल्कुल मत भूलना सर, सालगिरह और जन्मदिन तो बिल्कुल मत भूलना। आजकल और कुछ याद रहता नहीं, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भूल जाएं सब चीज़ें भी।
4: नहीं सर, भूलना नहीं चाहेंगे कुछ भी चीज़ें।
3: तो डेडिकेट किसे करना चाहेंगे गाना आप?
4: सर ये हमारे एक दोस्त हैं गजराज लोधी जी हैं।
3: हाँ जी।
4: और उन्होंने मुझे आपसे जोड़ा है क्योंकि वो सुनते रहते हैं, तो उन्होंने मुझे जोड़ा मुरादाबाद से।
3: तो बहुत बहुत धन्यवाद गजराज जी का, गजराज जी ने हमारे साथ हमारे को एक लिसनर और जोड़ा है, तो उन्हीं के लिए डेडिकेट आपने गाना किया है, तो जरूर इसे हम प्ले करते हैं सर।
4: जी सर, जी सर,
3: ओके,
4: थैंक यू सर।
3: तो चलिए सर फरमाइश पूरी करते हैं सर की, कि आजकल याद मुझे कुछ और रहता नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसी है कि आपको भी कुछ याद नहीं रहता है, तो साहब ये नंबर ज़रूर याद कर लीजिएगा 9837896896, क्योंकि हम आपको कुछ भूलने नहीं देंगे। जब एक बार आप डायल कर लेंगे ना, आपकी फरमाइश को हम बिल्कुल नहीं भूलने देंगे और सबसे पहले सुनाएंगे।

बिल्कुल सही कहा। आजकल कुछ और याद रहता नहीं, जब भी आप पास में होते हैं तो कुछ भी याद रहता नहीं, या जानबूझ के हम भुला देते हैं यार। जब कोई अपना खास पास में होता है ना, तो सारी चीज़ें जो है ना, बाकी की सब भुला दी जाती हैं कि चलो जी कुछ वक्त गुजारा करें। तो एक गाना और, वसीम साहब की फरमाइश, उनकी कॉल आई थी और कॉल हो गई थी डिस्कनेक्ट, बस फरमाइश कहते ही नेटवर्क गायब हो गया था। मगर कोई बात नहीं वसीम जी, आपका गाना हम ज़रूर प्ले करेंगे, आप जिन जिनको डेडिकेट करना चाहते हैं वो सब समझ जाएंगे जैसे ही आपका नाम ही सुनेंगे, और ये गाना भी। तो दोस्तों, बजने वाले हैं 5, और अगर आपकी है कोई फरमाइश तो ज़रूर हमें कॉल करें 9837896896 पे। 5 बजे से पहले कॉल करें और अपनी फरमाइश का पूरा आनंद लें।

चलिए साहब, गली में चांद निकल आया है और मेरा भी अब जाने का टाइम हो गया, तो चलने से पहले लेते हैं कि लिसनर्स की कॉल और पूछते हैं कि उनकी गली में कोई चांद निकला है या नहीं निकला। हेलो, फरमाइश, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, नमस्कार। क्या करते हैं आप, क्या नाम है आपका? इस गाने का बोल बताइए आप। कितने लोगों ने लूटा आपको ऐसा गाना सुना सुना के, हमें बताइएगा। अफसाना, अफसाना लिख रही हूँ। हाँ, ये गाना हमने सुना है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और ये जो आपने गाने बताया है हमें, तो लूट लिया, ये गाना भी बहुत ही अच्छा। और कहते ना, कभी कभी तो हंसी मजाक में ये गाना लोग आपस में जरूर बोलते हैं। ठीक है साहब, ठीक है, जरूर आपकी फरमाइश पूरी करते हैं और गाना पूरा सुनिएगा, एंजॉय करिएगा। ओके सर, ओके। चलिए साहब, गाने की बोली ऐसे हैं, हमें तो लूट लिया, और हमें सच में आप लोगों ने आज लूट लिया अपनी फरमाइशें सुन सुन के। तो इस गाने के साथ लेते हैं अलविदा, और कल परसों आपसे फिर मुलाकात होगी, ठीक रात में 9 बजे, अखिल के साथ दिल से दिल तक में, और दिन में भी आनंद जी और खुशी जी आपको साथ रहेंगे रूबरू अपने अपने शो टाइम। चलिए साहब, करते हैं मुलाकात, बाय बाय, शब्बा खैर, बाय बाय।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
5: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
2: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ
1: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
2: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
3: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

0: वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम है आरजे आनंद। 5 सेकंड रूल खेलने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9837896896। एंड अभी मेरे साथ फोन लाइन पे कौन है आज की सुबह? हेलो, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है? आपके नाम बताएं।
1: मेरा नाम नीति है।
0: हेलो नीति जी, कैसे हाल चाल है और कहाँ से हैं आप?
1: मैं मुरादाबाद से ही हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ।
0: अच्छा, क्या करते हैं नीति जी?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया, मतलब घर की जिम्मेदारी आपके पास है।
1: जी बिल्कुल,
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
1: मुझे बहुत शौक है।
0: क्या बात है। नीति मैम, 5 सेकंड रूल खेलने के लिए आप तैयार है ना?
1: जी बिल्कुल तैयार।
0: सिंपल सा काम करना है आपको, बस हम आपको 5 सेकंड देंगे और 3 चीजें पूछेंगे। 5 सेकंड के अंदर 3 चीजें बतानी है, ठीक है?
1: जी ठीक।
0: चलो, आर यू रेडी?
1: रेडी। 5 सेकंड रोल।
0: ओह यस। तो भाभी जी, 3 बातें बताइए जो हर इंडियन पापा बोलते हैं।
1: जी, पहली, हमारे जमाने में ऐसा होता, तुम नलायक हो।
0: इसी बात पे टाइम खत्म हो गया है। मुझे पता नहीं था मैं नलायक हूँ, थैंक यू सो मच। ओके, 3 ऐसी चीजें बतानी है जो दूध से फटाफट बनती हैं।
1: मावा, खीर और
0: टाइम खत्म। टाइम खत्म। ओके, सो 3 ऐसी फिल्में बतानी है जो आपकी फेवरेट है।
1: प्यार तो होना ही था, प्यार चुपका नहीं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो, थैंक यू सो मच। 3 ऐसी चीजें आपको बतानी है जो आपको फ्री में लगता है डेफिनेटली मिल जाएंगी मुरादाबाद में।
1: पॉल्यूशन,
0: जाम। खत्म, टाइम खत्म। सीरियसली, ये तो बहुत ही फैबुलस था।
1: बहुत जल्दी हो जाते हैं।
0: ओके, चलिए मैम, 3 ऐसी चीजें जो मुरादाबाद में हर जगह मिल जाती है खाने के लिए।
1: चाट, गोलगप्पे और मोमोज।
0: क्या बात है, 5 सेकंड में पूरा कर दिया, बहुत बढ़िया। 3 आपकी फेवरेट चीजें जो आपको बहुत पसंद है खाने में।
1: रोल।
0: 5 सेकंड खत्म। और पे खत्म हो गया। चलो टिक्की मैं खा लूंगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, फटाफट से 3 नींबू के फायदे।
1: नहीं,
0: ओके, चलो कोई बात नहीं। अगला है 3 टमाटर के फायदे।
1: टमाटर से सब्जी का रंग लाल होता है, गाल लाल होते हैं।
0: टमाटर से सब्जी का रंग लाल होता है, मेरे को पता नहीं था। आज तक मम्मी कश्मीरी मिर्च डलवाती आई है यहाँ, मेरे को पता नहीं था। फटाफट से 3 फायदे सेफ्टी पिन के।
1: कपड़ों में जोड़ने के काम आती है और चुभाने के काम आती है।
0: इसी पे टाइम खत्म हो गया आपका, मेरे को भी चुभ गया मेरा टाइम, 5 सेकंड पूरे हो गए। 3 बेलन के फायदे।
1: बेलन के फायदे, गोल बनाती है, पतली बनाती है और मारने
0: का। क्या बात है, मारने के नाम से मेरा टाइम भी भाग गया है। चलो भाभी जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच।
1: लवली,
0: लवली टॉकिंग टू यू। इसने कोई ऐसा गेम खेला है?
1: नहीं, कभी नहीं।
0: ओके, अगर सपोज करो आज रात आपको 1 लाख रुपए मिल जाए तो आप सबसे पहले कहाँ खर्च करना चाहोगी?
1: कहीं ट्रिप पे जाना चाहूंगी मैं।
0: लोगों को इंतजार है कहीं से 1 लाख रुपए मिल जाए, हम लेके ट्रिप पे भागे। वेल, थैंक यू सो मच मैम। आई होप आपको 1 लाख नहीं, 1 करोड़ मिले ताकि आप हम जैसे कभी ख्याल रखें।
1: थैंक यू सो मच।
0: चलिए मैम, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आप ऐसे घर सजाती रहिए और मुस्कुराती रहिए।
1: थैंक यू।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
1: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
0: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
1: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
0: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
2: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
6: तुम मजाक कर रही हो या लाइन मार रही हो?
7: लाइन मार रही हूँ।

0: कहा ना एक बार नहीं रहना तो नहीं रहना, ओके बाय, मैं जाने।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।
1: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
2: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
2: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
3: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
4: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: वेलकम बैक कीजिए, आप सुन रहे हैं मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम है आरजे आनंद। 5 सेकंड रूल खेलने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9837896896। एंड अभी मेरे साथ फोन लाइन पे कौन है आज की सुबह? हेलो, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है? आपके नाम बताएं।
1: मेरा नाम नीति है।
0: हेलो नीति जी, कैसे हाल चाल है और कहाँ से हैं आप?
1: मैं मुरादाबाद से ही हूँ। बहुत अच्छी हूँ।
0: अच्छा, क्या करते हैं नीति जी?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया, मतलब घर की जिम्मेदारी आपके पास है।
1: जी बिल्कुल,
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
1: मुझे बहुत शौक है।
0: क्या बात है। सो नीति मैम, 5 सेकंड रूल खेलने के लिए आप तैयार है ना?
1: जी बिल्कुल तैयार।
0: सिंपल सा काम करना है आपको, बस हम आपको 5 सेकंड देंगे और 3 चीजें पूछेंगे, 5 सेकंड के अंदर 3 चीजें बतानी है, ठीक है?
1: जी
0: चलो, आर यू रेडी?
1: रेडी।
2: 5 सेकंड रूल।
3: ओह यस।
0: तो भाभी जी, 3 बातें बताइए जो हर इंडियन पापा बोलते हैं।
1: जी, पहली, हमारे जमाने में ऐसा होता, तुम नलायक हो।
0: इसी बात पे टाइम खत्म हो गया है, मुझे पता नहीं था मैं नलायक हूँ, थैंक यू सो मच। ओके, 3 ऐसी चीजें बतानी है जो दूध से फटाफट बनती हैं।
1: मावा, खीर और
0: टाइम खत्म, टाइम खत्म। ओके, सो 3 ऐसी फिल्में बतानी है जो आपकी फेवरेट है।
1: दाल, प्यार तो होना ही था, प्यार चुपका नहीं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, चलो थैंक यू सो मच। 3 ऐसी चीजें आपको बतानी है जो आपको फ्री में लगता है डेफिनेटली मिल जाएंगी मुरादाबाद में।
1: पॉल्यूशन,
0: जाम, खत्म, टाइम खत्म। सीरियसली, ये तो बहुत ही फैबुलस था।
1: बहुत जल्दी हो जाते हैं।
0: ओके, चलिए मैम, 3 ऐसी चीजें जो मुरादाबाद में हर जगह मिल जाती है खाने के लिए।
1: चाट, गोलगप्पे और मोमोज।
0: क्या बात है, 5 सेकंड में पूरा कर दिया, बहुत बढ़िया। 3 आपकी फेवरेट चीजें जो आपको बहुत पसंद है खाने में।
1: चाप, रोल।
0: 5 सेकंड खत्म, और पे खत्म हो गया। चलो टिक्की मैं खा लूंगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, फटाफट से 3 नींबू के फायदे।
1: सॉरी।
0: ओके चलो कोई बात नहीं, अगला हैं 3 टमाटर के फायदे।
1: टमाटर से सब्जी का रंग लाल होता है, गाल लाल होते हैं।
0: टमाटर से सब्जी का रंग लाल होता है, मेरे को पता नहीं था, आज तक मम्मी कश्मीरी मिर्च डलवाती आई है यहाँ, मेरे को पता नहीं था। फटाफट से 3 फायदे सेफ्टी पिन के।
1: कपड़ों में जोड़ने के काम आती है और चुभाने के काम आती है।
0: इसी पे टाइम खत्म हो गया आपका, मेरे को भी चुभ गया मेरा टाइम, 5 सेकंड पूरे हो गए। 3 बेलन के फायदे।
1: बेलन के फायदे, चपाती गोल बनाती है, पतली बनाती है और मारने के काम आता है।
0: क्या बात है, मारने के नाम से मेरा टाइम भी भाग गया है। चलो भाभी जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच।
1: लवली,
0: लवली टॉकिंग टू यू। इसने कोई ऐसा गेम खेला है?
1: नहीं, कभी नहीं।
0: ओके, अगर सपोज करो आज रात आपको 1 लाख रुपए मिल जाए तो आप सबसे पहले कहाँ खर्च करना चाहोगी?
1: कहीं ट्रिप पे जाना चाहूंगी मैं।
0: लोगों को इंतजार है कहीं से 1 लाख रुपए मिल जाए, हम लेके ट्रिप पे भागें। वेल थैंक यू सो मच मैम, आई होप आपको 1 लाख नहीं 1 करोड़ मिले ताकि आप हम जैसे कभी ख्याल रखें।
1: थैंक यू।
0: चलिए मैम, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आप ऐसे घर सजाती रहिए और मुस्कुराती रहिए।
1: थैंक यू।

0: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
1: माँ मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ।
0: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
1: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
0: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यूनिंग कीजिए आपके शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
2: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 20% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल रामपुर रोड मुरादाबाद।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: Hey, you're tuning to FM Moradabad 89.6 FM.

0: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
1: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
0: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
1: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
0: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
2: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।

0: विजिट करो।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.

0: वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम है आरजे आनंद। 5 सेकंड रूल खेलने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9837896896। एंड अभी मेरे साथ फोन लाइन पे कौन है आज की सुबह? हेलो, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है? आपके नाम बताएं।
1: मेरा नाम नीति है।
0: हेलो नीति जी, कैसे हाल चाल है और कहाँ से हैं आप?
1: मैं मुरादाबाद से ही हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ।
0: अच्छा, क्या करते हैं नीति जी?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया, मतलब घर की जिम्मेदारी आपके पास है।
1: जी बिल्कुल,
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
1: मुझे बहुत शौक है।
0: क्या बात है। सो नीति मैम, 5 सेकंड रूल खेलने के लिए आप तैयार है ना?
1: जी बिल्कुल तैयार।
0: सिंपल सा काम करना है आपको, बस हम आपको 5 सेकंड देंगे और 3 चीजें पूछेंगे। 5 सेकंड के अंदर 3 चीजें बतानी है, ठीक है?
1: जी
0: चलो, आर यू रेडी?
1: रेडी।
2: 5 सेकंड रोल।
3: ओह यस।
0: तो भाभी जी, 3 बातें बताइए जो हर इंडियन पापा बोलते हैं।
1: जी, पहली, हमारे जमाने में ऐसा होता, तुम नालायक हो।
0: इसी बात पे टाइम खत्म हो गया है। मुझे पता नहीं था मैं नालायक हूँ, थैंक यू सो मच। ओके, 3 ऐसी चीजें बतानी है जो दूध से फटाफट बनती हैं।
1: मावा, खीर और
0: टाइम खत्म। टाइम खत्म। ओके, सो 3 ऐसी फिल्में बतानी है जो आपकी फेवरेट है।
1: स्टार, प्यार तो होना ही था, प्यार चुपका नहीं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो थैंक यू सो मच। 3 ऐसी चीजें आपको बतानी है जो आपको फ्री में लगता है डेफिनेटली मिल जाएंगी मुरादाबाद में।
1: पॉल्यूशन,
0: खत्म, टाइम खत्म। सीरियसली, ये तो बहुत ही फैबुलस था।
1: बहुत जल्दी हो जाते हैं।
0: ओके, चलिए मैम, 3 ऐसी चीजें जो मुरादाबाद में हर जगह मिल जाती है खाने के लिए।
1: चाट, गोलगप्पे और मोमोज।
0: क्या बात है, 5 सेकंड में पूरा कर दिया, बहुत बढ़िया। 3 आपकी फेवरेट चीजें जो आपको बहुत पसंद है खाने में।
1: रोल।
0: 5 सेकंड खत्म। और पे खत्म हो गया। चलो टिक्की मैं खा लूंगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा फटाफट से 3 नींबू के फायदे।
1: सॉरी।
0: ओके चलो कोई बात नहीं, अगला है 3 टमाटर के फायदे।
1: टमाटर से सब्जी का रंग लाल होता है, गाल लाल होते हैं।
0: टमाटर से सब्जी का रंग लाल होता है, मेरे को पता नहीं था आज तक। मम्मी कश्मीरी मिर्च डलवाती आई है यहाँ, मेरे को पता नहीं था। फटाफट से 3 फायदे सेफ्टी पिन के।
1: कपड़ों में जोड़ने के काम आती है और चुभाने के काम आती है।
0: इसी पे टाइम खत्म हो गया आपका, मेरे को भी चुभ गया मेरा टाइम, 5 सेकंड पूरे हो गए। 3 बेलन के फायदे।
1: बेलन के फायदे, चपाती गोल बनाती है, पतली बनाती है और मारने के काम आता है।
0: क्या बात है, मारने के नाम से मेरा टाइम भी भाग गया है। चलो भाभी जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच।
1: लवली,
0: लवली टॉकिंग टू यू। इसने कोई ऐसा गेम खेला है?
1: नहीं, कभी नहीं।
0: ओके, अगर सपोज करो आज रात आपको 1 लाख रुपए मिल जाए तो आप सबसे पहले कहाँ खर्च करना चाहोगी?
1: कहीं ट्रिप पे जाना चाहूंगी मैं।
0: लोगों को इंतजार है कहीं से 1 लाख रुपए मिल जाए, हम लेके ट्रिप पे भागें। वेल थैंक यू सो मच मैम, आई होप आपको 1 लाख नहीं 1 करोड़ मिले ताकि आप हम जैसे कभी ख्याल रखें।
1: थैंक यू।
0: चलिए मैम, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आप ऐसे घर सजाती रहिए और मुस्कुराती रहिए।
1: थैंक यू।

0: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
1: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ
0: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
1: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
0: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
2: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

0: उम्मीद करो।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल रामपुर रोड मुरादाबाद।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह न्यूरोसर्जन पे, आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
0: कॉल 7500153841।

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 20% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है।
1: इसी का सुखद परिणाम है उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जापान यात्रा से ये संबंध और सुदृढ़ हुए।
0: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा और पर्यटन के क्षेत्र में खुलेंगे निवेश के नए द्वार। साथ ही हजारों रोजगार का मिलेगा सशक्त आधार। ईड़ा में 500 एकड़ की जापानी सिटी से यूपी जापान औद्योगिक साझेदारी को मिलेगी नई ऊंचाई।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।